103.7 मेगाहर्ट्ज पर यह है एफएम शिमला। आज बुधवार है, शक संवत 1948 के ज्येष्ठ मास की 20वीं तिथि, तदनुसार 10 जून सन 2026। इस समय प्रातः के 5:58 और 30 सेकंड हुए हैं। अब हमारी आज की ये सभा आरंभ होती है।

0: एफएम शिमला के साथ हैं आप। समाचार के लिए आपको लिए चलते हैं आकाशवाणी के दिल्ली।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बन गए हैं। श्री मोदी ने 26 मई 2014 को प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। उन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू का रिकॉर्ड तोड़ दिया है, जिन्होंने पहली बार 13 मई 1952 को निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली थी और 27 मई 1964 तक पद पर रहे। पंडित नेहरू का निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में कार्यकाल 4398 दिन का था। 26 मई 2014 से आज 10 जून 2026 तक प्रधानमंत्री मोदी का निरंतर कार्यकाल अब 4399 दिन का हो गया है। एक रिपोर्ट।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का साधारण सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि से उभरकर किसी राजनीतिक वंश के समर्थन के बिना देश के सर्वोच्च निर्वाचित पद पर पहुंचना भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था द्वारा प्रदान किए जाने वाले अवसरों और सामाजिक गतिशीलता का प्रेरणादायक उदाहरण है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के दौरान लगभग 25 करोड़ भारतीय बहुआयामी गरीबी से बाहर निकले हैं। इस अवधि में डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना का तेजी से विस्तार, बड़े पैमाने पर आधारभूत ढांचे का विकास, कल्याणकारी योजनाओं के लाभ वितरण में उल्लेखनीय सुधार तथा व्यापक सामाजिक आर्थिक प्रगति हुई है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: विश्व नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भारत के सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने पर बधाई दी है। श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमार दिसनायका ने एक पत्र में कहा है कि ये उपलब्धि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की जनता द्वारा उनके नेतृत्व पर बार बार जताए गए विश्वास का भी प्रमाण है। पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री जेम्स मारापे ने एक वीडियो संदेश में प्रधानमंत्री मोदी को आदर्श और नेतृत्व का उदाहरण बताया। उन्होंने दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने की इच्छा व्यक्त की। त्रिनिदाद और टोबैगो की प्रधानमंत्री कमला प्रसाद बिसेसर ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत वैश्विक मामलों में प्रखर आवाज के रूप में उभरा है। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए की बैठक आज नई दिल्ली में होगी। इसमें सरकार के 12 वर्ष पूरे होने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भारत के सबसे लंबे समय तक लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने का उत्सव मनाया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं के साथ साथ एनडीए गठबंधन के सभी घटक दलों के नेताओं की भी बैठक में शामिल होने की उम्मीद है। गृहमंत्री अमित शाह ने कल नई दिल्ली में भूमि बंदरगाह प्रबंधन प्रणाली विनिमय का उद्घाटन किया। विनिमय एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिसे सभी बंदरगाहों के संचालन को एक एकीकृत इकोसिस्टम में लाने के लिए डिजाइन किया गया है। इस अवसर पर श्री शाह ने कहा कि ये पहल आधुनिक प्रौद्योगिकी आधारित सीमा प्रबंधन प्रणाली के निर्माण के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू ने घोषणा की है कि वाराणसी से अब अंतर्राष्ट्रीय यात्री दिल्ली पहुंचने से पहले आव्रजन और सामान संबंधी औपचारिकताएं पूरी कर सकते हैं और दुनिया भर के गंतव्यों के लिए निर्बाध रूप से आगे की यात्रा कर सकते हैं। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री नायडू ने कहा कि भारत की हब एंड स्पोक विमानन योजना की शुरुआत वाराणसी से होती है।

एफएम शिमला 103.7 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम हिमांजलि। मेरे भोलेनाथ, आप ही मेरी शक्ति हैं, आप ही मेरा विश्वास हैं। जब जब जीवन की राहें कठिन हुई, आपकी कृपा ने हर मुश्किल को आसान किया है।

एफएम शिमला 103.7 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम हिमांजलि। मन में यदि तृष्णाओं का बसेरा है तो कृष्ण के प्रेम के लिए स्थान कहाँ है। जब मन निर्मल और निष्काम हो जाता है तभी उसमें श्याम का वास होता है।

कार्यक्रम हिमांजलि में आज बस इतना ही। 103.7 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं FM शिमला। 6:40 हुए हैं, आइए सुनते हैं मानस गान।

श्री राम के नाम की महिमा अपरंपार है। नाम के प्रसाद से ही शंभु अविनाशी हैं और अमंगल वेशधारी होकर भी मंगलकारी हैं। नारद मुनि ने नाम की महिमा को जाना और हरे तथा हर दोनों के प्रिय हो गए। विमाता के दुर्व्यवहार से दुखी होकर ध्रुव ने प्रभु का नाम जपा और ध्रुवलोक प्राप्त किया। राम के नाम स्मरण से ही हनुमान ने आराध्य को अपने वश में करके उनकी कृपा प्राप्त की। कलयुग में प्रभु के नाम को कल्पतरु अर्थात मनचाहा फलदायी बताया गया है। इसी नाम का स्मरण करके गोस्वामी तुलसीदास ने तुलसी की पवित्रता प्राप्त की। नाम की महिमा गाकर जीव चारों युगों, तीनों काल तथा तीनों लोकों में

शोक से मुक्ति पा जाते हैं। वेद पुराण तथा संतों ने नाम की ही महिमा गाई है। कहते हैं सतयुग में ध्यान, त्रेता में यश तथा द्वापर में पूजा अर्चना से प्रभु प्रसन्न होते हैं, किंतु कलयुग में मनुष्य मन पाप रूपी समुद्र की मछली के समान है। इस कारण वो ध्यान, यज्ञ अथवा पूजा अर्चना संपन्न नहीं कर पाता। अतः कर्म, भक्ति तथा ज्ञान के अभाव में नाम स्मरण ही एकमात्र आधार है।

अभी आप सुन रहे थे मानस कान। गायक कलाकार थे लता मंगेशकर, भूपेंद्र सिंह और साथी संगीतकार सतीश भाटिया। 103.7 मेगाहर्ट्ज पर आपने ट्यून किया है FM शिमला। आइए सुनते हैं देश गान।

0: और सतत कृषि प्रणालियों को बढ़ावा, युवाओं में उद्यमिता और स्टार्टअप संस्कृति का विकास करने तथा विश्वविद्यालय उद्योग साझेदारी को सुदृढ़ करने पर बल दिया है। राज्यपाल कल डॉक्टर वाईएस परमार औद्योगिकी व वानिकी विश्वविद्यालय की सीनेट की बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि हिमाचल प्रदेश नॉर्वे के साथ उन्नत अपशिष्ट प्रबंधन और सतत विकास के क्षेत्र में कार्य करेगा। मुख्यमंत्री कल शिमला में उनसे मिलने आई भारत में नॉर्वे की राजदूत मे एलिन स्टेनर से बातचीत कर रहे थे। विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने कहा है कि विकसित भारत 2047 एक राष्ट्रीय और सामूहिक मिशन है और इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए केंद्र के साथ साथ राज्यों का विकास भी जरूरी है। पठानिया ने कल चंडीगढ़ में राष्ट्रमंडल संसदीय संघ सम्मेलन भारत क्षेत्र जोन 2 को संबोधित करते हुए कहा कि विकसित भारत मिशन की नींव स्वतंत्रता सेनानियों द्वारा रखी गई थी, जिसकी आज कल्पना की जा रही है। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कल हरोली विधानसभा क्षेत्र में चल रहे विकास कार्यों की समीक्षा की और उनका निरीक्षण भी किया। अग्निहोत्री ने इस मौके पर अधिकारियों को गुणवत्ता पर विशेष ध्यान देने और सभी कार्यों को निर्धारित समय अवधि के भीतर पूरा करने के निर्देश दिए। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा है कि पत्रकार लोकतंत्र का सशक्त स्तंभ है और उनके कल्याण, सुरक्षा व सम्मान के लिए किया गया प्रयास सार्थक पहल है। रोहित ठाकुर कल शिमला में मीडिया वेलबिंग एसोसिएशन द्वारा हिमाचल प्रदेश के पत्रकारों के लिए 10-10 लाख रुपए की निशुल्क दुर्घटना बीमा पॉलिसी के शुभारंभ व वितरण के मौके पर बोल रहे थे। FM न्यूज हेडलाइंस में अभी बस इतना ही। नमस्कार।
1: सूचना, मनोरंजन, शिक्षा और विविध रंगों से परिपूर्ण पिटारा आकाशवाणी शिमला।

0: अभी आप सुन रहे थे देशगान 103.7 मेगाहर्ट्ज पर. आप सुन रहे हैं एफएम शिमला. लीजिए पेश है एफएम न्यूज हेडलाइंस.
1: नमस्कार, एफएम न्यूज हेडलाइंस के साथ मैं जगमोहन शर्मा. राज्यपाल कविंदर गुप्ता ने शिक्षा व अनुसंधान में उत्कृष्टता, तकनीक आधारित कृषि परिवर्तन, जलवायु अनुकूल

0: मीडियम वेव 387.6 मीटर अर्थात 774 किलोहर्ट्ज और डीटीएच पर आकाशवाणी शिमला एफएम बैंड 103.7 मेगाहर्ट्ज पर एफएम शिमला जन जन की वाणी ये है आकाशवाणी।
1: ₹103.7 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं एफएम शिमला। 7 बजने को हैं। हिंदी में समाचार के लिए आपको लिए चलते हैं आकाशवाणी के दिल्ली स्टूडियो।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बन गए हैं। श्री मोदी ने 26 मई 2014 को प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। उन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू का रिकॉर्ड तोड़ दिया है, जिन्होंने पहली बार 13 मई 1952 को निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली थी और 27 मई 1964 तक पद पर रहे थे। पंडित नेहरू का निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में कार्यकाल 4398 दिन का था। 26 मई 2014 से आज 10 जून 2026 तक प्रधानमंत्री मोदी का निरंतर कार्यकाल अब 4399 दिन का हो गया है। एक रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का साधारण सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि से उभरकर किसी राजनीतिक वंश के समर्थन के बिना देश के सर्वोच्च निर्वाचित पद पर पहुंचना भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था द्वारा प्रदान किए जाने वाले अवसरों और सामाजिक गतिशीलता का प्रेरणादायक उदाहरण है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के दौरान लगभग 25 करोड़ भारतीय बहुआयामी गरीबी से बाहर निकले हैं। इस अवधि में डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना का तेजी से विस्तार, बड़े पैमाने पर आधारभूत ढांचे का विकास, कल्याणकारी योजनाओं के लाभ वितरण में उल्लेखनीय सुधार तथा व्यापक सामाजिक आर्थिक प्रगति हुई है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: विश्व नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भारत के सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने पर बधाई दी है। श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमार दिसानायका ने एक पत्र में कहा कि यह उपलब्धि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की जनता

0: द्वारा उनके नेतृत्व पर बार बार जताए गए विश्वास का प्रमाण है। पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री जेम्स मारापे ने एक वीडियो संदेश में प्रधानमंत्री मोदी को आदर्श नेतृत्व का उदाहरण बताया। त्रिनिदाद और टोबैगो की प्रधानमंत्री कमला प्रसाद बिसेसर ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत वैश्विक मामलों में प्रखर आवाज के रूप में उभरा है। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए की बैठक आज नई दिल्ली में होगी। इसमें सरकार के 12 वर्ष पूरे होने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भारत के सबसे लंबे समय तक लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने का उत्सव मनाया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं के साथ साथ एनडीए गठबंधन के सभी घटक दलों के नेताओं की भी बैठक में शामिल होने की उम्मीद है। गृहमंत्री अमित शाह ने कल नई दिल्ली में भूमि बंदरगाह प्रबंधन प्रणाली विनिमय का उद्घाटन किया। विनिमय एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिसे सभी बंदरगाहों के संचालन को एक एकीकृत इकोसिस्टम में लाने के लिए डिजाइन किया गया है। इस अवसर पर श्री शाह ने कहा कि यह पहल आधुनिक प्रौद्योगिकी आधारित सीमा प्रबंधन प्रणाली के निर्माण के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू ने घोषणा की है कि वाराणसी से अब अंतर्राष्ट्रीय यात्री दिल्ली पहुंचने से पहले आव्रजन और सामान संबंधी औपचारिकताएं पूरी कर सकते हैं और दुनिया भर के गंतव्यों के लिए निर्बाध रूप से आगे की यात्रा कर सकते हैं। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री नायडू ने कहा कि भारत की हब एंड स्पोक विमानन योजना की शुरुआत वाराणसी से होती है। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर आज से 2 दिन के आधिकारिक दौरे पर बुल्गारिया और फिनलैंड जा रहे हैं। विदेश मंत्रालय ने बताया कि बुल्गारिया यात्रा के दौरान डॉक्टर जयशंकर बुल्गारिया के शीर्ष नेताओं और वहां के विदेश मंत्री के साथ मुलाकात और विचार विमर्श करेंगे। दूसरे चरण में फिनलैंड में डॉक्टर जयशंकर कुलतारंता वार्ता में भाग लेंगे। वे फिनलैंड के विदेश मंत्री और अन्य नेताओं से भी मुलाकात करेंगे। क्रिकेट में इंडिया ए ने कल श्रीलंका में त्रिकोणीय श्रृंखला के पहले मुकाबले में श्रीलंका ए को 8 रन से हरा दिया है। पहले बल्लेबाजी करते हुए इंडिया ए ने निर्धारित 50 ओवरों में 6 विकेट पर 277 रन बनाए, जबकि जवाब में श्रीलंका की पूरी टीम 7 गेंद शेष रहते 269 रन पर सिमट गई। इंडिया ए का अगला मुकाबला कल अफगानिस्तान ए से होगा। फाइनल 21 जून को खेला जाएगा। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं FM शिमला। 7:05 हुए हैं, आइए सुनते हैं चिंतन।
2: गरुड़ के पूछने पर काकभुशुंडी अपने वर्तमान जन्म का वृतांत सुनाते हुए कहते हैं, मेरा जन्म ब्राह्मण कुल में हुआ, किंतु इस समय मैं आपको काक शरीर में दिखाई पड़ रहा हूँ। अब मैं आपकी इस जिज्ञासा को शांत करूंगा कि मैं मनुष्यों में सर्वश्रेष्ठ विप्रदेह से चांडाल पक्षी शरीर को कैसे प्राप्त हो गया। वर्तमान जन्म में बाल्यावस्था से ही मेरा मन प्रभु श्री राम के चरण कमलों में अनुरक्त रहता था। मैं श्री राम के सगुण साकार रूप का उपासक था। निर्गुण निराकार ब्रह्मा की उपासना मुझे रुचिकर नहीं लगती थी। मैं मुनियों के आश्रम में जाकर श्री रघुनाथ जी के गुण स्वभाव चरित्र यश लीला आदि का श्रवण कीर्तन और स्मरण करते हुए समय यापन किया करता था। यही मेरी दिनचर्या थी। सुमेरु गिरी के उत्तुंग शिखर पर एक विशाल वट वृक्ष के नीचे महर्षि लोमश का पवित्र आश्रम था। पर्यटन करते हुए मैं उनके आश्रम में जा पहुंचा और उनके श्री चरणों में मस्तक झुकाकर प्रणाम किया। पहले तो मैंने अपना समयक परिचय दिया, तत्पश्चात उनके पूछने पर अपने वहां आने का प्रयोजन बताया। मैं सगुण ब्रह्म की उपासना पद्धति का ज्ञान प्राप्त करने के लिए आपके चरणों में उपस्थित हुआ हूँ ऋषिवर। मैं अपने प्रभु श्री राम के सगुण साकार रूप का साक्षात्कार करना चाहता हूँ। कृपया इस प्रयोजन सिद्धि में यथोचित मार्गदर्शन कीजिए। किंतु इसके विपरीत महर्षि ने अपना निर्गुण पक्ष मेरे सामने प्रस्तुत किया। मैंने उसे काटकर अपना सगुण पक्ष उनके समक्ष स्थापित किया। इस प्रकार अपने मत का खंडन देखकर लोमश जी का मुखमंडल क्रोध से आरक्त हो गया और उसी क्षण उन्होंने मुझे चांडाल पक्षी हो जाने का प्रचंड शाप दे दिया। मैंने अत्यंत विनीत भाव से उनके शाप को अंगीकार कर लिया और तत्काल द्विज देह से काक शरीर को

0: प्राप्त हो गया, तभी से मेरा नया नाम काकभुशुंडी हो गया। मेरे मत का खंडन करने में महर्षि का लेश मात्र भी दोष नहीं था। मैं तो यही मानता हूँ कि श्री रघुनाथ जी मेरी सगुण भक्ति की परीक्षा लेना चाहते थे। कृपालु लोमश जी ने मुझे आश्रम में बहुत दिनों तक रोककर अतिशय पावनी राम कथा को विस्तार से सुनाया। राम कथा सुनने के पश्चात मैंने महर्षि लोमश को नतमस्तक होकर प्रणाम किया। उन्होंने मेरे ऊपर आशीर्वचनों की झड़ी लगा दी, जिसके प्रभाव से मुझे भगवान राम की अविरल भक्ति प्राप्त हो गई। बाल क्रीड़ा करते हुए उन्होंने मुझे पकड़ने के लिए अपना नन्हा सा हाथ फैलाया। मैं भी अपनी रक्षा के लिए खेल ही खेल में उड़ने लगा। फिर भी उनका हाथ मेरे पास ही दिखाई पड़ा, यहाँ तक कि मैं आकाश में उड़ते उड़ते ब्रह्मलोक तक जा पहुँचा। वहाँ भी उनका हाथ मेरे अति समीप दिखाई पड़ा। ब्रह्मलोक के ऊपर भी राम की भुजा को अपने अति सन्निकट देखकर मैंने घबराहट से अपने नेत्रों को बंद कर लिया। फिर जब मेरे नेत्र खुलते हैं, तब मैं अपने आप को पुनः अयोध्यापुरी में पाता हूँ। मेरी व्यग्रता देखकर परम कौतुकी राम को अनायास ही हंसी आ गई। उनके हंसते ही मैं उनके मुख द्वार से प्रवेश करके उदर में चला गया। प्रभु राम के उदर में मैंने अनेकानेक ब्रह्मांड और नाना प्रकार की विचित्र सृष्टियों का अवलोकन किया। उदर के अंदर ही मैंने सुना कि मेरे इष्ट देव राम ने अयोध्यापुरी में मनुज रूप में अवतार लिया है। इतना सुनते ही मैं वहां पहुंचकर उनका जन्मोत्सव एवं मनोहारिणी बाल सुलभ चेष्टाएं देख देख कर आनंदित होता हूँ। राम के भीतर राम को देखकर मेरी बुद्धि चकरा गई। मुझे आर्त देखकर राम को पुनः हंसी आ गई। उनके हंसते ही मैं उनके मुख से बाहर आ गया और अत्यंत दीन भाव से प्रार्थना करने लगा। मैंने राम से केवल अखंड भक्ति का वरदान ही मांगा था, किंतु उन्होंने भक्ति के साथ साथ मुझे ज्ञान विज्ञान वैराग्य आदि दुर्लभ वस्तुएं भी दे दी। उन्होंने मुझसे कहा, जड़ चेतनमय अखिल जगत मेरी माया से ही उत्पन्न है, मेरी माया दुस्तर है, आज से तुम्हारे ऊपर मेरी माया का प्रभाव नहीं पड़ेगा, काल तुम्हारे आगे सदा नतमस्तक रहेगा। इतना कहने के पश्चात वे पुनः अपने राजभवन के मणिजटित विशाल एवं भव्य प्रांगण में घुटनों के बल चलते हुए अपनी मधुर लीलाओं से कौशल्या आदि माताओं का मनोविनोद करने लगे। मैं भी उनके साथ मिलकर क्रीड़ा करता। वे प्राकृत शिशु की तरह मुझे पकड़ने के लिए दौड़ते, तब मैं उड़ जाता। कुछ दिन वहां रहने के बाद मैं अपने आश्रम में लौट आया। हे हरियान, काक शरीर मुझे कैसे प्राप्त हुआ, ये सारा वृतांत मैंने आपको सुनाया। इसी काक शरीर से मुझे बाल रूप श्री राम का दर्शन प्राप्त हुआ, अतः ये शरीर मुझे अति प्रिय है।
1: डॉक्टर हुकुम शर्मा से अभी आपने चिंतन सुना। 103.7 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं FM शिमला।

7:10 हुए हैं, तो चलिए अब आपको बता दें कि आज आप FM शिमला पर अब से लेकर रात 11:10 तक कौन कौन से कार्यक्रम और किस समय पर सुनेंगे। 7:15 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम गुड मॉर्निंग शिमला। FM न्यूज हेडलाइंस आप सुनते हैं 7:57, 8:30 और 9:57 पर। प्रादेशिक समाचार आप रोजाना सुनते हैं 9:20, 11:00, 3:00, 6:00 और 7:45 पर। हिंदी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले होंगे 8:00, 12:00, 1:00, 2:15, 8:45 और 11:00। अंग्रेजी में समाचार 8:15, 12:05, 1:05, 7:05, 9:00 और 11:05 पर। लोक संगीत का आनंद आप लेंगे 8:32, 11:30, 2:30 पर शिखरों के स्वर।

गीत आप सुनेंगे प्रातः 8:45, 12:10, शाम 4:00, रात 8:30 और दोपहर 3:10 पर ओल्ड हिट्स फिल्म म्यूजिक।

9:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम कुदरत के रंग, गीत गाता चल। ये कार्यक्रम आप सुन सकते हैं सुबह 10 बजे। पुरानी फिल्मों से कार्यक्रम पेश किया जाएगा 11:05 पर।

9:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम कुदरत के रंग, गीत गाता चल। ये कार्यक्रम आप सुन सकते हैं सुबह 10 बजे। पुरानी फिल्मों से कार्यक्रम पेश किया जाएगा 11:05 पर। महिला सम्मेलन कार्यक्रम आप सुनेंगे 12:20 पर। 1:10 पर आप सुनेंगे म्यूजिक मस्ती। सबरंग कार्यक्रम पेश किया जाएगा 2:00।

3:30 पर आप सुनेंगे युववाणी कार्यक्रम। हिमाचली बोलियों के कार्यक्रम के अंतर्गत शाम 4:20 पर आप सुनेंगे स्पीति कार्यक्रम। महास्वी कार्यक्रम पेश किया जाएगा 4:50 पर। किन्नौरी कार्यक्रम आप सुन सकते हैं 5:20 पर। छः बजकर 5 मिनट पर आप सुनेंगे बिलासपुरी कार्यक्रम। कुल्लूवी कार्यक्रम पेश किया जाएगा 6:35 पर। कृषि जगत कार्यक्रम आप सुनते हैं शाम 7:10 पर। भूले बिसरे गीत आप सुनेंगे 8:00 और एक फिल्म से कार्यक्रम पेश किया जाएगा 9:15 पर। ईमेल बेस्ड कार्यक्रम दिल की आवाज़ भी सुनना ना भूलें 9:30 पर।

गजलों का आनंद आप लेंगे रात 10 बजे और सदाबहार नगमे आप सुनेंगे रात 10:30 पर। इन तमाम कार्यक्रमों को सुनने के लिए आप सुनते रहिए FM शिमला 103.7 MHz पर।

103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं एफएम शिमला। समय मिला लीजिए, 7:15 हुए हैं। ये समय है कार्यक्रम गुड मॉर्निंग शिमला का। सभी सुनने वालों को आपकी रेडियो हमसफर रीना वर्मा का नमस्कार।

जिंदगी में खुश रहने का सबसे सुंदर तरीका ये है कि जो हमारे पास है उसकी कद्र करें और जो नहीं है उसके लिए धैर्य रखें। देखिए, कृतज्ञता मन को शांति देती है और धैर्य हमें मंजिल तक पहुंचाता है।

हर नई सुबह अपने साथ नई उम्मीदें, नए अवसर और नई ऊर्जा लेकर आती है। आज का दिन मुस्कान के साथ शुरू कीजिए और अपनों का सम्मान कीजिए और हर छोटी छोटी खुशी का आनंद लीजिए, क्योंकि खुशियां हमेशा बड़ी उपलब्धियों से नहीं बल्कि जीवन के छोटे छोटे खूबसूरत पलों में छिपी होती है।

0: कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

एफएम शिमला 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम गुड मॉर्निंग शिमला। इन दिनों शिमला में अंतर्राष्ट्रीय शिमला समर फेस्टिवल 2026 पूरे उत्साह के साथ मनाया जा रहा है और ये महोत्सव 8 जून से 12 जून 2026 तक ऐतिहासिक रिज मैदान में आयोजित किया जा रहा है। इन दिनों रंगों, संगीत और संस्कृति की अनोखी छटा से सराबोर है। ऐतिहासिक रिज मैदान पर सजा है अंतर्राष्ट्रीय शिमला समर फेस्टिवल, जहां लोक संस्कृति की महक है, पहाड़ी लोक नृत्य नाटी की थिरकन है और सुरों की मधुर गूंज हर दिल को अपनी ओर आकर्षित कर रही है। और देखिए, इस 5 दिवसीय महोत्सव में सांस्कृतिक कार्यक्रमों, लोकगीतों, हस्तशिल्प प्रदर्शनियों, खेल प्रतियोगिताओं और विभिन्न मनोरंजक गतिविधियों का आयोजन किया जा रहा है। पर्यटक और स्थानीय लोग बड़ी संख्या में इस उत्सव का आनंद ले रहे हैं। और शिमला समर फेस्टिवल केवल एक उत्सव नहीं बल्कि हिमाचल की समृद्ध संस्कृति

परंपरा और मेहमान नवाजी का जीवंत उत्सव है। यदि आप शिमला में हैं तो इस रंगारंग आयोजन का हिस्सा बनना एक यादगार अनुभव साबित हो सकता है।

0: श्रोताओं नमस्कार, मैं दीपशिखा शर्मा, जनगणना कार्य निदेशक हिमाचल प्रदेश, आप सबको यह अवगत कराना चाहती हूं कि हमारी जो हिमाचल प्रदेश की जनगणना का प्रथम चरण है, यानी मकानों की गणना एवं मकान सूचीकरण, वह 16 जून से 15 जुलाई के भीतर हिमाचल में कंडक्ट किया जाएगा। और इस बार हमारा स्वगणना का प्रावधान की ऑप्शन दी गई है या विकल्प रखा गया है। आप जरूर स्वगणना पोर्टल sc.census.gov.in पर जाकर अपनी डिटेल भरें, बाद में हमारे प्रगणक आपके पास आकर उसको वेरीफाई करेंगे और फाइनली पोर्टल पर सबमिट करेंगे। मैं आप सबको यह अवगत कराना चाहती हूं कि जो हमारा जनगणना का डाटा होता है, जनसांख्यिकी, आर्थिक स्थिति, घरों की स्थिति के बारे में, या फिर हमारी शिक्षा, साक्षरता और इस तरह की जो हमारी मूलभूत जानकारियां होती हैं, वह हमारे राष्ट्र निर्माण के लिए बहुत ज्यादा आवश्यक है, क्योंकि हमारे जो आंकड़े हैं उनसे हमारी नीति निर्माण और रिसोर्स एलोकेशन बहुत अच्छे से किया जा सकता है। इसलिए आप सब अपनी जानकारी खुलकर प्रदान करें। आपके जो प्रगणक और पर्यवेक्षक हैं यानी गणनाकार हैं, वो आप ही के आसपास के कोई भी सरकारी कर्मचारी होंगे। जब वो आपके घर आएं तो आप उनका स्वागत करें और उनको जानकारी दें। यदि आपको किसी भी तरह का कोई डाउट होता है, कंफ्यूजन होता है, आप उनका आई कार्ड देख सकते हैं जिसपे की एक QR कोड है, उसे स्कैन करके आप उनकी जानकारी ले सकते हैं। और आपसे किसी भी तरह का कोई भी OTP या दस्तावेज कभी भी नहीं मांगा जाएगा। आपको सिर्फ अपने 33 प्रश्नों की जानकारी जनगणना के प्रथम चरण के लिए देनी है। धन्यवाद।
1: नीलम छुटकी फर्राटेदार अंग्रेजी में बच्चों को क्या सिखा रही है?
2: भाभी, जब से छुटकी का दाखिला सरकारी स्कूल में किया है, उसे तो मानो पंख लग गए हैं। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने वादा निभाते हुए पहली क्लास से अंग्रेजी मीडियम में पढ़ाई शुरू करवाई है। साथ ही प्रदेश में CBSE और राजीव गांधी आदर्श दे बोर्डिंग स्कूल शुरू किए जा रहे हैं। अब सरकारी स्कूलों के बच्चे आत्मविश्वासी बन रहे हैं। सरकारी स्कूलों में मुख्यमंत्री बाल पोषण योजना से बच्चों की पोषण जरूरतों का भी ख्याल रखा जा रहा है।
1: नीलम, अच्छे नंबर लाने वाले बच्चों को सरकार विदेश में शैक्षणिक भ्रमण पर भेजती है ताकि बच्चे वहाँ की पढ़ाई के बारे में जान सकें।
2: भाभी, छुटकी की मैडम बता रही थी कि गुणात्मक शिक्षा के क्षेत्र में हिमाचल प्रदेश ने देश भर में 6ठा स्थान हासिल किया है और राज्यों की श्रेणी में हिमाचल 3रे नंबर पर रहा है। जी हाँ, ये सब संभव हो पाया है मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू के बुलंद इरादों से।
3: शिक्षा से आत्मविश्वास और आत्मविश्वास से नए मुकाम हासिल कर रहे हैं हिमाचल के बच्चे। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग हिमाचल सरकार द्वारा जनहित में जारी।
4: FM शिमला 103.7 MHz पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम गुड मॉर्निंग शिमला। हम सब अपनी जिंदगी में लगातार दौड़ रहे हैं। किसी को मंजिल की तलाश है, किसी को सफलता की, तो किसी को खुशियों की। लेकिन कभी कभी इस भागती हुई जिंदगी में ना थोड़ा सा ठहरना भी जरूरी होता है। ठहराव का मतलब रुक जाना नहीं होता, बल्कि खुद को समझने और अपने सफर को महसूस करने का अवसर देना होता है। जैसे नदी का शांत पानी अपनी गहराई दिखाता है, वैसे ही जीवन के कुछ पल, शांत पल, अपनी असली पहचान से मिलवाते हैं। याद रखिए, तेज चलना अच्छी बात है, लेकिन सही दिशा में चलना उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और सही दिशा का पता अक्सर तभी चलता है जब हम कुछ पल ठहर कर सोचते हैं।

0: जो वृद्ध हैं अकेले और बेसहारा, सरकार बनी उनके बुढ़ापे का सहारा।
1: वृद्धाश्रम सम्मान का घर, भोजन वस्त्र दवा हर पल।
0: 9 आश्रम प्रदेश में चल रहे, सम्मान से जीवन सवर रहे।
1: पंचायत सिफारिश साथ लाएं, तहसील या जिला कल्याण अधिकारी से मिल जाएं।
0: सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।

एफएम शिमला 103.7 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम गुड मॉर्निंग शिमला। जिंदगी सिर्फ जिम्मेदारियों का नाम नहीं है, काम, परिवार और रोजमर्रा की भागदौड़ के बीच अगर कुछ हमें भीतर से खुश रखता है तो वो है हमारी शौक। किसी को किताबें पढ़ना पसंद है, किसी को संगीत सुनना, कोई बागवानी में सुकून ढूंढता है तो कोई पहाड़ों की सैर में। शौक सिर्फ समय बिताने का साधन नहीं होते, बल्कि ये हमारे मन को नई ऊर्जा और ताजगी भी देते हैं। जब हम अपने पसंदीदा काम के लिए थोड़ा समय निकालते हैं तो तनाव कम होता है और जीवन में उत्साह बना रहता है। देखिए, शौक हमें ये एहसास दिलाते हैं कि खुश रहने के लिए हमेशा बड़ी वजहों की ज़रूरत नहीं होती, छोटी छोटी पसंद भी जीवन को खूबसूरत बना सकती है। इसलिए चाहे दिन कितना भी व्यस्त क्यों ना हो, अपने लिए कुछ पल ज़रूर निकालिए, अपने शौक को समय दीजिए, क्योंकि यही पल आपके चेहरे पर मुस्कान और दिल में सुकून लेकर आते हैं। सुन रहे हैं आप गुड मॉर्निंग शिमला, सुनते रहिए और अपनी ये प्यार भरी मुस्कुराहट ऐसे ही कायम रखिए।

एफएम शिमला 103.7 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम गुड मॉर्निंग शिमला। आज है 10 जून 2026। भारत और विश्व इतिहास में आज किस दिन का अपना ही एक खास महत्व है, क्योंकि इस दिन कई ऐसी महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाएं घटी जो कि इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए दर्ज होकर रह गई। सन 1972 की अगर हम बात करें तो मुंबई के मडगांव बदरगाह से पूर्ण वातानुकूलित पोत हर्षवर्धन का जलावतरण हुआ था, और 1902 में अमेरिका के शिकागो में पहली बार कमर्शियल एयर कंडीशनिंग सिस्टम का उपयोग किया गया था। 2005 में भारत और श्रीलंका व सामुदायिक विकास के संबंध दो समझौतों पर हस्ताक्षर हुए थे, और सन 2003 में नासा ने मंगल ग्रह के अध्ययन के लिए स्पिरिट रोवर का प्रक्षेपण किया था। देखिए, इतिहास हमें केवल घटनाओं की जानकारी नहीं देता बल्कि ये भी सिखाता है कि समय के साथ समाज, विज्ञान, खेल और संस्कृति किस प्रकार से आगे बढ़ते रहे हैं, और आज का दिन भी कुछ ऐसी ही यादों को अपने साथ समेटे हुए हैं।

देखिए, आंखें केवल देखने का माध्यम नहीं है, बल्कि ये हमारे सपनों, भावनाओं और दुनिया को समझने का सबसे खूबसूरत जरिया है। कल्पना कीजिए, अगर किसी की आंखों की रोशनी वापस आ जाए और वर्षों बाद अपने प्रियजनों को देख सके तो वो पल कितना अनमोल होगा। इसी सोच और जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए 10 जून यानी आज ही के दिन विश्व नेत्रदान दिवस मनाया जाता है। दोस्तों, नेत्रदान एक ऐसा दान है जो किसी व्यक्ति के निधन के बाद भी किसी और के जीवन में उजाला भर सकता है। कहा जाता है कि दुनिया में सबसे बड़ा दान ज्ञान का दान होता है, लेकिन नेत्रदान भी ऐसा दान है जो किसी की अंधेरी दुनिया को रोशनी से भर देता है। जीवन का असली अर्थ केवल स्वयं के लिए जीना नहीं है, बल्कि दूसरों के जीवन में खुशियाँ और उम्मीदें बांटना है।

देखिए, यदि हमारे जाने के बाद भी किसी की दुनिया रोशन हो सके तो इससे बड़ा मानवता का कार्य शायद ही कोई हो। विश्व नेत्रदान दिवस के अवसर पर हम सभी ये संकल्प लें कि नेत्रदान के प्रति जागरूकता फैलाएंगे और अधिक लोगों को इस महान कार्य के लिए प्रेरित करेंगे। नेत्रदान करें, दृष्टि का उपहार दें और किसी के जीवन में उजाला बनें।

देखिए मौसम का मिजाज भी कितना दिलचस्प होता है। कभी धूप की सुनहरी चादर बिछ जाती है तो कभी बादलों की महफिल सज जाती है। कभी ठंडी हवाएं मन को सुकून देती है तो कभी बारिश की बूंदें यादों को ताज़ा कर जाती हैं। बदलता मौसम हमें ये सिखाता है कि परिवर्तन प्रकृति का नियम है। जैसे मौसम बदलते हैं ना, वैसे ही जीवन के हालात भी बदलते रहते हैं। इसलिए हर मौसम का स्वागत मुस्कान के साथ करना चाहिए।

कार्यक्रम गुड मॉर्निंग शिमला में आज बस इतना ही। तो चलिए हम आपको एक बार फिर याद दिला दें, आज सुबह 9:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम कुदरत के रंग। गीत गाता चल कार्यक्रम आप सुन सकते हैं 10:00। पुरानी फिल्मों से कार्यक्रम पेश किया जाएगा 11:05 पर। पहाड़ी संगीत का आनंद आप लेंगे 11:30 पर। महिला सम्मेलन कार्यक्रम आप सुन सकते हैं 12:20 पर।

0: 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं एफएम शिमला। लीजिए पेश है एफएम न्यूज़ हेडलाइंस।
1: नमस्कार, एफएम न्यूज़ हेडलाइंस के साथ मैं जगमोहन शर्मा। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में मंगलवार को राज्य एकल खिड़की स्वीकृति एवं अनुश्रवण प्राधिकरण की 32वीं बैठक में 5,877 करोड़ के प्रस्तावित निवेश वाले 42 औद्योगिक निवेश प्रस्तावों को मंजूरी प्रदान की गई। इससे राज्य में 13,355 रोजगार के अवसर पैदा होने की संभावना है। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग द्वारा अपने हिमाचल प्रदेश प्रवास के दौरान कल शिमला में प्रदेश के सांसदों एवं विधायकों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता आयोग के अध्यक्ष अंतर सिंह आर्य ने की।

0: बैठक में प्रदेश के जनजातीय क्षेत्रों से संबंधित विभिन्न विषयों पर विस्तार पूर्वक चर्चा की गई। सांसदों एवं विधायकों ने अपने अपने क्षेत्रों से संबंधित समस्याओं एवं सुझावों को आयोग के समक्ष रखा। विकसित वाइब्रेंट विलेज यूथ एक्सचेंज कार्यक्रम के तहत उत्तर प्रदेश और बिहार के 25 युवा प्रतिभागियों ने कल स्पीति घाटी के प्रमुख पर्यटन स्थलों का भ्रमण किया। ये कार्यक्रम माई भारत और आईटीबीपी के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित किया जा रहा है। प्रतिभागियों ने स्पीति के लंगजा गांव, हिक्किम गोम्पा और संग्रहालय कीह गोम्पा और चिचम पुल का दौरा किया। उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम ने उन्हें देश के सीमांत क्षेत्रों को समझने और जानने का अनूठा अवसर प्रदान किया है। आयुष विभाग इस बार 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन हमीरपुर में करने जा रहा है। अणु के सिंथेटिक ट्रैक ग्राउंड में आयोजित किए जाने वाले इस कार्यक्रम के लिए आयुष विभाग ने जिला प्रशासन के सहयोग से तैयारियां आरंभ कर दी हैं। उपायुक्त गंधर्व राठौड़ ने मंगलवार को जिला के प्रशासनिक, पुलिस, आयुष विभाग, अन्य विभागों और नगर निगम के अधिकारियों के साथ बैठक कर राज्य स्तरीय कार्यक्रम की तैयारियों की समीक्षा की। अंतर्राष्ट्रीय शिमला ग्रीष्मोत्सव 2026 के दूसरे दिन मदर्स अगेंस्ट ड्रग्स थीम पर महानाटिका भव्य आयोजन किया गया, जिसमें शिमला जिला के विभिन्न आईसीडीएस खंड से 320 से अधिक महिलाओं ने भाग लिया। इस दौरान स्थानीय लोगों और पर्यटकों ने भी नाटी में शामिल होकर हिमाचल प्रदेश की शान नाटी का आनंद लिया। एफएम न्यूज हेडलाइंस में अभी बस इतना ही, नमस्कार।
1: सूचना, मनोरंजन, शिक्षा और विविध रंगों से परिपूर्ण पिटारा आकाशवाणी शिमला।

0: मीडियम वेव 387.6 मीटर अर्थात 774 किलोहर्ट्ज और डीटीएच पर आकाशवाणी शिमला एफएम बैंड 103.7 मेगाहर्ट्ज पर एफएम शिमला जन जन की वाणी ये है आकाशवाणी।
1: वन जीरो 3.7 मेगाहर्ट्ज पर आपने ट्यून किया है एफएम शिमला। 8 बजने को है समाचार के लिए आपको लिए चलते हैं आकाशवाणी के दिल्ली स्टूडियो।
2: सुनिए, क्या आपने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के बारे में सुना है?
3: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
2: इससे आपका घर सूर्य घर बन जाता है, माने बिजली बिल जीरो, और अतिरिक्त बिजली पैदा हुई तो बिजली ग्रिड को बेचकर पैसे भी कमा सकते हैं। तो बैठे क्यों हो, अभी रजिस्टर करो pmsuryaghar.gov.in पर।
4: हर घर सूर्य घर।
5: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत के सबसे लंबे कार्यकाल वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बने। विश्व के नेताओं ने प्रधानमंत्री मोदी के परिवर्तनकारी शासन और विकासशील देशों की पैरवी के उनके प्रयासों की सराहना की। मोदी सरकार के 12 साल पूरे होने और प्रधानमंत्री के सबसे लंबे कार्यकाल की उपलब्धि के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए की आज नई दिल्ली में बैठक। केंद्र ने 1.25 लाख करोड़ रुपए की ग्रामीण विकास योजना की घोषणा की। विकसित भारत जी राम जी का नया संस्करण 1 जुलाई से होगा लागू। ओमान तट पर अमरीकी सेना के अपाचे हेलीकॉप्टर को गिराए जाने के जवाब में अमरीका ने ईरान पर जवाबी हमले किए। और क्रिकेट में ऋतुराज गायकवाड़ के शतक की बदौलत भारत ने दांबुला में त्रिकोणीय एक दिवसीय श्रृंखला के पहले मैच में श्रीलंका ए को 8 रन से हराया। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बन गए हैं। श्री मोदी ने 26 मई 2014 को प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। उन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू का रिकॉर्ड तोड़ दिया है, जिन्होंने पहली बार 13 मई 1952 को निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली थी और 27

0: 22 मई 1964 तक पद पर रहे थे। पंडित नेहरू का निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में कार्यकाल 4398 दिन का था। 26 मई 2014 से आज 10 जून 2026 तक प्रधानमंत्री मोदी का निरंतर कार्यकाल अब 4399 दिन का हो गया है। एक रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यह उपलब्धि विशेष रूप से उल्लेखनीय है क्योंकि भारत जैसे 140 करोड़ से अधिक आबादी वाले देश का शासन प्रशासन अत्यंत व्यापक और जटिल है। भाषाई, सांस्कृतिक, धार्मिक तथा भौगोलिक विविधताओं से युक्त इस राष्ट्र का सफल नेतृत्व और संचालन अपने आप में एक बड़ी जिम्मेदारी और चुनौती है। ऐसे समय में जब अनेक देशों में राजनीतिक अस्थिरता, सरकारों में बार बार परिवर्तन तथा नीतिगत अनिश्चितता देखने को मिल रही है, भारत में नेतृत्व और शासन में निरंतर रही है। यह विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र में लगातार 3 बार राष्ट्र जनादेशों द्वारा जनता का निरंतर भरोसा दर्शाता है। स्वतंत्र वैश्विक सर्वेक्षणों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लगातार विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय लोकतांत्रिक नेताओं में स्थान दिया गया है। साथ ही उन्हें अब तक 30 से अधिक देशों द्वारा सर्वोच्च नागरिक सम्मानों से भी सम्मानित किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के दौरान लगभग 25 करोड़ भारतीय बहुआयामी गरीबी से बाहर निकले हैं तथा व्यापक सामाजिक आर्थिक प्रगति हुई है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: विश्व के नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भारत के सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने पर बधाई दी है। श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमार दिसानायका ने एक पत्र में कहा कि ये उपलब्धि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की जनता द्वारा उनके नेतृत्व पर बार बार जताए गए विश्वास का प्रमाण है। पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री जेम्स मारापे ने एक वीडियो संदेश में प्रधानमंत्री मोदी को आदर्श नेतृत्व का उदाहरण बताया। त्रिनिदाद और टोबैगो की प्रधानमंत्री कमला प्रसाद बिसेसर ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत वैश्विक मामलों में प्रखर आवाज के रूप में उभरा है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश के सबसे लंबे समय तक लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री बने रहने पर बधाई दी है। उपराष्ट्रपति ने कहा है कि यह ऐतिहासिक उपलब्धि केवल कार्यकाल की अवधि नहीं है बल्कि राष्ट्रीय विकास यात्रा में एक परिवर्तनकारी युग का प्रतीक है। पूर्व उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने अखबार में एक लेख में गुजरात के वडनगर से प्रधानमंत्री कार्यालय तक के उनके सफर और जवाहरलाल नेहरू के रिकॉर्ड को तोड़ते हुए 4399 दिन पूरे करने का उल्लेख किया है। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भी एक दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशित एक लेख में कहा है कि 2014 के बाद से शासन, राजनीति और सार्वजनिक चर्चा में भारतीयता की ओर निर्णायक बदलाव आया है। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए की बैठक आज नई दिल्ली में होगी। इसमें सरकार के 12 वर्ष पूरे होने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भारत के सबसे लंबे समय तक लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने का जश्न मनाया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं के साथ साथ एनडीए गठबंधन के सभी घटक दलों के नेताओं की भी बैठक में शामिल होने की उम्मीद है। बैठक में एनडीए के शासन वाले सभी 22 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री तथा गठबंधन के सभी घटक दलों के नेता भी उपस्थित रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गृह नगर गुजरात के वडनगर में आज उनके सफल शासन के 12 वर्षों के उपलक्ष्य में कार्यक्रमों की एक श्रृंखला आयोजित की जाएगी जिसमें विकसित भारत के दृष्टिकोण को साकार करने के लिए जन भागीदारी पर जोर दिया जाएगा।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गृहनगर वडनगर में उनकी 12 वर्षों के सफल शासन के उपलक्ष्य में आज कई विशेष कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इस अवसर को यादगार बनाने के लिए जिला प्रशासन द्वारा आज शाम 7 बजे ऐतिहासिक शर्मिष्ठा झील पर एक भव्य महाआरती और 10,000 दीपक जलाने की विशेष व्यवस्था की गई है। इसी के साथ प्रदेश भाजपा द्वारा प्राचीन हाटकेश्वर मंदिर में भी कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है जिसकी शुरुआत शाम 4:30 बजे स्वच्छ भारत अभियान और स्वच्छता कर्मियों के सम्मान समारोह के साथ होगी। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष जगदीश विश्वकर्मा आज शाम मंदिर में एक भव्य महाआरती का नेतृत्व करेंगे जिसमें बड़ी संख्या में नागरिक, पार्टी कार्यकर्ता और श्रद्धालुओं के शामिल होने की उम्मीद है। अपर्णा खुंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: मोदी सरकार के 12 वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य में चलाए जा रहे राष्ट्रव्यापी अभियान के अंतर्गत भारतीय जनता पार्टी आज उत्तर प्रदेश

0: कि सभी 403 विधानसभा क्षेत्रों के मंदिरों में विशेष प्रार्थना सभाओं का आयोजन करेगी। प्रधानमंत्री मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
1: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक फ्लैगशिप इनिशिएटिव भारत इनोवेट्स 2026, जिसमें हेल्थ केयर और AI से लेकर एग्रीकल्चर और सेमीकंडक्टर्स तक 13 सेक्टर्स के 120 स्टार्टअप्स 14 से 16 जून तक नीस फ्रांस में अपनी इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरियल क्षमताओं का प्रदर्शन करेंगे। भारत इनोवेट्स 2026, भारत में निर्मित, विश्व के लिए तैयार।
0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। आकाशवाणी समाचार केंद्र सरकार के पिछले 12 वर्षों में विभिन्न प्रमुख क्षेत्रों में किए गए प्रयासों पर एक विशेष श्रृंखला प्रस्तुत कर रहा है। आज हम युवाओं के सशक्तिकरण की दिशा में सरकार के प्रयासों पर चर्चा कर रहे हैं।
2: पिछले 12 वर्षों में सरकार ने देश की युवा शक्ति को सशक्त बनाने पर विशेष ध्यान दिया है। भारत के अगली पीढ़ी के सुधार अब एक तेज गति वाले सुधार अभियान बन चुके हैं, जिसके केंद्र में युवा शक्ति है। विकसित भारत के निर्माण और विभिन्न क्षेत्रों में देश के भविष्य को आकार देने में युवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत 12 करोड़ से अधिक नए उद्यमियों को ऋण प्रदान किया गया है, जिससे युवाओं के सपनों को नई उड़ान मिली है। सरकार युवाओं को रोजगार और आत्मनिर्भरता की दिशा में आगे बढ़ाने के लिए सशक्त बना रही है, जिससे वे नौकरी तलाशने वाले नहीं बल्कि रोजगार देने वाले बन रहे हैं। छत्तीसगढ़ के रायपुर की महिला उद्यमी ईशा पटेल ने बताया कि कैसे उन्होंने घर पर खाना बनाने से शुरुआत करने से लेकर एक सफल कैफे व्यवसाय स्थापित करने तक की यात्रा की।
3: मेन ना यूथ को लगता है कि हमारे पास फंडिंग नहीं है, बट वो गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में अवेयर नहीं है, तो मैं अपने साइड से यही उन्हें सजेशन देना चाहूंगी, अब थोड़ा रिसर्च करो। जैसे मुद्रा लोन भी है, वैसे PMEGP लोन भी है, कई लोन जो आपको विदाउट मॉर्गेज मिल रहे हैं। आपके में पोटेंशियल है तो आप जॉब ड्रॉप करो, क्योंकि स्काई हैज नो लिमिट्स फॉर यू।
2: प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत 1,60,00,000 से अधिक युवाओं को प्रशिक्षण प्रदान किया गया है। कुशल युवाओं की बढ़ती संख्या मेक इन इंडिया पहल को नई ऊर्जा दे रही है। रोजगार मेलों के माध्यम से 12,00,000 नियुक्ति पत्र वितरित किए जा चुके हैं, जिससे युवाओं के रोजगार के सपने साकार हो रहे हैं। देश में 2,20,000 से अधिक स्टार्टअप्स ने 23,00,000 से ज्यादा रोजगार के अवसर सृजित किए हैं। वहीं छात्रों द्वारा 16,00,000 नवाचार परियोजनाएं विकसित की गई हैं, जिन्होंने स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत आधार प्रदान किया है। प्रधानमंत्री सेतु योजना के तहत 1,000 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों ITI के आधुनिकीकरण के लिए 60,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं, जिससे युवाओं को उद्योगों की आवश्यकताओं के अनुरूप कौशल प्रदान किया जा सकेगा। सरकार के सहयोग और देश की युवा शक्ति के प्रयासों से भारत के विकास का एक नया अध्याय लिखा जा रहा है। अनुपम मिश्र के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक फ्लैगशिप इनिशिएटिव भारत इनोवेट्स 2026, जिसमें हेल्थ केयर और AI से लेकर एग्रीकल्चर और सेमीकंडक्टर्स तक 13 सेक्टर्स के 120 स्टार्टअप्स 14 से 16 जून तक नीस फ्रांस में अपनी इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरियल क्षमताओं का प्रदर्शन करेंगे। भारत इनोवेट्स 2026, भारत में निर्मित, विश्व के लिए तैयार।
0: केंद्र सरकार ने ग्रामीण विकास के लिए 1,25,00,000 रुपए की योजनाओं की घोषणा की है। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा के अंतर्गत पहले ही 30,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। यह अधिनियम 1 जुलाई से पूरे देश में लागू हो जाएगा। ओमान तट के पास अमरीकी सेना के अपाचे हेलीकॉप्टर को गिराए जाने के जवाब में अमरीका ने ईरान पर हमले किए हैं। अधिकारियों ने बताया कि हेलीकॉप्टर

0: कोई ईरानी ड्रोन ने गिराया था। हालांकि दोनों पायलटों को बचा लिया गया। उधर ईरान ने भी क्षेत्र में अमरीकी ठिकानों पर मिसाइलें और ड्रोन दागे हैं।
1: ईरान के दक्षिणी तट पर सिरिक, बंदर अब्बास, केशम, जास और कोहे मुबारक समेत कई स्थानों पर विस्फोटों की खबरें मिली हैं। सरकारी मीडिया ने बताया कि सिरिक के बामानी जिले में दो जल भंडार टैंक क्षतिग्रस्त हो गए, जिससे स्थानीय पेयजल आपूर्ति बाधित हो गई। ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अराग्ची ने चेतावनी दी कि तेहरान किसी भी हमले या धमकी का जवाब दिए बिना नहीं रहेगा। और
0: क्रिकेट में इंडिया ए ने कल त्रिकोणीय श्रृंखला के पहले मुकाबले में श्रीलंका ए को 8 रन से हराया। इंडिया ए का अगला मुकाबला कल अफगानिस्तान

0: के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं विशाल शर्मा।
1: धन्यवाद मुनीश। देश की राजधानी से प्रकाशित हिंदी समाचार पत्रों ने सरकार की 12 साल की उपलब्धियों और पीओके में बढ़ती पाकिस्तान की बर्बरता की खबरों को सुर्खियों से प्रकाशित किया है। लोक सत्य ने देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की तस्वीर के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चित्र प्रकाशित करते हुए श्री मोदी के सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री होने के रिकॉर्ड को रेखांकित किया है। पत्र ने उनके ऐतिहासिक 14 फैसलों को भी क्रमवार सूचीबद्ध किया है। अमर उजाला ने पाक अधिकृत कश्मीर के मुजफ्फराबाद की तस्वीर प्रकाशित करते हुए अपनी खबर को शीर्षक दिया है, मानवाधिकार उल्लंघन पर पाकिस्तान को जवाबदेह ठहराए दुनिया। पत्र ने ब्रिटेन के 50 सांसदों के उस पत्र का भी उल्लेख किया है जिसमें उन्होंने लिखा है कि पाकिस्तानी कब्जे वाले कश्मीर में लोग सेना की बर्बरता से डरे हुए हैं।
0: और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत के सबसे लंबे कार्यकाल वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बने। विश्व के नेताओं ने प्रधानमंत्री मोदी के परिवर्तनकारी शासन और विकासशील देशों की पैरवी के उनके प्रयासों की सराहना की। केंद्र ने 225,000 करोड़ रुपए की ग्रामीण विकास योजना की घोषणा की। ओमान तट पर अमरीकी सेना के अपाचे हेलीकॉप्टर को गिराए जाने के जवाब में अमरीका ने ईरान पर हमले किए। और क्रिकेट में ऋतुराज गायकवाड़ के शतक की बदौलत भारत ए ने त्रिकोणीय एक दिवसीय श्रृंखला के पहले मैच में श्रीलंका ए को 8 रन से हरा दिया है। और इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम सायरा मुज्तबा। द हेडलाइंस। Prime Minister Narendra Modi becomes longest-serving elected Prime Minister of India. World leaders hail Prime Minister Modi's transformative governance and advocacy for Global South. NDA to meet in New Delhi today to celebrate PM Modi's achievements and completion of 12 years of government. Centre unveils 1.25 lakh crore rupees rural development push. New framework under Viksit Bharat Jiramji to roll out from 1st July. US military launches strikes against Iran in response to downing of Army Apache helicopter off Oman coast. And in cricket, Ruturaj Gaikwad's century helps India A beat Sri Lanka A by 8 runs in tri-series opener in Dambulla. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi has become the longest continuously serving democratically elected Prime Minister of India today. Mr. Modi took the oath of office on 26th of May in 2014. He surpassed the record of Pandit Jawaharlal Nehru, who first took oath as an elected Prime Minister on 13th of May in 1952 and served until 27th of May 1964. Pandit Nehru's tenure as an elected Prime Minister amounted to 4,398 days. Now, Prime Minister Modi's continuous tenure is 4,399 days, making him the longest-serving elected Prime Minister in India's history. More details on this from our correspondent.
3: The achievement of Prime Minister Narendra Modi is particularly noteworthy given the scale and complexity of governance in India, a nation of over 1.4 billion people characterized by extraordinary diversity in language, culture, religion and geography. At a time when many countries have witnessed political churn, frequent changes in government and policy uncertainty, India has experienced continuity in leadership and governance. It reflects sustained public trust over 3 consecutive national mandates in the world's largest democracy. Independent global surveys have consistently ranked Prime Minister Modi among the world's most popular democratic leaders. He has also been conferred with the highest civilian honors of more than 30 countries. Prime Minister Modi's rise from a humble socio-economic background to the highest elected office without the support of a political dynasty is widely seen as an illustration of the opportunities and social mobility offered by India's democratic system. During Prime Minister Modi's tenure, nearly 250 million Indians moved out of multidimensional poverty and people saw rapid expansion of digital public infrastructure, large-scale infrastructure development, improvements in welfare delivery and broad-based socio-economic progress. During this period, India has strengthened its position as

0: next face Afghanistan A tomorrow on the same venue. And now for a look at today's newspapers, it's over to Shagun Chopra.
1: Thank you, Saira. Newspapers have widely noticed Prime Minister Narendra Modi's 12 years in office. Modi completes 12 years, BJP hails transformation, writes Hindustan Times, while the Indian Express headlines, NDA turns 12 today, meets to mark Modi crossing Nehru stint. In an age of quick commerce taking precedence in every household, the Economic Times informs, Zepto pips Instamart in orders, but lacks Blinkit. Newspapers also carry a picture of vehicles driving through the Zojila Tunnel, Asia's longest connecting the Kashmir Valley to Ladakh, following its breakthrough ceremony at Minamark in Ladakh on Tuesday. And finally, Financial Express writes about Apple's digital assistant. Siri jumps on AI bandwagon in more personal avatar. And with that, it's back to you, Saira.
0: Thanks, Shagun. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Modi becomes longest-serving elected Prime Minister of India. World leaders hail Prime Minister Modi's transformative governance and advocacy for Global South. NDA to meet in New Delhi today to celebrate PM Modi's achievements and completion of 12 years of government. Centre unveils 1.25 lakh crore rupees rural development push. New framework under Viksit Bharat Jiramji to roll out from 1st July. US military launches strikes against Iran in response to downing of Army Apache helicopter off Oman coast. And in cricket, Ruturaj Gaikwad's century helps India A beat Sri Lanka A by 8 runs in tri-series opener in Dambulla. For details of these stories and more, log on to our website www.newsonair.gov.in and News on AIR app. And with that, we end the morning news. Have a great day.
2: मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं एफएम शिमला. लीजिए पेश है एफएम न्यूज हेडलाइंस.
3: नमस्कार, एफएम न्यूज हेडलाइंस के साथ मैं जगमोहन शर्मा. प्रदेश सरकार ने राज्य में नव निर्वाचित पंचायतों की पहली बैठक 27 जून को तय की है. इस संबंध में कल प्रदेश सरकार द्वारा अधिसूचना जारी कर दी गई है. अधिसूचना में ये भी कहा गया है कि लाहौल स्पीति में ग्राम पंचायतों, जिला परिषद, पंचायत समिति केलंग और चंबा जिला के पांगी सब डिवीजन की पंचायत समिति व ग्राम पंचायतों की पहली बैठक 18 अक्टूबर को होगी. प्रदेश कांग्रेस ने पार्टी के उपाध्यक्ष नीरज भारती को 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया है. पार्टी की अनुशासन समिति की कल शिमला में हुई बैठक में ये फैसला लिया गया. विधायक व अनुशासन कमेटी के अध्यक्ष कुलदीप राठौर ने बैठक के बाद कहा कि अब मीडिया या सोशल मीडिया में पार्टी और सरकार के खिलाफ बयानबाजी करने वाले नेताओं पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी. मुख्य सचिव के पंत ने सभी जिला प्रशासनों और संबंधित विभागों को आगामी मॉनसून सीजन के दौरान भारी बारिश के कारण आपदा और उससे होने वाले नुकसान को कम करने के लिए तैयारियों को और मजबूत करने को कहा है. मुख्य सचिव कल शिमला में मॉनसून की तैयारियों को लेकर आयोजित समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे. प्रदेश हाईकोर्ट ने चंबा नगर परिषद के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के चुनाव पर रोक लगा दी है. अदालत ने ये रोक भाजपा के दो पार्षदों द्वारा चंबा सदर के वर्तमान विधायक के इस चुनाव में वोट डालने पर आपत्ति जताए जाने के बाद लगाई गई है. अदालत ने इस संबंध में चंबा जिला प्रशासन से जवाब मांगा है और अगली सुनवाई 15 जून के लिए निर्धारित की गई है. एम्स चंबियाणा के प्रधानाचार्य डॉक्टर ब्रिज शर्मा ने कहा है कि इस अस्पताल में अगले एक महीने में 3 टेस्ला MRI मशीन स्थापित कर दी जाएगी. डॉक्टर ब्रिज शर्मा ने कहा कि एम्स चंबियाणा को बहुत कम समय में पूरी तरह से क्रियाशील कर दिया गया है. उन्होंने कहा कि अस्पताल में मरीजों की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है और यहाँ पर रोज OPD की संख्या 1000 से ऊपर पहुँच गई है. अंतर्राष्ट्रीय शिमला ग्रीष्मोत्सव के तीसरे दिन आज हेल्दी बेबी शो और माई चैंपियन डॉग शो का भी आयोजन किया जाएगा. एफएम न्यूज हेडलाइंस में अभी बस इतना ही. नमस्कार.
2: 103.7 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं एफएम शिमला. लीजिए पेश है लोक संगीत. शुरुआत करते हैं लोभाराम गुंजेटा के गाए इस लोकगीत के साथ.

लोक संगीत में अभी बस इतना ही। 103.7 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं FM शिमला। 8:45 हुए हैं। लीजिए पेश है फिल्म संगीत।

देखिए, आज का दिन भारतीय संगीत जगत के एक ऐसे गायक के नाम है जिनकी आवाज़ में जोश है, ऊर्जा है और मनोरंजन का भरपूर तड़का है। आज लोकप्रिय गायक मिक्का सिंह का जन्मदिन है। जी हाँ, 10 जून 1977 को जन्मे मिक्का सिंह ने अपने अनोखे गायन अंदाज से बॉलीवुड संगीत को कई यादगार गीत दिए हैं। उनकी आवाज में एक अलग ही जोश और मस्ती देखने को मिलती है जिसने उन्हें देश विदेश में लोकप्रिय बनाया है।

0: संगीत की दुनिया में कुछ आवाज़ें ऐसी होती हैं जो सुनते ही माहौल को खुशनुमा बना देती हैं। ऐसी ही एक आवाज़ है मिका सिंह की। आज उनके जन्मदिन के अवसर पर हम उन्हें हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं और कामना करते हैं कि वे अपने गीतों से यूं ही संगीत प्रेमियों का मनोरंजन करते रहें।
1: Sexy.

0: अगर आप जन जन तक पहुंचना चाहते हैं और अपना व्यवसाय बढ़ाना चाहते हैं तो आकाशवाणी पर सस्ते दामों में अपना विज्ञापन प्रसारित करवाएं।
1: थोड़ा सा प्रयास आपके सपनों को पूरा कर सकता है। आकाशवाणी के माध्यम से आप न केवल प्रदेश बल्कि पूरे देश में अपने व्यवसाय का प्रचार प्रसार कर सकते हैं।
0: शुभवाणी, लाभवाणी, जन जन की वाणी, ये है आकाशवाणी। आकाशवाणी
1: नियमों से लागू।
2: FM शिमला पर आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत, और आज फिल्म संगीत में हम आपको सुना रहे हैं कुछ गाने मीका सिंह की आवाज में इनके जन्मदिन के अवसर पर। देखिए, मीका सिंह ने अपने करियर में कई ऐसे गीत दिए हैं जो हर पार्टी, हर जश्न और हर खुशी के मौके की पहचान बन चुके हैं।

हर सुर में नई उमंग हो, हर गीत में नई तरंग हो, जीवन का हर पल खुशियों से भरा रहे और सफलता का कारवां यूं ही आगे बढ़ता रहे।

देखिए, संगीत की दुनिया में अपनी अलग पहचान बनाना आसान नहीं होता, लेकिन मिका सिंह ने अपनी मेहनत, प्रतिभा और अनूठे अंदाज में ये मुकाम हासिल किया है। उनके गीतों ने ना सिर्फ युवाओं को थिरकने पर मजबूर किया, बल्कि हर जश्न और हर खुशी के मौके को यादगार बनाया है।

फिल्म संगीत में अभी बस इतना ही। 103.7 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं FM शिमला। 9:15 हुए हैं, तो चलिए अब आपको बता दें आज आकाशवाणी शिमला से प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के मुख्य आकर्षण। 9:30 पर आप सुनेंगे सुरबेला कार्यक्रम। रिमझिम कार्यक्रम का आनंद आप लेंगे सुबह 10:00। लोक संगीत आप सुन सकते हैं 11:05, 2:30 पर हिमगुंजन, रात 8:00 धारावी गीत। NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग पेश किया जाएगा 11:30 पर। फिल्म संगीत आप सुनेंगे दोपहर 12:10, 2:45 और रात 8:15 पर। 12:20 पर आप सुनेंगे महिला सम्मेलन कार्यक्रम। 1:10 पर सैनिकों के लिए कार्यक्रम पेश किया जाएगा। 2:00 आप सुनेंगे सुनहरी किरणें। 7:10 पर केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूरे होने पर विशेष कार्यक्रम और रात 9:30 पर चर्चा का विषय है कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किया जाएगा। 8:30 पर आप सुनेंगे सुगम संगीत। गजलों पर आधारित कार्यक्रम गुलदस्ता पेश किया जाएगा रात 9:15 पर। 10:00 आप सुनेंगे फिल्म संगीत और सुरबहार पुराने फिल्मों से कार्यक्रम आप सुन सकते हैं रात 10:30 पर। यह है आज आकाशवाणी शिमला से प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के मुख्य आकर्षण। कृपया हमारी अगली उद्घोषणा की प्रतीक्षा कीजिए।

0: लिए सतत प्रयासरत है। प्रदेश सरकार कुल 5 नशा मुक्ति केंद्रों का संचालन कर रही है, जिसमें निशुल्क काउंसलिंग, उपचार तथा पुनर्वास की सुविधा प्रदान की जा रही है, और कोटला बड़ोग जिला सिरमौर में 100 बिस्तरों की क्षमता वाला आधुनिक सुविधा युक्त आदर्श नशा मुक्ति पुनर्वास केंद्र भी स्थापित किया जा रहा है। विभाग द्वारा सभी जिलों में विभिन्न सरकारी विभागों एवं स्वयंसेवी संस्थाओं के समन्वय से स्कूलों, कॉलेजों और गांव-गांव में बच्चों, युवाओं तथा महिलाओं हेतु जागरूकता अभियान का संचालन किया जा रहा है।
1: प्रिय प्रदेशवासियों, नशा केवल एक व्यक्ति को नहीं बल्कि उसके पूरे परिवार, समाज और पूरे प्रदेश को प्रभावित करता है। हमारी युवा शक्ति ही प्रदेश की सबसे बड़ी ताकत है और उन्हें नशे के अंधकार से सुरक्षित रखना हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है। प्रदेश सरकार नशे के समूल नाश के लिए प्रतिबद्ध है। स्कूलों, कॉलेजों और गांव-गांव में व्यापक जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं। आइए हम सब मिलकर नशे के विरुद्ध अपनी आवाज बुलंद करें और एक स्वस्थ, सुरक्षित एवं नशा मुक्त प्रदेश के निर्माण का संकल्प ले।
0: सुनो सुनाओ यही संदेश, नशा मुक्त हो अपना प्रदेश। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।

0: मीडियम वेव 387.6 मीटर अर्थात 774 किलो हर्ट्स और FM 103.7 मेगाहर्ट्स पर हम आकाशवाणी के शिमला केंद्र से बोल रहे हैं। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार, जिन्हें आकाशवाणी के हमीरपुर और धर्मशाला केंद्रों के साथ साथ FM शिमला, DTH और मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन AIR पर भी सुना जा सकता है।
1: संतान कर्तव्य से मुख न मोड़े, माँ बाप से प्यारा नाता जोड़े।
2: हिमाचल ने बनाई मिसाल नई, भरण पोषण अधिनियम लागू सही।
1: यदि संतान कर्तव्य ना निभाए, कानून वृद्धों को न्याय दिलाए।
2: उपमंडलाधिकारी के पास आवेदन, 5,000 रुपए तक भरण पोषण संरक्षण।
1: जानकारी लें, अधिकार जाने।
2: तहसील या जिला कल्याण अधिकारी से संपर्क ठाने।
1: सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
3: सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग हिमाचल प्रदेश नशे के विरुद्ध जागरूकता अभियान एवं नशा मुक्ति पुनर्वास

नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप विनोद कुमार से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बने। देश विदेश के नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस उपलब्धि को बताया ऐतिहासिक। कल 11 जून को आयोजित होने वाली नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की बैठक में भाग लेने के लिए मुख्यमंत्री आज दिल्ली के लिए होंगे रवाना। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग ने प्रदेश के सांसदों व विधायकों के साथ बैठक कर जनजातीय समुदाय के कल्याण से संबंधित मुद्दों पर किया विचार विमर्श। और प्रदेश में पर्यटन सीजन जोरों पर, सैलानी ले रहे हैं प्राकृतिक सुंदरता का आनंद। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बन गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 26 मई 2014 को पद की शपथ ली थी। उन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू का रिकॉर्ड तोड़ दिया है, जिन्होंने पहली बार 13 मई 1952 को निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली थी और 27 मई 1964 तक सेवा की थी। पंडित नेहरू का निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में कार्यकाल 4,398 दिनों का था। 26 मई 2014 से आज 10 जून 2026 तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का निरंतर कार्यकाल अब 4,399 दिनों का हो गया है, जिससे वे भारत के इतिहास में सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बन गए हैं। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भारत के सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री बने रहने की उपलब्धि पर देश विदेश के नेताओं ने बधाई देते हुए भारत के लिए एक ऐतिहासिक क्षण बताया है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई देते हुए कहा कि ये ऐतिहासिक उपलब्धि केवल कार्यकाल की अवधि नहीं है, बल्कि राष्ट्रीय विकास यात्रा में एक परिवर्तनकारी युग का प्रतीक है। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा कि 2014 के बाद से शासन, राजनीति और सार्वजनिक चर्चा में भारतीयता की ओर से निर्णायक बदलाव आया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने भारत की सभ्यता से जुड़ी विरासत पर गर्व को बढ़ावा दिया है। त्रिनिदाद और टोबैगो की प्रधानमंत्री कमला परसद विशेषर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत वैश्विक मामलों में प्रखर आवाज के रूप में उभरा है। नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की बैठक में हिस्सा लेने के लिए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू आज दिल्ली के लिए रवाना होंगे। कल 11 जून को होने वाली इस अहम बैठक में मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश के जुड़े चार प्रमुख मुद्दों को प्रधानमंत्री और केंद्र सरकार के समक्ष उठा सकते हैं। सूत्रों के अनुसार इनमें RDG बंद होने से राज्य को हुए आर्थिक नुकसान की भरपाई, GST व्यवस्था, प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए अधिक प्रभावी व व्यवहारिक मुआवजा व्यवस्था और लंबे समय से लंबित ग्रीन बोनस की मांग प्रमुख रूप से शामिल है। गौरतलब है कि नीति आयोग की बैठक का एजेंडा मानव संसाधन विकास, शिक्षा, कौशल विकास, रोजगार सृजन और उद्यमिता को बढ़ावा देने जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर केंद्रित रहेगा। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने ऐसे श्रम प्रधान उद्योगों को बढ़ावा

0: देने पर जोर दिया है, जो प्रदेश के युवाओं के लिए अधिक से अधिक रोजगार के अवसर पैदा कर सकें। वे कल शिमला में राज्य एकल खिड़की स्वीकृति व अनुश्रवण प्राधिकरण की 32वीं बैठक की अध्यक्षता करते हुए बोल रहे थे। बैठक में 5,870.01 करोड़ रुपए के प्रस्तावित निवेश वाले 42 औद्योगिक निवेश प्रस्तावों को मंजूरी प्रदान की गई। मुख्यमंत्री ने कहा कि बैठक में दी गई स्वीकृतियां एक प्रगतिशील व समावेशी औद्योगिक वातावरण बनाने के प्रति राज्य सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। ऊना जिला के औद्योगिक क्षेत्र टाहलीवाल में जल्द ही लोगों को आधुनिक सीवरेज व्यवस्था की सुविधा मिलेगी। जल शक्ति विभाग ने 24 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली इस परियोजना को मंजूरी प्रदान कर दी है। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने बताया कि क्षेत्र में बढ़ती आबादी, औद्योगिक गतिविधियों और शहरी विस्तार को देखते हुए आधुनिक सीवरेज व्यवस्था समय की मांग थी। उन्होंने कहा कि परियोजना के तहत आधुनिक सीवरेज नेटवर्क को विकसित किया जाएगा और परियोजना के पूर्ण होने से क्षेत्र में स्वच्छता के अलावा पर्यावरण संरक्षण को भी बढ़ावा मिलेगा। शिमला में चल रहे 5 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय शिमला ग्रीष्मोत्सव की धूम जारी है। 12 जून तक चलने वाले महोत्सव में विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम, प्रदर्शनियां, फ्लावर शो व खेलकूद प्रतियोगिताएं लोगों व पर्यटकों को आकर्षित कर रही है। एक रिपोर्ट।
1: ऐतिहासिक रिज मैदान पर जारी अंतर्राष्ट्रीय शिमला ग्रीष्मोत्सव स्थानीय लोगों सहित यहां पहुंचे हजारों पर्यटकों का भरपूर मनोरंजन कर रहा है। बीते कल रिज मैदान पर मां की ममता समाज की शक्ति थीम पर आधारित महानाटी लोगों के आकर्षण का केंद्र रही। इसके अलावा बाहरी राज्यों के कलाकारों के अलावा प्रदेश के लोक कलाकारों की प्रस्तुतियों ने भी यहां मौजूद लोगों का भरपूर मनोरंजन किया। महोत्सव में रिज मैदान पर फन अट्रैक्शन के रूप में स्टैच्यू मैन व फ्लावर शो भी आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। लोगों की सुविधा के लिए जहां परिवहन विभाग ने विशेष टैक्सी संचालित की है, वहीं सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। आकाशवाणी समाचार के लिए समाचार कक्ष से मैं जगमोहन शर्मा।
0: ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज़ शिमला, एक्स हैंडल @AIRNews_शिमला और यूट्यूब चैनल AIR Shimla News को फॉलो कर सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी शिमला से प्रसारित किए जा रहे हैं। विकसित वाइब्रेंट विलेज यूथ एक्सचेंज कार्यक्रम के तहत उत्तर प्रदेश और बिहार के 25 युवा प्रतिभागियों ने कल स्पीति घाटी के प्रमुख पर्यटन स्थलों का भ्रमण किया। इस दौरान उन्होंने विश्व के सबसे ऊंचे डाकघर हिक्किम पोस्ट ऑफिस, अपने परिजनों, मित्रों और प्रधानमंत्री को पत्र भी भेजे। इन प्रतिभागियों ने गोम्पा, चिचमपुल व लंगजा गांव का दौरा कर यहाँ की संस्कृति, प्राकृतिक सुंदरता और जीवन शैली को भी जाना। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने अपने हिमाचल प्रवास के दौरान कल शिमला में राज्य के सांसदों व विधायकों के साथ बैठक की। बैठक की अध्यक्षता आयोग के अध्यक्ष अंतर सिंह आर्य ने की। बैठक के दौरान जनजातीय समुदाय के कल्याण, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क संपर्क, रोजगार, आधारभूत सुविधाओं सहित सरकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन से जुड़े मुद्दों पर विचार विमर्श किया गया। आयोग के अध्यक्ष ने कहा कि जनजातीय क्षेत्रों के समग्र विकास और वहां के लोगों के अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करना आयोग की प्राथमिकता है। अंतर सिंह आर्य ने कहा कि जनप्रतिनिधियों द्वारा उठाए गए विषयों व सुझावों पर गंभीरतापूर्वक विचार किया जाएगा। प्रदेश में इन दिनों पर्यटन सीजन अपने यौवन पर है। मैदानी राज्यों से लोग हिमाचल के शुद्ध वातावरण का आनंद लेने के लिए राज्य के विभिन्न पर्यटक स्थलों पर पहुंच रहे हैं। कुल्लू जिले में हर रोज लगभग 5,000 सैलानी यहां आकर प्राकृतिक सुंदरता का आनंद ले रहे हैं। विस्तृत ब्यौरे के साथ हमारे कुल्लू जिला संवाददाता।
2: कुल्लू जिला में इन दिनों पर्यटन सीजन अपने यौवन पर है तथा प्रतिदिन लगभग 5,000 पर्यटक वाहन यहां आ रहे हैं। इतनी अधिक संख्या में वाहनों के आने के बावजूद सैलानियों व स्थानीय लोगों को स्वच्छ एवं ताजा हवा मिल रही है। कुल्लू मनाली का स्वच्छ वातावरण एवं निर्मल जल स्रोत लोगों को आकर्षित कर रहे हैं। मनाली व आसपास के इलाकों में अमूमन एक आध दिन को छोड़कर बारिश हो जाती है, जबकि मौसम के खराब रहने के समय ऊंची चोटियों पर हल्का फुल्का हिमपात हो जाता है, जिसके चलते वातावरण में वायु प्रदूषण का असर देखने को नहीं मिलता है। बहरहाल पिछले वर्ष से लेकर अब तक वायु गुणवत्ता संतोषजनक बनी हुई है, जो घाटी के पर्यावरणीय संतुलन के लिए एक अच्छा संकेत है। आकाशवाणी के लिए कुल्लू से आशीष शर्मा।
0: चंबा जिला के जंगलों में लगी आग से करोड़ों रुपए की वन संपदा को नुकसान पहुंच रहा है। वहीं दुर्लभ वन्य जीवों और जैव विविधता पर भी गंभीर संकट खड़ा हो गया है। मुख्य वन्य अरण्यपाल राकेश कुमार ने बताया कि विभागीय कर्मचारी फील्ड में तैनात है, जो आग बुझाने का भरसक प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जंगलों में आग लगने वाले लोगों के खिलाफ भविष्य में कानूनी कार्यवाही अमल में लाई जाएगी, ताकि ऐसी दुर्घटनाओं पर अंकुश लग सके। और अब एक नज़र अखबारों की सुर्खियों पर। आज समाचार पत्र

0: ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता दी है। अमर उजाला प्रदेश उच्च न्यायालय के हवाले से लिखता है, पारंपरिक रास्तों को रोकना गैर कानूनी, भूमि मालिक भी बंद नहीं कर सकते। हिमाचल दस्तक की सुर्खी है, नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की बैठक में हिस्सा लेने दिल्ली जाएंगे सीएम सुक्खू। दैनिक जागरण की एक खबर है, 5,870 करोड़ रुपए के निवेश से लगेंगे 42 उद्योग, 13,000 को मिलेगा रोजगार। पंजाब केसरी लिखता है, कांग्रेस का सख्त रुख, नीरज भारती सहित 4 पदाधिकारी निष्कासित। दिव्य हिमाचल ने मुख्यमंत्री के बयान को प्रमुखता दी है, दिहाड़ीदार और पार्ट टाइम कर्मियों के वेतन में बढ़ोतरी। जबकि दैनिक भास्कर की सुर्खी है, नॉर्वे के साथ मिलकर कचरा प्रबंधन और हरित विकास पर काम करेगा हिमाचल। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बने। देश विदेश के नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस उपलब्धि को बताया ऐतिहासिक। कल 11 जून को आयोजित होने वाली नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की बैठक में भाग लेने के लिए मुख्यमंत्री आज दिल्ली के लिए होंगे रवाना। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग ने प्रदेश के सांसदों व विधायकों के साथ बैठक कर जनजातीय समुदाय के कल्याण से संबंधित मुद्दों पर किया विचार विमर्श। और प्रदेश में पर्यटन सीजन जोरों पर, सैलानी ले रहे प्राकृतिक सुंदरता का आनंद। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं सुबह 11 बजे। नमस्कार।
1: आकाशवाणी शिमला से अभी आपने सुने प्रादेशिक समाचार। हम आकाशवाणी के शिमला केंद्र से बोल रहे हैं, कृपया हमारी अगली उद्घोषणा की प्रतीक्षा कीजिए।
2: सुबह हो या शाम, आपके घर आंगन में महकती एक आवाज 103.7 मेगाहर्ट्ज FM शिमला। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए, 103.7 मेगाहर्ट्ज FM शिमला।

103.7 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं FM शिमला, कुदरत के रंग कार्यक्रम लेकर हाजिर है आपकी रेडियो हम सफर रीना वर्मा। जब भी हम कहीं घूमने जाते हैं ना, तो वहाँ के बारे में जानकारी होना बहुत जरूरी है। आज इस कार्यक्रम में हम आपको सैर करवाएंगे हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला की। जी हाँ, शिमला यहाँ का सबसे मशहूर पहाड़ी इलाका है और ये अपनी सुंदरता को चारों ओर बिखेरता है। शायद तभी लोग इसके दीवाने हैं। इसके दीवानेपन ने सभी को अपनी ओर खींच के रखा है।

शिमला पर्यटन स्थल हर साल भारी भीड़ को अपनी ओर आकर्षित करता है। यहाँ का वातावरण इतना मस्त है कि खुद भी यहाँ से कहीं निकलने का मन ही नहीं करता। पहाड़ों का गमन करते हुए चलते हैं शिमला की सैर पर, जहाँ आपको दूसरे सौंदर्यपूर्ण स्थलों को देखने का मौका मिलेगा। यहाँ पर समर हिल्स के पास हरियाली युक्त पहाड़ जो आपको बेहद शोभित नज़ारा देगा, जिससे आंखें चार किए बिना आप नहीं रह पाएंगे। सूर्य उदय से लेकर सूर्यास्त तक का हर पल का नज़ारा आपको लुभावना लगेगा। अपनी अनकही सुंदरता और बयान करते ये शांत पहाड़ आपके मन को हलचल को भी कुछ पल के लिए ठहरा देंगे।

और देखिए शिमला में चैडविक फॉल्स है, इस नाम की उत्पत्ति चिड़कू झार से हुई है, जिसमें चिड़कू का अर्थ है गोरैया, वो झार का अर्थ है झरना। स्थानीय लोगों का कहना है कि केवल गोरैया ही इतने

ऊंचे झरने तक पहुंच सकती है, इसलिए इसका ये नाम पड़ा है। बहुत घने देवदार के पेड़ों से लवरेज ये झरना यात्रियों को बेहद आकर्षित करता है। द शिमला स्टेट म्यूजियम है यहाँ पर। ब्रिटिश वास्तुकला से उकेरा गया ये संग्रहालय शिमला की प्राचीन सभ्यता व संस्कृति का प्रतीक है। यहाँ मौजूद कलात्मकता जैसे चित्रकला, मूर्तियाँ व हस्तशिल्प लोगों को यहाँ की संस्कृति के बारे में अधिक जानने के लिए प्रेरित करती है।

0: आकाशवाणी के साथ जुड़िए और अपने उत्पाद और सर्विसेज यानी सेवाओं से जुड़े अपने कारोबार के बारे में सस्ते दामों पर विज्ञापनों के माध्यम से प्रचार प्रसार कर अपने लक्ष्यों को प्राप्त करें।
1: शुभवाणी, लाभवाणी, जन जन की वाणी, ये है आकाशवाणी।
0: नियम और शर्तें लागू।

देखिए, शिमला के द स्कैंडल पॉइंट की तो अपनी ही एक अलग बात है। चारों ओर से ढके पहाड़ों के बीच स्थित ये समतल क्षेत्र पर्यटकों का आकर्षक केंद्र है। पहाड़ों से प्रेम करने वालों को ये जगह बेहद रास आती है और शिमला में मॉल रोड और रिज मैदान पर घूमने का तो अपना ही एक मज़ा है। यहाँ पर घूमते घूमते कब वक्त निकल जाता है पता ही नहीं चलता। और घूमने फिरने के साथ साथ आप यहाँ पर खरीदारी भी कर सकते हैं। खरीदारी करने के लिए इसके साथ ही लोअर बाज़ार भी है और इसके साथ में आप लक्कड़ बाज़ार से भी कुछ चीज़ें खरीद सकते हैं। यहाँ पर लकड़ी से बनी वस्तुओं के लिए मशहूर है और अगर आप शिमला आए हैं और अपने साथ यहाँ की कुछ स्थानीय वस्तुओं को याद के तौर पर अपने साथ ले जाना चाहते हैं तो यहाँ से आप अपनी पसंद की वस्तु ले जा सकते हैं। और आपको बता दें कि इन दिनों शिमला में अंतर्राष्ट्रीय शिमला समर फेस्टिवल 2026 भी पूरे उत्साह के साथ चल रहा है और ये महोत्सव 8 जून से शुरू हो गया है जो कि 12 जून 2026 तक ऐतिहासिक रिज मैदान में आयोजित किया जा रहा है, तो आप इसका भी भरपूर आनंद ले सकते हैं। और अगर आप धार्मिक प्रवृत्ति के हैं तो आपके लिए बहुत से धार्मिक स्थल भी है यहाँ पर। शिमला में ही स्थित कालीबाड़ी मंदिर, शिमला के शिखर में जाखू मंदिर, कामना देवी, हनुमान मंदिर और शिमला से थोड़ी ही दूरी पर तारा देवी मंदिर है जहाँ आप जा सकते हैं। और देखिए, एक बार जब कोई शिमला आता है ना तो उसका बार बार यहाँ आने का मन करता है।

0: कुदरत के रंग कार्यक्रम में आज बस इतना ही। 103.7 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं एफएम शिमला। लीजिए पेश है एफएम न्यूज हेडलाइंस।
1: नमस्कार, एफएम न्यूज हेडलाइंस के साथ मैं जगमोहन शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बन गए हैं। उन्होंने 26 मई 2014 को प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। उन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। पंडित नेहरू का कार्यकाल 4398 दिनों का था। 26 मई 2014 से आज 10 जून 2026 तक प्रधानमंत्री मोदी का निरंतर कार्यकाल अब 4399 दिनों का हो गया है, जिससे वे भारत के इतिहास में सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बन गए हैं। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भारत के सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री बनना स्वतंत्रता के बाद देश में एक ऐतिहासिक क्षण है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान समेत कई केंद्रीय मंत्रियों ने प्रधानमंत्री को शुभकामनाएं दी हैं। नीति आयोग के गवर्निंग काउंसिल की बैठक में हिस्सा लेने के लिए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू आज दिल्ली के लिए रवाना होंगे। कल 11 जून को होने वाली इस अहम बैठक में मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश से जुड़े चार प्रमुख मुद्दों को प्रधानमंत्री और केंद्र सरकार के समक्ष उठा सकते हैं। सूत्रों के अनुसार इनमें RDG बंद होने से राज्य को हुए आर्थिक नुकसान की भरपाई, GST व्यवस्था, प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए अधिक प्रभावी व व्यवहारिक मुआवजा व्यवस्था और लंबे समय से लंबित ग्रीन बोनस की मांग प्रमुख रूप से शामिल है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने ऐसे श्रम प्रधान उद्योगों को बढ़ावा देने पर

0: जोर दिया है जो प्रदेश के युवाओं के लिए अधिक से अधिक रोजगार के अवसर पैदा कर सकें। वे कल शिमला में सिंगल विंडो की 32वीं बैठक की अध्यक्षता करते हुए बोल रहे थे। बैठक में 5,877 करोड़ के प्रस्तावित निवेश वाले 42 औद्योगिक निवेश प्रस्तावों को मंजूरी प्रदान की गई है। प्रदेश में इन दिनों पर्यटन सीजन अपने यौवन पर है। मैदानी राज्यों से लोग हिमाचल के शुद्ध वातावरण का आनंद लेने के लिए राज्य के विभिन्न पर्यटक स्थलों पर पहुंच रहे हैं। कुल्लू जिले में हर रोज लगभग 5,000 सैलानी यहां आकर प्राकृतिक सुंदरता का आनंद ले रहे हैं। मौसम विभाग ने 11 व 12 जून को कुल्लू, मंडी, शिमला और सिरमौर में ओलावृष्टि, वर्षा और आंधी तूफान का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। विभाग ने इस अवधि में किन्नौर व लाहौल स्पीति को छोड़कर अन्य सभी जिलों के लिए ओलावृष्टि, वर्षा और आंधी तूफान का येलो अलर्ट जारी किया है। एफएम न्यूज हेडलाइंस में अभी बस इतना ही। नमस्कार।
1: सुबह हो या शाम, आपके घर आंगन में महकती एक आवाज 103.7 मेगाहर्ट्ज एफएम शिमला। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए, 103.7 मेगाहर्ट्ज एफएम शिमला।
2: वन जीरो 3.7 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं एफएम शिमला। 10 बजे हैं और ये समय है कार्यक्रम गीत गाता चल का। आगाज करते हैं आज की फिल्म के इस गीत के साथ। आवाज़ है कुमार सानू की, गीतकार है समीर, संगीतकार नदीम श्रवण।

FM शिमला पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम गीत गाता चल। विजु शाह के संगीत निर्देशन में लीजिए सुनिए आनंद बख्शी का लिखा ये गीत। आवाज है साधना सरगम की, फिल्म का नाम है विश्वात्मा।

0: सुरक्षित रखना हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है। प्रदेश सरकार नशे के समूल नाश के लिए प्रतिबद्ध है। स्कूलों, कॉलेजों और गांव-गांव में व्यापक जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं। आइए हम सब मिलकर नशे के विरुद्ध अपनी आवाज बुलंद करें और एक स्वस्थ, सुरक्षित एवं नशा मुक्त प्रदेश के निर्माण का संकल्प।
1: सुनो सुनाओ यही संदेश, नशा मुक्त हो अपना प्रदेश। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
2: FM शिमला पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम गीत गाता चल। साजन फिल्म का गीत सुनिए जिसे गाया है SP बाला सुब्रमण्यम ने, बोल हैं समीर के और तर्ज दी है नदीम श्रवण ने।

0: सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग हिमाचल प्रदेश नशे के विरुद्ध जागरूकता अभियान एवं नशा मुक्ति पुनर्वास के लिए सतत प्रयासरत है। प्रदेश सरकार कुल 5 नशा मुक्ति केंद्रों का संचालन कर रही है, जिसमें निशुल्क काउंसलिंग, उपचार तथा पुनर्वास की सुविधा प्रदान की जा रही है और कोटला बड़ोग जिला सिरमौर में 100 बिस्तरों की क्षमता वाला आधुनिक सुविधा युक्त आदर्श नशा मुक्ति पुनर्वास केंद्र भी स्थापित किया जा रहा है। विभाग द्वारा सभी जिलों में विभिन्न सरकारी विभागों एवं स्वयंसेवी संस्थाओं के समन्वय से स्कूलों, कॉलेजों और गांव-गांव में बच्चों, युवाओं तथा महिलाओं हेतु जागरूकता अभियान का संचालन किया जा रहा है।
1: प्रिय प्रदेशवासियों, नशा केवल एक व्यक्ति को नहीं बल्कि उसके पूरे परिवार, समाज और पूरे प्रदेश को प्रभावित करता है। हमारी युवा शक्ति ही प्रदेश की सबसे बड़ी ताकत है और उन्हें नशे के अंधकार से

दीवाना फिल्म का गीत सुनी जिसे गाया है कुमार सानू ने। शब्द रचना है समीर की और संगीत रचना नदीम श्रवण की।

एफएम शिमला पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम गीत गाता चल। शिव हरि के संगीत निर्देशन में लीजिए सुनिए आनंद बख्शी का लिखा ये गाना, जिसे गाया है उदित नारायण ने और फिल्म का नाम है डर।

0: अरे बेटा जीवन क्या बताऊं, डॉक्टर ने ऑपरेशन के लिए कहा है लेकिन लाखों रुपए का इलाज हम कहां से करवाएं?
1: ताऊ जी अब चिंता छोड़ो, मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने गरीबों के इलाज का पूरा इंतजाम कर दिया है। अब प्रदेश के अटल सुपर स्पेशलिटी आयुर्विज्ञान संस्थान चमियाड़ा, टांडा मेडिकल कॉलेज, नेरचौक मेडिकल कॉलेज और IGMC शिमला में पहली बार रोबोटिक सर्जरी जैसी आधुनिक सुविधाएं मिल रही हैं। अब इलाज होगा आसान, हर घर तक पहुंचेगा सम्मान। प्रदेश में 3,000 करोड़ रुपए खर्च कर एम्स दिल्ली की तर्ज पर स्वास्थ्य सुविधाएं मजबूत की जा रही हैं। अस्पतालों में 19 वर्षों से अधिक पुरानी मशीनों को अत्याधुनिक मशीनों से बदला जा रहा है। सभी स्वास्थ्य स्थानों में चरणबद्ध तरीके से अत्याधुनिक 3 टेस्ला MRI, पैट स्कैन, अल्ट्रासाउंड और CT स्कैन मशीनें स्थापित की जा रही हैं। मरीजों को बेहतर जांच सुविधाएं मिल रही हैं। आदर्श स्वास्थ्य संस्थानों में 6-6 विशेषज्ञ डॉक्टरों की तैनाती की गई है। डॉक्टरों, स्टाफ नर्सों और पैरा मेडिकल स्टाफ की भर्ती भी तेजी से हो रही है। और सुनिए ताऊ जी, प्रदेश के मेडिकल कॉलेजों में PG की 314 सीटें भी बढ़ाई जा रही हैं।
2: वाह बेटा, अब तो इलाज के लिए बड़े शहरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे।
3: हर घर तक स्वास्थ्य का अधिकार, जन जन के साथ सुखू सरकार। स्वस्थ हिमाचल, खुशहाल परिवार, सुखू सरकार सबके द्वार। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जनहित में जारी।
4: FM शिमला पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम गीत गाता चल। बाजीगर फिल्म का गीत सुनिए जिसे गाया है विनोद राठौड़ ने। गीतकार हैं रानी मलिक, संगीतकार अनु मलिक।

अग्नि साक्षी फिल्म में अभी आपने बाबुल सुप्रियो और कविता कृष्णमूर्ति को सुना। गीतकार थे समीर, संगीतकार नदीम श्रवण। लीजिए सुनिए दिलवाले फिल्म का ये गाना, जिसे गाया है कुमार सानू और अलका याग्निक ने, बोल हैं समीर के, तर्ज दी है नदीम श्रवण ने।

0: और सानू को सुना गीत गाता चल कार्यक्रम में आज बस इतना ही। अपनी रेडियो हम सफर रीना वर्मा को दीजिए इजाजत। आप सुनते रहिए एफएम शिमला 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर।
1: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी शिमला का प्रसारण। 11 बजने को हैं, अब आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार, जिन्हें आकाशवाणी के हमीरपुर और धर्मशाला केंद्रों के साथ साथ आकाशवाणी एफएम शिमला 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर भी सुना जा सकता है। प्रादेशिक समाचार मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन एआईआर के साथ साथ डीटीएच सेवा पर भी उपलब्ध हैं।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप विनोद कुमार से प्रादेशिक समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बन गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 26 मई 2014 को पद की शपथ ली थी। उन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू का रिकॉर्ड तोड़ दिया है, जिन्होंने पहली बार 13 मई 1952 को निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली थी और 27 मई 1964 तक सेवा की थी। पंडित नेहरू का निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में कार्यकाल 4398 दिनों का था। 26 मई 2014 से आज 10 जून 2026 तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का निरंतर कार्यकाल अब 4399 दिनों का हो गया है, जिससे वे भारत के इतिहास में सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बन गए हैं। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भारत के सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री बने रहने की उपलब्धि पर देश विदेश के नेताओं ने बधाई देते हुए इसे भारत के लिए एक ऐतिहासिक क्षण बताया है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई देते हुए कहा कि ये ऐतिहासिक उपलब्धि केवल कार्यकाल की अवधि नहीं है, बल्कि राष्ट्रीय विकास यात्रा में एक परिवर्तनकारी युग का प्रतीक है। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा कि प्रधानमंत्री ने भारत की सभ्यता से जुड़ी विरासत पर गर्व को बढ़ा दिया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल के सदस्यों ने भी इस उपलब्धि पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई दी है। इधर श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुराग कुमार दिसा नायका ने एक पत्र में कहा कि ये उपलब्धि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की जनता द्वारा उनके नेतृत्व पर बार बार जताए गए विश्वास का भी प्रमाण है। पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री जेम्स माराप्पे ने एक वीडियो संदेश में प्रधानमंत्री मोदी को आदर्श नेतृत्व का उदाहरण बताया। नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिलिंग की बैठक में हिस्सा लेने के लिए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू आज दिल्ली के लिए रवाना होंगे। कल 11 जून को होने वाली इस अहम बैठक में मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश से जुड़े चार प्रमुख मुद्दों को प्रधानमंत्री और केंद्र सरकार के समक्ष उठा सकते हैं। सूत्रों के अनुसार इनमें RDG बंद होने से राज्य को हुए आर्थिक नुकसान की भरपाई, GST व्यवस्था, प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए अधिक प्रभावी व व्यावहारिक मुआवजा व्यवस्था और लंबे समय से लंबित ग्रीन बोनस की मांग प्रमुख रूप से शामिल है। गौरतलब है कि नीति आयोग की बैठक का एजेंडा मानव संसाधन विकास, शिक्षा, कौशल विकास, रोजगार सृजन और उद्यमिता को बढ़ावा देने जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर केंद्रित रहेगा। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने अपने हिमाचल प्रवास के दौरान कल शिमला में राज्य के सांसदों व विधायकों के साथ बैठक की। बैठक की अध्यक्षता आयोग के अध्यक्ष अंतर सिंह आर्य ने की। बैठक के दौरान जनजातीय समुदाय के कल्याण, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क संपर्क, रोजगार, आधारभूत सुविधाओं सहित सरकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन से जुड़े मुद्दों पर विचार विमर्श किया गया। आयोग के अध्यक्ष ने कहा कि जनजाति क्षेत्रों के समग्र विकास और वहां के लोगों के अधिकारों की सुरक्षा करना आयोग की प्राथमिकता है। अंतर सिंह आर्य ने कहा कि जनप्रतिनिधियों द्वारा उठाए गए विषयों व सुझावों पर गंभीरतापूर्वक विचार किया जाएगा। राजधानी शिमला सहित प्रदेश के अधिकतर भागों में आज मौसम साफ बना हुआ है। पिछले कुछ दिनों से तापमान में वृद्धि के चलते खासकर मैदानी इलाकों में लोगों को गर्मी से जूझना पड़ रहा है। इन क्षेत्रों में तापमान 40 डिग्री को पार कर गया है। सिरमौर जिला के मैदानी इलाकों में भी बढ़ती गर्मी लोगों के लिए परेशानी का सबब बना हुआ है। एक रिपोर्ट।
1: सिरमौर जिला के मैदानी इलाकों में लगातार बढ़ रही गर्मी ने लोगों की परेशानियां बढ़ा दी है। यहां दिन के समय का तापमान 38 डिग्री से 40 डिग्री तक पहुंच रहा है। मुख्य रूप से औद्योगिक क्षेत्र कालाअंब, पांवटा साहिब के अलावा धौलाकुआं और जिला मुख्यालय नाहन में लोगों को परेशानियां झेलनी पड़ रही है। हालांकि मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक 11 जून से मौसम बदलेगा। ऐसे में 11 जून के बाद लोगों को गर्मी से राहत मिल सकती है। आकाशवाणी

0: समाचार के लिए नाहन से सतीश शर्मा।
1: इस बीच मौसम विभाग ने 11 व 12 जून को कुल्लू, मंडी, शिमला और सिरमौर में ओलावृष्टि, वर्षा और आंधी तूफान का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। विकसित वाइब्रेंट विलेज यूथ एक्सचेंज कार्यक्रम के तहत उत्तर प्रदेश और बिहार के 25 युवा प्रतिभागियों ने कल स्पीति घाटी के प्रमुख पर्यटन स्थलों का भ्रमण किया। इस दौरान उन्होंने विश्व के सबसे ऊंचे डाकघर हिक्किम पोस्ट ऑफिस से अपने परिजनों, मित्रों और प्रधानमंत्री को पत्र भी भेजे। इन प्रतिभागियों ने गोम्पा, चीचमपुल व लंगजा गाँव का दौरा कर यहाँ की संस्कृति, प्राकृतिक सुंदरता और जीवन शैली को भी जाना। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं दोपहर 3 बजे। नमस्कार।
2: आप सुन रहे थे प्रादेशिक समाचार, जिन्हें आकाशवाणी के हमीरपुर और धर्मशाला केंद्रों के साथ साथ आकाशवाणी एफएम शिमला 103.7 मेगाहर्ट्ज पर भी सुना गया। कृपया हमारी अगली उद्घोषणा की प्रतीक्षा कीजिए।

आप सुन रहे हैं FM शिमला 103.7 MHz पर। आप सभी को अलका ठाकुर का प्यार भरा नमस्कार। जी FM शिमला पर आपके लिए लेकर आ गए हैं कार्यक्रम वो जो आपको यादों के सुनहरे दौर में लेकर जाता है। स्वागत आप सभी का आपके अपने कार्यक्रम में, नाम है जिसका पुरानी फिल्मों से। कहते हैं वक्त गुजरता है तो यादें पीछे छूट जाती हैं, लेकिन हमारी पुरानी फिल्मों का एक ऐसा सुनहरा दौर है जिसकी खुशबू आज भी ताज़ा है। और वही मासूमियत, वही दिल को छू लेने वाले गाने और वही बेमिसाल अदाकारी। तो आइए आज के इस कार्यक्रम का आगाज करते हैं उसी सुनहरी दौर के नाम।

ना लफ्जों की कमी थी ना जज्बातों की मिलावट थी, पुराने गीतों में रूह की बनावट थी। इज्जत फिल्म का ये गीत आपने सुना लता मंगेशकर की आवाज में। इस गीत को लिखा साहिर ने और संगीत दिया लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम पुरानी फिल्मों से।

0: जीवन भाई, खेतों के सामने खड़े होकर क्यों मुस्कुरा रहे हो?
1: अरे भाई, खुशी तो होगी, अब हमें हमारी मेहनत के अच्छे दाम जो मिल रहे हैं। किसानों की भलाई के बारे में सोचते हुए हमारे मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने पहली बार प्राकृतिक खेती से तैयार फसलों के लिए MSP तय की।

0: जीवन भाई, खेतों के सामने खड़े होकर क्यों मुस्कुरा रहे हो?
1: अरे भाई, खुशी तो होगी, अब हमें हमारी मेहनत के अच्छे दाम जो मिल रहे हैं। किसानों की भलाई के बारे में सोचते हुए हमारे मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पहली बार प्राकृतिक खेती से तैयार फसलों के लिए MSP तय की है, और इन फसलों के लिए MSP देने वाला हिमाचल देश का पहला राज्य है। इस साल से सरकार ने प्राकृतिक खेती से तैयार गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 60 रुपए से बढ़ाकर 80 रुपए प्रति किलोग्राम, मक्की का समर्थन मूल्य 40 रुपए से बढ़ाकर 50 रुपए प्रति किलोग्राम तथा कच्ची हल्दी का समर्थन मूल्य 90 रुपए से बढ़ाकर 150 रुपए प्रति किलोग्राम किया है। पांगी घाटी में प्राकृतिक रूप से उगाए जा रहे जौ की MSP को 60 रुपए से बढ़ाकर 80 रुपए प्रति किलोग्राम किया है। पहली बार अदरक के लिए 30 रुपए प्रति किलोग्राम का समर्थन मूल्य निर्धारित किया गया है। राज्य में बीज गांव तैयार किया जाएगा, जिसमें किसान पारंपरिक बीजों का उत्पादन करेंगे। और भी सुनो भाई, प्रदेश में राज्य किसान आयोग बनाया जाएगा, जिससे हम अपनी मांगों को सरकार तक और आसानी से पहुंचा पाएंगे। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू रख रहे हैं किसानों की जरूरतों का ख्याल, और समृद्ध किसान बना रहे हिमाचल की पहचान।
2: गांव का करके विकास, आत्मनिर्भर राज्य की दिशा में सरकार कर रही सार्थक प्रयास। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जनहित में जारी।

सदियां गुजर गई मगर एहसास वही है, पुराने गीतों का अंदाज आज भी सबसे सही है। आज किशोर में जब दिल कहीं घबराता है, रफ़ी लता और किशोर का कोई नगमा ही सुकून दिलाता है। आप सुन रहे कार्यक्रम पुरानी फिल्मों से।

जब जब फूल के लिए इस फिल्म का गीत आपने सुना, आवाज मोहम्मद रफी की, आनंद बख्शी के बोल, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, आर डी बर्मन और शंकर जयकिशन जैसे दिग्गजों ने ऐसी धुनें बनाई जो आज भी नए गानों से कहीं ज्यादा गुनगुनाई जाती है। गानों के बोल इतने मायनेदार होते थे कि लगता था

0: कोई शायरी चल रही हो। जी हाँ, उस दौर में बिना बड़े बड़े एक्शंस या धमाकों के भी सीन में जान डाल दी जाती थी। सिर्फ आंखों की मस्ती, एक छोटी सी मुस्कान या चेहरे के बदलते भाव पूरी कहानी बयां कर देता था। नूतन, मीना कुमारी, वहीदा रहमान और मधुबाला जी का पर्दे पर आना ही अपने आप में एक जादू होता। उनकी अदाकारी में एक ठहराव और शराफत होती थी। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम पुरानी फिल्मों से।
1: नीलम छुटकी फर्राटेदार अंग्रेजी में बच्चों को क्या सिखा रही है?
2: भाभी, जब से छुटकी का दाखिला सरकारी स्कूल में किया है, उसे तो मानो पंख लग गए हैं। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने वादा निभाते हुए पहली क्लास से अंग्रेजी मीडियम में पढ़ाई शुरू करवाई है। साथ ही प्रदेश में CBSE और राजीव गांधी आदर्श दे बोर्डिंग स्कूल शुरू किए जा रहे हैं। अब सरकारी स्कूलों के बच्चे आत्मविश्वासी बन रहे हैं। सरकारी स्कूलों में मुख्यमंत्री बाल पोषण योजना से बच्चों की पोषण जरूरतों का भी ख्याल रखा जा रहा है।
1: नीलम, अच्छे नंबर लाने वाले बच्चों को सरकार विदेश में शैक्षणिक भ्रमण पर भेजती है, ताकि बच्चे वहाँ की पढ़ाई के बारे में जान सकें।
2: भाभी, छुटकी की मैडम बता रही थी कि गुणात्मक शिक्षा के क्षेत्र में हिमाचल प्रदेश ने देश भर में 6ठा स्थान हासिल किया है और राज्यों की श्रेणी में हिमाचल 3रे नंबर पर रहा है। जी हाँ, ये सब संभव हो पाया है मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू के बुलंद इरादों से।
3: शिक्षा से आत्मविश्वास और आत्मविश्वास से नए मुकाम हासिल कर रहे हैं हिमाचल के बच्चे। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग हिमाचल सरकार द्वारा जनहित में जारी।

हवा में बर्फ की ठंडक, दिलों में गर्म जज्बात लाए हैं हम अपने साथ, पहाड़ी संगीत की सौगात लाए हैं। जहां देवदार के साए में सुकून सरगोशियां करता है, उन्हें ऊंचे शिखरों से चुनकर हसीन ख्यालात लाए हैं। जी आप हमारे साथ और सुन रहे फिल्म शिमला, पहाड़ी संगीत की शुरुआत हम कर रहे हैं इस पहाड़ी भजन के साथ। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

जय करण शर्मा और साथियों की आवाज़ में ये भजन आपने सुना, आइए अब सुनते हैं राजपाल की आवाज़ में ये लोकगीत।

0: बुजुर्गों को सभी हक मिले, सम्मान सहित जीवन चले।
1: 1015-1700 पेंशन हर माह मिले सुरक्षा संरक्षण।
0: पेंशन का है वादा न्यारा, अंत समय तक वृद्धों का सहारा।
1: आज ही आवेदन करें, हिम परिवार पोर्टल से जुड़ें।
0: अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें तहसील या जिला कल्याण अधिकारी से।
1: सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।

पहाड़ी संगीत है आप सुन रहे हैं जी। ये सिर्फ एक कार्यक्रम नहीं है बल्कि उन ऊंचाइयों की गूंज है जहां हमारी परंपरा, हमारा संगीत और हमारी पहचान बसती है। जैसे पहाड़ों की चोटी से गिरता झरना एक नया राग छेड़ता है, वैसे ही हम आपके लिए लेकर आते हैं लोकगीतों के सुरों की अनोखी सरगम। तो आइए अगले लोकगीत में सुनिए हेतराम कैंथा को।

भाई देखिए, पहाड़ी संगीत सिर्फ धुनें नहीं है, ये हमारे बुजुर्गों के अनुभव, वीरों की गाथाएं और हमारी लोक कथाओं का चलता फिरता इतिहास है। कोयल की कूक, झरने की आवाज़ और हवा की सरसराहट, इन्हीं सब को मिलाकर बना हमारा पहाड़ी संगीत है। रविंद्र सिंह राणा को सुनिए अगले लोकगीत में।

रविंद्र सिंह राणा के गाए इसी लोकगीत के साथ यही समाप्त होता है पहाड़ी संगीत। इस वक्त आप सुन रहे हैं आकाशवाणी एफएम शिमला का प्रसारण। 12 बजने को है। समाचारों के लिए आइए आपको लिए चले आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र।

0: प्रधान निर्वाचित प्रधानमंत्री बन गए हैं। श्री मोदी ने 26 मई 2014 को प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। प्रधानमंत्री मोदी का निरंतर कार्यकाल अब 4,399 दिन का हो गया है। एक रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यह उपलब्धि विशेष रूप से उल्लेखनीय है क्योंकि भारत जैसे 140 करोड़ से अधिक आबादी वाले देश का शासन प्रशासन अत्यंत व्यापक और जटिल है। भाषाई, सांस्कृतिक, धार्मिक तथा भौगोलिक विविधताओं से युक्त इस राष्ट्र का सफल नेतृत्व और संचालन अपने आप में एक बड़ी जिम्मेदारी और चुनौती है। यह विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र में लगातार 3 बार राष्ट्र जनादेशों द्वारा जनता का निरंतर भरोसा दर्शाता है। साथ ही उन्हें अब तक 30 से अधिक देशों द्वारा सर्वोच्च नागरिक सम्मानों से भी सम्मानित किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के दौरान लगभग 25 करोड़ भारतीय बहुआयामी गरीबी से बाहर निकले हैं तथा व्यापक सामाजिक आर्थिक प्रगति हुई है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि प्रधानमंत्री के दूरदर्शी नेतृत्व में भारत ने आर्थिक विकास, अवसंरचना विस्तार, सामाजिक सशक्तिकरण, तकनीकी उन्नति और वैश्विक स्तर पर भारत के प्रतिष्ठा में वृद्धि जैसे क्षेत्रों में उल्लेखनीय प्रगति देखी है। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने कुशलता, धैर्यता और दृढ़ संकल्प के साथ देश का मार्गदर्शन किया है। गृह मंत्री अमित शाह, विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर, वाणिज्य उद्योग मंत्री पीयूष गोयल, वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन और कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान सहित अन्य केंद्रीय मंत्रियों ने श्री नरेंद्र मोदी को देश के सबसे लंबे समय तक लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री बने रहने पर बधाई दी है। विश्व नेताओं ने भी प्रधानमंत्री मोदी को भारत के सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री बने रहने पर बधाई दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गृहनगर गुजरात के वडनगर में आज उनके सफल शासन के 12 वर्षों के उपलक्ष्य में कार्यक्रमों की एक श्रृंखला आयोजित की जाएगी जिसमें विकसित भारत के दृष्टिकोण को साकार करने के लिए जन भागीदारी पर जोर दिया जाएगा। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए की बैठक आज नई दिल्ली में होगी। इसमें सरकार के 12 वर्ष पूरे होने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भारत के सबसे लंबे समय तक लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने का उत्सव मनाया जाएगा। बैठक में विभिन्न राष्ट्रीय विकास कार्यक्रमों, बुनियादी सुविधाओं से जुड़े कार्यक्रमों और सरकार के विकसित भारत 2047 के दृष्टिकोण पर चर्चा होगी। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने आज कहा कि देश में सीएनजी की कोई कमी नहीं है। उन्होंने कहा कि सरकार घरों तक पाइप वाली प्राकृतिक गैस पीएनजी की आपूर्ति बढ़ा रही है। श्री पुरी ने कहा कि कुछ लोग गलत सूचना फैलाकर वैश्विक स्थिति का फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। श्री पुरी ने कहा कि सरकार ऐसी गतिविधियों के खिलाफ तत्काल और कड़ी कार्रवाई कर रही है। सरकार ने सोशल मीडिया पर चल रही उन झूठी खबरों का खंडन किया है जिनमें दावा किया गया था कि भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई इस महीने की 30 तारीख से कागजी नोट को बंद करके उनके जगह प्लास्टिक नोट का प्रचलन शुरू कर देगा। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने इस दावे को फर्जी बताया है। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर आज से 2 दिन के आधिकारिक दौरे पर बुल्गारिया और फिनलैंड जा रहे हैं। जयशंकर बुल्गारिया के शीर्ष नेताओं और वहां के विदेश मंत्री के साथ मुलाकात तथा विचार विमर्श करेंगे। दूसरे चरण में डॉ. जयशंकर फिनलैंड के विदेश मंत्री और अन्य नेताओं से मुलाकात करेंगे। विदेश मंत्रालय में पूर्वी देशों के मामलों के सचिव रुदेंद्र टंडन ने कल मनीला में आयोजित आसियान क्षेत्रीय मंच के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक में भाग लिया। विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि इस दौरान श्री टंडन ने समकालीन भू राजनीतिक चुनौतियों से निपटने में एआरएफ की महत्वपूर्ण भूमिका और संवाद तथा कूटनीति के प्रति समर्थन व्यक्त किया। इस दौरान क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा सहित हिंद प्रशांत क्षेत्र में वैश्विक संसाधनों के लिए नियम आधारित व्यवस्था बनाए रखने पर विचार विमर्श हुआ। मौसम विभाग ने आज दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, उत्तर प्रदेश तथा पश्चिमी राजस्थान में लू चलने का अनुमान लगाया है। कोंकण, गोवा और उड़ीसा के कुछ हिस्सों में दिन में गर्म और उमस भरा मौसम रहने की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Anuja Kumar. Prime Minister Narendra Modi has become the longest continuously serving democratically elected Prime Minister of India today. Mr. Modi took the oath of office on 26th of May in 2014. He surpassed the record of Pandit Jawaharlal Nehru, who first took oath as an elected Prime Minister on the 13th of May in 1952 and served until 27th of May in 64. Pandit Nehru's tenure as an elected Prime Minister amounted to 4,398 days. Now Prime Minister Modi's continuous tenure is 4,399 days, making him the longest serving elected Prime Minister in India's history. BJP National President Nitin Naveen has said that Prime Minister Narendra Modi has written a new history across the entire country. Talking to reporters after offering prayers at a temple in New Delhi, he said that under this remarkable leadership, 25 crore families have been lifted out of poverty. Mr. Naveen said, over the past 12 years, the Prime Minister has worked for the welfare and development of every section of society, with a particular focus on women's empowerment. Union ministers including Amit Shah, Dr. S. Jayashankar, Piyush Goyal, Nirmala Sitharaman and Shivraj Singh Chauhan, among others, have wished Prime Minister Narendra Modi on becoming the longest continuous serving elected Prime Minister of India. In a social media post, Home Minister Amit Shah said that these 12 years of Prime Minister Modi have been about restoring India's pride, cultural renaissance and freeing the nation from the mentality of servitude. Dr. Jayashankar noted that this achievement reflects the enduring trust and confidence that the people of India placed in PM Modi's leadership, vision and commitment to national development. Ms. Sitharaman added that during this period, the NDA government under PM Modi has delivered bold reforms and has implemented several initiatives with unprecedented pace and scale. She emphasized that Prime Minister Modi provided decisive and strong leadership through a series of challenging times that the nation has faced. A meeting of the National Democratic Alliance will be held in New Delhi today to celebrate its government's completing 12 years and Prime Minister Narendra Modi becoming the longest continuously serving elected PM of India. Our correspondent has more details on the meeting.
3: All constituents of the alliance beside the top leadership of the BJP, including Prime Minister Modi, are expected to attend the meeting. The NDA meeting will also be attended by chief ministers and deputy chief ministers of all 22 NDA-governed states and union territories, besides the leaders of all alliance constituents. The meeting will focus on reviewing various national development programs, infrastructure programs, and the Modi government's vision to transform the nation into a developed country by 2047. With Anupam Mishra, Priya Mondal, Akashwani News, Delhi.
2: The government has refuted several social media posts falsely claiming that the Reserve Bank of India will withdraw paper currency notes and replace them with plastic currency notes from the 30th of this month. PIB clarified that according to the RBI, there are no plans to withdraw paper currency notes or replace them with plastic currency notes by the end of this month. PIB further advised citizens to rely only on authentic information available on the official RBI website. NASA has announced names of three US astronauts and one Italian astronaut as the crew for its next Artemis 3, a spacecraft docking demonstration mission scheduled for late next year that will test lunar landers from SpaceX and Blue Origin in orbit for the first time. US astronauts Andre Douglas, Frank Rubio and Randy Bresnik and Italian astronaut Luca Parmitano of the European Space Agency will be the crew of Artemis 3. Benchmark domestic equity indices were trading around 0.7% up in the forenoon session today. The Sensex gained 597 points to reach 74,516, while the Nifty advanced 157 points to 23,400 when reports last came in. In men's cricket, India A defeated Sri Lanka A by 8 runs in the close contest in the opening clash of Tri-Nation A series at the Rangira Dambulla International Stadium in Sri Lanka yesterday. Ruturaj Gaikwad was adjudged player of the match for his ton. India A will next face Afghanistan A tomorrow at the same venue. And that is the end of this news bulletin.

एफएम शिमला पर लीजिए पेश है फिल्म संगीत। फिल्म संगीत में आइए सुनते हैं श्रेया घोषाल और जुबिन नौटियाल की आवाज में ये गीत।

0: इस वक्त आप सुन एफएम शिमला 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर 12:20 होने को है। प्रतीक्षा कीजिए हमारी अगली उद्घोषणा की।
1: मीडियम वेव 387.6 मीटर अर्थात 774 किलोहर्ट्ज़ और आकाशवाणी एफएम 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी शिमला का प्रसारण। अब प्रस्तुत है महिला सम्मेलन कार्यक्रम।

0: परिवार की शक्ति और समाज की प्रेरणा यानी महिला। और हमारी महिलाओं को समर्पित कार्यक्रम महिला सम्मेलन में आप सभी का स्वागत है। आज के कार्यक्रम में मैं हूं आपके साथ आपकी रेडियो हमसफर मधु शर्मा
1: और मैं हेमा राय। आप सभी को हमारा
0: नमस्कार। देखिए बहनों, आज का दिन बेहद खास दिन है क्योंकि हम सभी जानते हैं कि जो हम सब जो है वो इस खूबसूरत दुनिया को देख पा रहे हैं, सुबह का सूरज देखते हैं, अपनों की मुस्कुराहट देखते हैं, फूल देखते हैं, पत्ते देखते हैं और बहुत सारे रंग भी देखते हैं। लेकिन ज़रा एक पल के लिए अपनी आंखें बंद करके सोचिए, हर तरफ सिर्फ क्या होगा, गहरा अंधेरा। और ऐसा ही अंधेरा हमारे देश और दुनिया में लाखों लोग जो है वो सिर्फ इसलिए इस दुनिया को नहीं देख पाते क्योंकि उनकी आंखों में कुछ ना कुछ दिक्कत रहती ही है, यानी कॉर्निया उनका खराब है
1: जी,
0: है ना। और सबसे बड़ी बात यही है कि क्या हर जो उनकी इस दुनिया को बदलने की चाबी जो है वो हमारे पास है या नहीं।
1: जी, अक्सर लोग सोचते हैं कि नेत्रदान का मतलब जीते जी आंखें देना है या फिर इससे चेहरा खराब हो जाता है, पर यह सिर्फ एक भ्रम है, एक अफवाह है।
0: बिल्कुल,
1: हर साल 10 जून को दुनिया भर में विश्व नेत्रदान दिवस मनाया जाता है। और इसका उद्देश्य मधु लोगों को मृत्यु के बाद अपनी आंखें दान करने के लिए प्रेरित करना और नेत्रहीनता के खिलाफ जागरूकता फैलाना है।
0: बिल्कुल जी, दुनिया भर में जो लाखों लोग कॉर्निया की खराबी या चोट के कारण दृष्टिहीनता का सामना कर रहे हैं, कॉर्निया ट्रांसप्लांट के जरिए ऐसे लोगों को दोबारा जो रोशनी दी जा सकती है, जिसके लिए स्वस्थ कॉर्निया केवल नेत्रदान से ही मिल सकता
1: है। जी हाँ, एक दान दो को रोशनी, एक व्यक्ति द्वारा किए गए नेत्रदान से दो दृष्टिहीन लोगों के जीवन को रोशन किया जा सकता है क्योंकि दोनों आंखों का उपयोग अलग अलग मरीजों के लिए किया जाता है।
0: बिल्कुल, क्योंकि देखिए नेत्रदान को लेकर समाज में आज भी हेमा कई तरह की जो है आशंकाएं हैं, झिझक है, जबकि लोगों को ये समझाने के लिए जो है वो नेत्रदान जो दिवस है ये मनाया जाता है आज के दिन कि नेत्रदान एक सम्मानजनक और बहुत अच्छा कार्य है।
1: जी, नेत्रदान से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में भी अगर मधु बात करें तो सवाल ये सभी के मन में आता है कि कौन कर सकता है नेत्रदान। जी हाँ, 5 से 75 वर्ष या उससे अधिक उम्र का कोई भी व्यक्ति, चाहे वो चश्मा पहनता हो या मधुमेह या उच्च रक्तचाप यानी बीपी के मरीज भी नेत्रदान कर सकते हैं।
0: बिल्कुल। और अब मन में एक सवाल हेमा ये भी आता है कि भाई इस जो प्रक्रिया है, ये जो सिस्टम है, इसमें कितना टाइम लगता है।
1: जी,
0: तो बहनों जो जैसे किसी भी इंसान की अगर मृत्यु हो जाती तो उसके 6 से 8 घंटे के भीतर जो है वो आई बैंक की टीम को सूचित करना होता है और इस सिस्टम में केवल 15 से 20 मिनट लगते हैं प्रोसेस
1: और नेत्रदान के बाद कई बार ये भ्रम है ना कि मृत व्यक्ति के चेहरे पर कोई बदलाव या दाग नजर आएगा, ऐसा कुछ भी नजर नहीं आता है। तो बहनों अब बात करें कि कौन नेत्रदान नहीं कर सकता।
0: जी बिल्कुल, और बहनों आपको हम बता दें कि एड्स, हेपेटाइटिस बी या सी, रेबीज या किसी संचारी रोग यानी इन्फेक्शंस डिजीज से जो पीड़ित लोग होते हैं उन्हें नेत्रदान करने की सलाह नहीं दी जाती
1: है। जी, नेत्रदान वास्तव में मानवता के हित में किए जाने वाला एक ऐसा कार्य है जो इंसान को मृत्यु के बाद भी किसी और की आंखों के जरिए इस खूबसूरत दुनिया में जो है
0: जिंदा रखता है। बिल्कुल, आपकी आंखों से, आपकी कहते हैं ना कि इंसान जो है वो चला जाता है इस दुनिया से, लेकिन उसकी जो आंखें हैं वो कभी नहीं मरती हैं। और अगर आप इस तरह का कोई भी दान करते हैं, आंखें आप अपनी डोनेट करते हैं, तो आपकी आंखें तो फिर इस दुनिया में रहेंगी।
1: जी,
0: वही चीज़ें वो दोबारा देख सकती हैं। और बहनों नेत्रदान वास्तव में जो है ना मानवता के हित में किए जाने वाला एक ऐसा कार्य है, एक इतना अच्छा कार्य है जो इंसान को जो है मरने के बाद भी किसी की आंखों के जरिए जो है वो दुनिया को दिखाता रहता है। और हर वर्ष इसे एक थीम के साथ जो है वो मनाया जाता है। इस साल की थीम है नेत्रदान महादान, अंधेरी जिंदगी में लाएं उजाला। और सच कहें हेमा तो किसी की अंधेरी और बेरंग जिंदगी में रंगों की बौछार कर देना, हमें तो लगता है कि भाई इससे बड़ा पुण्य और क्या ही हो सकता
1: जी,
0: है।
1: सच तो ये

0: है ना कि नेत्रदान हमेशा मरणोपरांत यानी मृत्यु के बाद होता है। हमारे जाने के बाद भी हमारी आंखें किसी और की जिंदगी में जिंदा रह सकती हैं।
1: जी
0: मौत के बाद जहाँ ये शरीर मिट्टी में मिल जाता है ना, वहीं हमारा एक फैसला किसी मासूम बच्चे को स्कूल की किताबें पढ़ने की ताकत दे सकता है।
1: बिल्कुल। और या आप ये कहेंगी किसी बुजुर्ग को फिर से अपने परिवार का चेहरा देखने की खुशियां जो है वो दे सकता है। एक व्यक्ति का नेत्रदान दो लोगों की जिंदगियां रोशन करता है। बस याद रखने वाली बात इतनी सी है कि मृत्यु के 6 से 8 घंटे के भीतर नजदीकी आई बैंक को सूचित करना होता है। इसमें ना तो कोई पैसा लगता है और ना ही जो है वो मृतदेह के शरीर पर कोई निशान आता है।
0: जी, तो बहनों आज विश्व नेत्रदान दिवस पर क्यों ना हम सब मिलकर एक संकल्प
1: संकल्प लें,
0: लें,
1: बिल्कुल
0: अंधविश्वास और झिझक की बेड़ियों को तोड़ें, खुद भी नेत्रदान करें और अपने परिवार और समाज को भी इसके प्रति जागरूक करें। जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी अपनी आंखों को अमर कर जाइए, किसी की अंधेरी दुनिया में उजाला
1: उजाला भर
0: भर कर
1: जाइए,
0: जाइए।
1: बिल्कुल।

0: बहनों, ये बात तो आप सभी जानते हैं कि परिवार बच्चे की पहली पाठशाला होता है। बच्चे अपने माता पिता और अपने परिवार के अन्य सदस्यों से ही जीवन के मूल्य और आदतें सीखते हैं, संस्कार सीखते हैं। और अगर घर का या परिवार का वातावरण प्रेमपूर्ण, संवादपूर्ण और अनुशासित हो तो बच्चों और युवाओं में नशे की ओर बढ़ने की संभावना बहुत कम हो जाती है।
1: जी हाँ बहनों, क्योंकि नशा केवल एक व्यक्ति की समस्या नहीं है, बल्कि ये पूरे परिवार और समाज को प्रभावित करता है।
0: बिल्कुल।
1: जब भी कोई व्यक्ति नशे की लत का शिकार होता है, तो ये केवल उसके स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार ही नहीं, बल्कि सामाजिक संबंधों और पारिवारिक जीवन पर भी गंभीर प्रभाव डालता है। ऐसे में नशे की रोकथाम और नशाग्रस्त व्यक्ति के पुनर्वास में परिवार की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण बन जाती है।
0: बिल्कुल। और बहनों देखिए, नशा मुक्त भारत अभियान में नशे की रोकथाम और पुनर्वास के लिए परिवार की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती है। परिवार समाज की सबसे छोटी और बुनियादी इकाई है जो व्यक्ति को भावनात्मक, सामाजिक और नैतिक संबल प्रदान करता है। नशे के चंगुल से पीड़ित व्यक्ति को जो बाहर निकालने में और एक सामान्य जीवन में उसे वापस लाने में परिवार की, हमें लगता है कि बहुत ही ज़्यादा अच्छी भूमिका हो सकती है। आप ऐसे इसको समझ सकते हैं।
1: जी, माता पिता को चाहिए कि बच्चों के साथ वो नियमित रूप से बातचीत करें, उनकी भावनाओं को समझें, उनकी समस्याओं को सुने। कई बार क्या होता है ना मधु, तनाव, अकेलापन, साथियों का दबाव या जिज्ञासा बच्चों और युवाओं को नशे की ओर ले जाती है।
0: बिल्कुल। उन्हें लगता होगा ना कि इसमें क्या ऐसी चीज़ है जो
1: जी
0: सभी इसे यूज़ कर रहे हैं, तो क्यों ना हम भी इसे यूज़ करें।
1: जी
0: या कभी उनके जो फ्रेंड्स, उनका जो कहते हैं ना कि जैसी संगत होती है वैसी ही रंगत होती है, तो
1: जी
0: उसके साथ ही अगर आपके दोस्त और हमारे जो बच्चे हैं वो भी थोड़े बहुत परेशान हो ही जाते होंगे कि नहीं, हमारे दोस्त कई बार दबाव डालते हैं कि
1: जी
0: आप लो इसे, ये बहुत अच्छी
1: दबाव भी
0: चीज़
1: है,
0: है,
1: कई बार जिज्ञासावश भी बच्चे इसका
0: इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं ना।
1: कर सकते भी हैं,
0: हाँ
1: क्योंकि देखिए ऐसे समय में परिवार का सहयोग और मार्गदर्शन उन्हें सही दिशा में ले जा सकता
0: बिल्कुल।
1: है।
0: अगर आपको पता लग गया है कि आपका बच्चा कहीं भटक रहा है और अपने दोस्तों के साथ बहुत ज़्यादा वक्त बिता रहा है, घर पर देरी से आ रहा है, तो आपको थोड़ा सा अपने बच्चे पर ध्यान रखना होगा। ऐसा नहीं है कि आप बच्चे को छोड़ दें, क्योंकि आजकल कई बार देखिए, आजकल वैसे भी एक जिस तरह से माता पिता दोनों जो है वर्कर्स हैं, अपने काम पे चले जाते हैं ऑफिस, बच्चा घर पे अकेला होता है, तो फिर भी बच्चे पर ध्यान देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जब भी आप घर पर आते हैं तो अपने बच्चे को अपने साथ बिठाइए, उनसे बातें कीजिए, उनसे स्कूल या जब भी कहीं भी वो बाहर जाते हैं उनसे उस चीज़ का मतलब पूरा कहते हैं ना कि पूरी बात उनकी सुनिए कि वो कहाँ गए थे, किससे मिल रहे हैं। और थोड़ा सा अगर अकेलापन भी होता है ना कहते हैं बच्चों को, तो भी वो बच्चे इस तरफ को जाने के लिए तो ज़्यादा अग्रसर रहते हैं।
1: जी, तो मधु अब बात करते हैं पुनर्वास की,
0: जी
1: अर्थात नशे की लत से बाहर निकलने की प्रक्रिया की। देखिए ना, जब परिवार का कोई सदस्य नशे की गिरफ्त में आ जाता है, तो उसे दोषी ठहराने या उससे दूरी बनाने के बजाय उसे सहारा देने की आवश्यकता होती है।
0: बिल्कुल।
1: नशे की लत एक ऐसी समस्या है जिसके उपचार के लिए धैर्य, समझदारी और निरंतर सहयोग की
0: ज़रूरत
1: ज़रूरत है।
0: होती है बिल्कुल। और देखिए, परिवार को भी चाहिए होता है कि वो नशाग्रस्त जो व्यक्ति है उसके उपचार के लिए उसे प्रेरित करें, उसे
1: जी
0: ऐसे ही ना छोड़ दें और उसे समझाएं कि

0: अगर इसका अगर आप चाहते हैं, अगर आप ठीक होना चाहते हैं, तो इसका उपचार बहुत ही ज़्यादा कामयाब है। और डॉक्टरों की सलाह का जो है वो ज़रूर पालन करें, उसकी सहायता करें और उसे भावनात्मक समर्थन प्रदान करें। परिवार का विश्वास और प्रोत्साहन व्यक्ति के आत्मविश्वास को बढ़ाता है और उसे पुनः सामान्य जीवन जीने की ओर लौटाने में भी मदद करता है।
1: जी, और इसके साथ ही परिवार के सदस्यों को खुद भी नशे से दूर रहना चाहिए,
0: बिल्कुल
1: क्योंकि
0: रहना चाहिए।
1: बच्चे अगर अपने बड़ों से ही सब पूछ देते, यदि घर में बड़े सदस्य किसी भी प्रकार के नशे का सेवन करते हैं तो बच्चों पर उसका नकारात्मक प्रभाव तो पड़ ही जाता है। इसलिए परिवार के सभी सदस्यों को स्वस्थ जीवन शैली अपना कर एक अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करना चाहिए।
0: जी बिल्कुल, अपने बच्चों को भी एक अच्छा इंसान बनाने की कोशिश में इस तरह के उदाहरण बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हर इंसान, हर पेरेंट्स चाहता है कि उसके बच्चे जो है वो इन चीज़ों से दूर रहे। और ये शुरुआत आपके खुद से ही होगी, अपने घर से ही होती है। और बात अगर हम पुनर्वास की करें, तो पुनर्वास की प्रक्रिया में परिवार की सकारात्मक भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। यदि परिवार जो है व्यक्ति की छोटी छोटी सफलताओं की सराहना करें, उसे नई जिम्मेदारियां दें और स्वस्थ गतिविधियों में शामिल करें, तो उसके दोबारा नशे की ओर लौटने की संभावना बहुत कम हो जाती है।
1: जी हाँ, तो बहनों, नशा मुक्त भारत का निर्माण केवल सरकारी प्रयासों से संभव नहीं है। इसके लिए हर परिवार को अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी। जागरूकता, संवाद, प्रेम, सहयोग और सही मार्गदर्शन के माध्यम से परिवार न केवल नशे की रोकथाम कर सकते हैं, बल्कि नशे से प्रभावित व्यक्तियों के सफल पुनर्वास में भी महत्वपूर्ण योगदान
0: दे सकता है। तो आइए बहनों, हम सभी मिलकर ये संकल्प लें कि अपने परिवार, समाज और देश को नशा मुक्त बनाने में सक्रिय भूमिका निभाएंगे और अपने आने वाली पीढ़ी को एक स्वस्थ, सुरक्षित और उज्जवल भविष्य भी प्रदान करेंगे।
1: जी।

0: तो बहनों कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे। आज है बुधवार और आज के सेगमेंट स्वास्थ्य चर्चा में हम आपसे बात करने जा रहे हैं उठने बैठने के तरीकों के बारे में।
1: बिल्कुल बहनों, चलने फिरने और उठने बैठने के तौर तरीकों को लेकर हम सब गंभीर नहीं रहते हैं। जैसा दिल करता है हम वैसे ही बैठ जाते हैं, जैसे हमें एडजस्ट ठीक लगे कि हाँ हम ठीक है, तो ऐसे हम कई बार बैठ जाते हैं। चाहे हम बस में बैठे, चाहे हम चेयर पे बैठे, या घर पे भी अगर हम टीवी देख रहे हैं तो हम वहाँ भी ये ध्यान नहीं रखते कि हम किस तरह से बैठे हुए हैं,
0: जी
1: है ना। और हम सब जो है ये आदत जो है वो सेहत के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। गलत पोश्चर स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है। रोज़मर्रा के जीवन में कई ऐसी स्थितियां बनती हैं जब हम गलत पोश्चर को अपने सामान्य रहन सहन में शामिल कर लेते
0: जी
1: हैं।
0: हाँ बहनों, देखिए ऑफिस में काम करने के दौरान अक्सर देखा जाता है कि लोग कुर्सी पर बैठकर अपनी पीठ टिकाकर लंबे समय तक अपना काम करते रहते हैं। इस कारण छाती और गर्दन की मांसपेशियों में खिंचाव हो सकता है।
1: बिल्कुल, और अक्सर ऐसा भी हमने देखा है कि लोग क्या करते हैं कि बस मांसपेशियों में जैसे ही खिंचाव होता है तो वो दवाइयाँ लेना शुरू कर देते हैं, या वो उसी पोस्चर में काफ़ी देर तक बैठे रहते हैं। इससे क्या होता है कि जो मांसपेशियाँ हैं आपकी वो कमज़ोर हो सकती हैं, इससे कई तरह की और दिक्कतें भी आनी शुरू हो जाती है।
0: जी अक्सर लोग सिरदर्द जैसी समस्या को काम का दबाव और तनाव की स्थिति से जोड़कर देखने लगते हैं, लेकिन मधु इसके पीछे की वजह भी गलत पोस्चर हो सकता है। क्या आपने
1: बिल्कुल हो
0: कभी
1: सकता
0: सोचा है?
1: है।
0: गलत पोस्चर गर्दन के साथ ही सिर पर भी दबाव डालता है, जिससे सिरदर्द जैसी दिक्कतें आ
1: आ
0: सकती
1: सकती हैं।
0: हैं।
1: और कुछ लोग कहते हैं ना कि बिस्तर पर, जैसा हमने पहले भी कहा था कि भाई बिस्तर पर लेटकर या तो लैपटॉप पर काम कर रहे होते हैं और उनको आदत भी बन जाती है वैसी, और इसी पोस्चर में वो लंबे समय तक काम करने से गर्दन और हाथों के अलावा पेट की बहुत सी ज़्यादा समस्याएं भी हो जाती हैं।
0: जी हाँ, और इसके अलावा देखिए आजकल हम स्मार्टफोन तो सभी इस्तेमाल करते हैं
1: जी
0: और
1: जी जी
0: घंटों उस
1: जी
0: पर लगे रहते हैं, गेम
1: बिल्कुल
0: खेलते हैं या किसी सोशल साइट का इस्तेमाल करते हैं, जिसके कारण कलाई या बाह में दर्द, कमर में दर्द, गर्दन में दर्द और हाथों में भी दर्द हो सकता है।
1: बिल्कुल
0: इसके साथ ही पाचन क्रिया में भी कई कई बार खराबी आ जाती है।
1: बिल्कुल, और ये सही कहा आपने कि जिस तरह से हम लोग सोशल मीडिया पे काफ़ी समय तक रहते हैं या मोबाइल गेम्स में भी हम काफ़ी, और हमें ध्यान ही नहीं होता कि हम किस तरह से बैठे हुए हैं,
0: जी
1: है ना। और ये सच में ही आपको बताऊं मैं कि कई बार ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा गर्दन में दर्द हो जाती है, बाजुओं में दर्द हो जाती है, और हम
0: जी
1: उसे लाइटली लेते हैं कि कोई
0: जी ये
1: बात नहीं।
0: हमारी सेहत और समय दोनों ही
1: बिल्कुल
0: खराब करते हैं।
1: बिल्कुल बिल्कुल, और देखिए कभी कभी हम क्या करते हैं कि शरीर को थोड़ा आराम, थोड़ी सी सहूलियत देने के चक्कर में सही पोस्चर को भूल ही जाते हैं। इसके पीछे क्या होता है, अगर थोड़ी सी सहजता दिखाई जाए ना तो बहुत सी तकलीफ़ों से बचा जा सकता है। और इसके लिए हमें कुर्सी और टेबल पर बैठकर ही जो है वो काम करना चाहिए। बिस्तर पर लेटकर टीवी और फोन या लैपटॉप जो है वो नहीं चलाना चाहिए।
0: जी क्योंकि गलत पोस्चर पे हमारी गर्दन पे उस पर दबाव पड़ता है, पीठ हमारी सीधी नहीं रहती है, तो इस तरीके से हमें और तरह की समस्याएं भी हो जाती हैं।
1: जी
0: तो बहनों ना केवल हम बल्कि बच्चे भी बैठकर पढ़ाई करते हैं, अगर गलत तरीके से लंबे समय तक बैठकर पढ़ाई करते हैं तो इससे बॉडी पोस्चर खराब तो हो ही जाएगा, चाहे बच्चे हों या बड़े। कुछ बातों को ध्यान देने से हम अपने बॉडी पोस्चर में सुधार ला सकते हैं।

0: सकते हैं।
1: जी बिल्कुल। और देखिए, हमेशा एक ही स्थिति में ना बैठें, समय समय पर बैठने की स्थिति भी आपको बदलते रहना चाहिए। ऑफिस में या फिर घर के आसपास थोड़ी देर आपको ज़रूर टहलना चाहिए। मसल स्ट्रेस को दूर करने के लिए बीच बीच में स्ट्रेचिंग भी करते रहना चाहिए
0: जी।
1: और पैरों को क्रॉस करके बिल्कुल नहीं बैठना चाहिए। बैठने के दौरान अपने पैरों को फर्श पर रखें और टखनों को घुटनों के सामने रखें। कुर्सी पर बैठने के दौरान पैरों को फर्श से टिकाएं। अगर आप फर्श से पैरों को टच नहीं कर पा रहे हैं तो इस स्थिति में फुटरेस्ट का इस्तेमाल ज़रूर करें और कंधों को आराम देने के लिए इसे पीछे या फिर आगे की ओर लाएं। हमेशा कंधों को सीधा रखकर ही बैठें।
0: जी, बैठने के दौरान अपनी कोहनियों को अपने शरीर के पास रखें। कोहनी को 90 और 120 डिग्री के बीच में घुमाना चाहिए। पीठ को हमेशा सीधा रखकर बैठें। अगर आपकी कुर्सी में बैक रेस्ट नहीं है तो सपोर्ट के लिए बैक पिलो या बैक सपोर्ट का आप इस्तेमाल कर सकती हैं। ये तो बात की हमने बैठने के तरीके के बारे में, लेकिन बहुत से लोगों को खड़े होने का गलत तरीका भी जो
1: बॉडी
0: बॉडी पोस्चर को खराब कर सकता है,
1: इसलिए
0: हमेशा सही तरीके से खड़े होकर बॉडी पोस्चर में काफ़ी हद तक सुधार किया जा सकता है।
1: बिल्कुल। और बहनों, हमेशा सीधे और तन कर खड़े हों और खड़े
0: अक्सर लोग झुककर खड़े होते हैं,
1: देखा
0: नहीं, अपनी कंधे और ये पीठ झुकाकर
1: झुकाकर अपनी तरफ से तो रेस्ट कर रहे हैं, लेकिन वो पोस्चर खराब हो जाता है। फिर ऐसे में सीधे और तन कर खड़े रहें और खड़े होने के दौरान अपने कंधों को पीछे रखें। खड़े होने के दौरान पेट को हमेशा अंदर की ओर रखें
0: जी,
1: है ना, और शरीर का वजन जो है वो हमेशा पैरों को बैलेंस करता है। बैलेंस जो शरीर का हमारा वजन है वो पैर ही बैलेंस करते हैं। खड़े होते समय सिर को हमेशा सीधा रखें, अपने आर्म्स को नीचे की ओर सीधा रखें, अपने पैरों को कंधे और चौड़ाई से थोड़ा अलग रखें।
0: जी, बॉडी पॉस्चर को सुधारने के लिए बैठने, उठने और खड़े होने के तरीकों में सुधार की आवश्यकता होती है। अगर आप गलत तरीके से बैठते या फिर खड़े होते हैं तो इससे आपका बॉडी पॉस्चर खराब हो सकता है, इसलिए इस बात का आप ध्यान
1: जरूर
0: रखें।
1: और
0: आप स्वस्थ रहें, खुश रहें, ऐसा तो हम
1: हमेशा ही कहते हैं और
0: कामना करते हैं।
1: ये भी कहते हैं कि भाई, अगर आपको ज़्यादा लग रहा है कि आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है तो हमेशा कोई भी दवाई ऐसे ही ना खाएं, हमेशा डॉक्टर की सलाह ज़रूर लें और जो डॉक्टर की सलाह के अनुसार ही आप दवाइयों का सेवन करें। तो चलिए, एक प्यारा सा गीत अपनी बहनों को सुनवा दें।
0: जी।

0: कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव में हम पहुंच गए हैं और आज अपनी बहनों को छोटी मोटी जो उनकी काम की बातें हैं वो बता देते हैं। देखिए बहनों, माना फैट सेहत के लिए सही नहीं है, लेकिन इससे पूरी तरह तौबा कर लेना भी सही नहीं है। कुछ फैट्स यानी वसा शारीरिक और मानसिक विकास के लिए भी ज़रूरी है, जैसे ओमेगा 3 और ओमेगा 6 फैटी एसिड। हमें इनकी पर्याप्त आपूर्ति के लिए बाहरी स्रोतों पर निर्भर रहना ही होता है। ये कोशिका झिल्ली की द्रवता को बनाए रखता है और रक्त के प्रवाह और ऑक्सीजन के अवशोषण में सुधार करता है।
1: जी, ये दिल की बीमारियों के जोखिम में भी कमी लाता है। इसके अलावा ओमेगा 3 अर्थराइटिस और जोड़ों के दर्द में भी फायदेमंद है।
0: बिल्कुल।
1: और ओमेगा 3 के फायदे सिर्फ शरीर तक सीमित नहीं है, इसके पर्याप्त मात्रा में खपत से मानसिक स्वास्थ्य पर भी सकारात्मक असर पड़ता है। शरीर में इसकी कमी के परिणाम स्वरूप पढ़ाई और याददाश्त में कमजोरी की स्थिति भी देखने को मिलती है।
0: बिल्कुल। और इसके साथ ही बहनों, आपको बताएं कि दिल को स्वस्थ बनाए रखने के लिए ओमेगा 3 को नियमित रूप से लेने की सिफारिश की जाती है। आप इन्हें अपने नाश्ते का अहम हिस्सा बना सकती हैं और बच्चों के लिए इन्हें इन वसा का सबसे ज़रूरी, जो बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, और ये हमें मिलती है पत्तेदार सब्जियों से, अलसी के बीज, सोयाबीन, मूंग दाल, काली दाल, अखरोट, शैवाल और कैनोला तेल से इसे हम प्राप्त कर सकते हैं।
1: जी,

0: बहनों, घड़ी की सुइयां इशारा कर रही हैं कार्यक्रम संपन्न करने की। तो आज का ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा? उम्मीद है अच्छा ही लगा होगा, और इसी उम्मीद के साथ कि आपको ये कार्यक्रम बहुत अच्छा लगा होगा।
1: आपसे फिर होगी मुलाकात, दीजिए अनुमति।
0: नमस्कार।
1: नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे महिला सम्मेलन कार्यक्रम, आकाशवाणी का ये शिमला केंद्र है। 1 बजने को हैं हिंदी और अंग्रेजी में समाचार, अब आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले होंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज एक प्रस्ताव पारित कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लगातार सबसे लंबी अवधि तक निर्वाचित प्रधानमंत्री बने रहने पर बधाई दी। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के दौरान सदस्यों ने प्रधानमंत्री मोदी के प्रति सम्मान व्यक्त किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भारत के सबसे लंबे समय

0: तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बन गए हैं। श्री मोदी ने 26 मई 2014 को प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। प्रधानमंत्री मोदी का निरंतर कार्यकाल अब 4,399 दिन का हो गया है। एक रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यह उपलब्धि विशेष रूप से उल्लेखनीय है क्योंकि भारत जैसे 140 करोड़ से अधिक आबादी वाले देश का शासन प्रशासन अत्यंत व्यापक और जटिल है। भाषाई, सांस्कृतिक, धार्मिक तथा भौगोलिक विविधताओं से युक्त इस राष्ट्र का सफल नेतृत्व और संचालन अपने आप में एक बड़ी जिम्मेदारी और चुनौती है। यह विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र में लगातार 3 बार राष्ट्रीय जनादेशों द्वारा जनता का निरंतर भरोसा दर्शाता है। साथ ही उन्हें अब तक 30 से अधिक देशों द्वारा सर्वोच्च नागरिक सम्मानों से भी सम्मानित किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के दौरान लगभग 25 करोड़ भारतीय बहुआयामी गरीबी से बाहर निकले हैं तथा व्यापक सामाजिक आर्थिक प्रगति हुई है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ऐतिहासिक अवसर देश की जनता द्वारा प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जताए गए अटूट विश्वास और भरोसे का प्रमाण है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि प्रधानमंत्री के दूरदर्शी नेतृत्व में भारत ने आर्थिक विकास, अवसंरचना विस्तार, सामाजिक सशक्तिकरण, तकनीकी उन्नति और वैश्विक स्तर पर भारत के प्रतिष्ठा में वृद्धि जैसे क्षेत्रों में उल्लेखनीय प्रगति देखी है। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने कुशलता, धैर्य और दृढ़ संकल्प के साथ देश का मार्गदर्शन किया है। उन्होंने कहा कि श्री मोदी ने विकसित भारत के सपने को साकार करने का संकल्प लिया है।
2: आज माननीय प्रधानमंत्री जी भारत में डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी आज हुए हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी इसी तरीके से देश की सेवा करते रहे और देश का जो भविष्य बनाने का संकल्प उन्होंने लिया है, विकसित भारत बनाने का संकल्प जो उन्होंने लिया है, उस संकल्प में हम सभी 140 करोड़ देशवासी संकल्प में जुड़े, ऐसी प्रार्थना प्रभु के पास की।
0: गृह मंत्री अमित शाह, विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर, वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल, वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन और कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान सहित अन्य केंद्रीय मंत्रियों ने प्रधानमंत्री को देश के सबसे लंबे समय तक लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री बने रहने पर बधाई दी। विश्व नेताओं ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भारत के सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने पर बधाई दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गृहनगर गुजरात के वडनगर में इस अवसर पर कार्यक्रमों की एक श्रृंखला आयोजित की जाएगी जिसमें विकसित भारत के दृष्टिकोण को साकार करने के लिए जन भागीदारी पर जोर दिया जाएगा। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए की बैठक आज नई दिल्ली में होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भारत के सबसे लंबे समय तक लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री बने रहने पर उत्सव मनाया जाएगा। बैठक में विभिन्न राष्ट्रीय विकास कार्यक्रमों, बुनियादी सुविधाओं से जुड़े कार्यक्रमों और सरकार के विकसित भारत 2047 के दृष्टिकोण पर चर्चा होगी। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने आज कहा कि देश में सीएनजी की कोई कमी नहीं है। उन्होंने कहा कि सरकार घरों तक पाइपलाइन प्राकृतिक गैस पीएनजी की आपूर्ति बढ़ा रही है। श्री पुरी ने कहा कि कुछ लोग गलत सूचना फैलाकर वैश्विक स्थिति का फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। श्री पुरी ने कहा कि सरकार ऐसी गतिविधियों के खिलाफ तत्काल और कड़ी कार्रवाई कर रही है। विदेश मंत्रालय में पूर्वी देशों के मामलों के सचिव रुदेंद्र टंडन ने कल मनीला में आयोजित आसियान क्षेत्रीय मंच एआरएफ के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक में भाग लिया। विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि इस दौरान श्री टंडन ने समकालीन भू राजनीतिक चुनौतियों से निपटने में एआरएफ की महत्वपूर्ण भूमिका और संवाद तथा कूटनीति के प्रति समर्थन व्यक्त किया। घरेलू शेयर बाजारों में आज 0.5% की बढ़त दर्ज की गई। ताज़ा जानकारी मिलने तक सेंसेक्स 420 अंक बढ़कर 74,339 और निफ्टी 106 अंक बढ़कर 23,348 पर था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

सुबह हो या शाम, आपके घर आंगन में महकती एक आवाज 103.7 मेगाहर्ट्ज़ FM शिमला। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए, 103.7 मेगाहर्ट्ज़ FM शिमला।

इस वक्त आप सुन रहे हैं शिमला 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। जी चेहरे पर एक मुस्कान आ जाती है जब भी जुबान पर नाम तुम्हारा आता है। कहते हैं लोग कि हम दीवाने हैं तुम्हारे, मगर इस दीवानगी में ही तो असली मजा आता है। एफएम शिमला आप सुन रहे हैं और एफएम शिमला पर आपके लिए लेकर आ गए हैं कार्यक्रम म्यूजिक मस्ती। और कार्यक्रम में सिर्फ गानों का शोर नहीं होगा, बल्कि सुरों के साथ होगा ढेर सारा धमाल, पुरानी यादों का कारवां और हर पल में घुली ढेर सारी मस्ती। तो बस अपनी रेडियो सेट की वॉल्यूम जरा बढ़ा दीजिए और आनंद लीजिए इन गीतों का साथ एफएम शिमला के।

0: सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग हिमाचल प्रदेश नशे के विरुद्ध जागरूकता अभियान एवं नशा मुक्ति पुनर्वास के लिए सतत प्रयासरत है। प्रदेश सरकार कुल 5 नशा मुक्ति केंद्रों का संचालन कर रही है, जिसमें निशुल्क काउंसलिंग, उपचार तथा पुनर्वास की सुविधा प्रदान की जा रही है और कोटला बड़ोग जिला सिरमौर में 100 बिस्तरों की क्षमता वाला आधुनिक सुविधा युक्त आदर्श नशा मुक्ति पुनर्वास केंद्र भी स्थापित किया जा रहा है। विभाग द्वारा सभी जिलों में विभिन्न सरकारी विभागों एवं स्वयंसेवी संस्थाओं के समन्वय से स्कूलों, कॉलेजों और गांव-गांव में बच्चों, युवाओं तथा महिलाओं हेतु जागरूकता अभियान का संचालन किया जा रहा है।
1: प्रिय प्रदेशवासियों, नशा केवल एक व्यक्ति को नहीं बल्कि उसके पूरे परिवार, समाज और पूरे प्रदेश को प्रभावित करता है। हमारी युवा शक्ति ही प्रदेश की सबसे बड़ी ताकत है और उन्हें नशे के अंधकार से सुरक्षित रखना हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है। प्रदेश सरकार नशे के समूल नाश के लिए प्रतिबद्ध है। स्कूलों, कॉलेजों और गांव-गांव में व्यापक जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं। आइए हम सब मिलकर नशे के विरुद्ध अपनी आवाज बुलंद करें और एक स्वस्थ, सुरक्षित एवं नशा मुक्त प्रदेश के निर्माण का संकल्प।
0: सुनो सुनाओ यही संदेश, नशा मुक्त हो अपना प्रदेश। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।

आप सुन रहे म्यूज़िक मस्ती एफएम शिमला के साथ, और सरगम फिल्म का गीत लता मंगेशकर की आवाज़ में लीजिए पेश है आपके लिए। इस गीत को लिखा आनंद बख्शी ने, संगीत दिया लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

0: संतान कर्तव्य से मुख ना मोड़े, माँ बाप से प्यारा नाता जोड़े।
1: हिमाचल ने बनाई मिसाल नई, भरण पोषण अधिनियम लागू सही।
0: यदि संतान कर्तव्य ना निभाए, कानून वृद्धों को न्याय दिलाए।
1: उपमंडलाधिकारी के पास आवेदन, 5,000 रुपए तक भरण पोषण संरक्षण।
0: जानकारी लें, अधिकार जाने।
1: तहसील या जिला कल्याण अधिकारी से संपर्क ठाने।
0: सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।

मजरू का लिखा गीत और राहुल देव बर्मन का संगीतबद्ध किया गीत, आइए सुनते हैं, जिसे हमने लिया है कुदरत फिल्म से, आवाज लता मंगेशकर की।

मोहब्बत की कोई उम्र नहीं होती, ना ही कोई दौर होता है। ये तो वो एहसास है जो रूह से रूह तक होता है। जी हाँ, मोहब्बत की फासलों का कोई वजूद नहीं होता। ये वो रिश्ता है जो रूह में बस जाता है। और याद आए जो तुम्हारी तो हम मुस्कुरा देते हैं, क्योंकि दिल का हर कोना तुम ही से सवर जाता है। म्यूजिक मस्ती आप सुन रहे FM शिमला के साथ, सुनते रहिए।

0: की गणना एवं मकान सूचीकरण वह 16 जून से 15 जुलाई के भीतर हिमाचल में कंडक्ट किया जाएगा और इस बार हमारा स्वगणना का प्रावधान की ऑप्शन दी गई है या विकल्प रखा गया है। आप जरूर स्वगणना पोर्टल sc.census.gov.in पर जाकर अपनी डिटेल भरें। बाद में हमारे प्रगणक आपके पास आकर उसको वेरीफाई करेंगे और फाइनली पोर्टल पर सबमिट करेंगे। मैं आप सबको यह अवगत कराना चाहती हूँ कि जो हमारा जनगणना का डाटा होता है, जनसांख्यिकी, आर्थिक स्थिति, घरों की स्थिति के बारे में या फिर हमारी शिक्षा, साक्षरता और इस तरह की जो हमारी मूलभूत जानकारियां होती हैं, वह हमारे राष्ट्र निर्माण के लिए बहुत ज्यादा आवश्यक है, क्योंकि हमारे जो आंकड़े हैं उनसे हमारी नीति निर्माण और रिसोर्स एलोकेशन बहुत अच्छे से किया जा सकता है। इसलिए आप सब अपनी जानकारी खुलकर प्रदान करें। आपके जो प्रगणक और पर्यवेक्षक हैं यानी गणनाकार हैं, वो आप ही के आसपास के कोई भी सरकारी कर्मचारी होंगे। जब वो आपके घर आए तो आप उनका स्वागत करें और उनको जानकारी दें। यदि आपको किसी भी तरह का कोई डाउट होता है, कंफ्यूजन होता है, आप उनका आई कार्ड देख सकते हैं जिसपे की एक QR कोड है, उसे स्कैन करके आप उनकी जानकारी ले सकते हैं। और आपसे किसी भी तरह का कोई भी OTP या दस्तावेज कभी भी नहीं मांगा जाएगा। आपको सिर्फ अपने 33 प्रश्नों की जानकारी जनगणना के प्रथम चरण के लिए देनी है। धन्यवाद।
1: अजीब सा प्यार है मेरी इन आंखों में, जब भी बंद होती हैं तो बस तुम ही नजर आते हो। म्यूजिक मस्ती आप सुन FM शिमला के साथ, और म्यूजिक मस्ती में लीजिए पेश है तेजा फिल्म का गीत अमित कुमार की आवाज में, जावेद अख्तर के बोल, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत।

श्रोताओं नमस्कार, मैं दीपशिखा शर्मा, जनगणना कार्य निदेशक हिमाचल प्रदेश, आप सबको यह अवगत कराना चाहती हूं कि हमारी जो हिमाचल प्रदेश की जनगणना का प्रथम चरण है यानी मकानों

0: अरे बेटा जीवन क्या बताऊं, डॉक्टर ने ऑपरेशन के लिए कहा है लेकिन लाखों रुपए का इलाज हम कहां से करवाएं?
1: ताऊ जी अब चिंता छोड़ो, मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने गरीबों के इलाज का पूरा इंतजाम कर दिया है। अब प्रदेश के अटल सुपर स्पेशलिटी आयुर्विज्ञान संस्थान चमियाड़ा, टांडा मेडिकल कॉलेज, नेर चौक मेडिकल कॉलेज और IGMC शिमला में पहली बार रोबोट विधाएं मिल रही हैं। अब इलाज होगा आसान, हर घर तक पहुंचेगा सम्मान। प्रदेश में 3,000 करोड़ रुपए खर्च कर एम्स दिल्ली की तर्ज पर स्वास्थ्य सुविधाएं मजबूत की जा रही हैं। अस्पतालों में 19 वर्षों से अधिक पुरानी मशीनों को अत्याधुनिक मशीनों से बदला जा रहा है। सभी स्वास्थ्य संस्थानों में चरणबद्ध तरीके से अत्याधुनिक 3 टेस्ला MRI, पैट स्कैन, अल्ट्रासाउंड और CT स्कैन मशीनें स्थापित की जा रही हैं। मरीजों को बेहतर जांच सुविधाएं मिल रही हैं। आदर्श स्वास्थ्य संस्थानों में 6-6 विशेषज्ञ डॉक्टरों की तैनाती की गई है। डॉक्टरों, स्टाफ नर्सों और पैरा मेडिकल स्टाफ की भर्ती भी तेजी से हो रही है। और सुनिए ताऊ जी, प्रदेश के मेडिकल कॉलेजों में PG की 314 सीटें भी बढ़ाई जा रही हैं।
2: वाह बेटा, अब तो इलाज के लिए बड़े शहरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे।
3: हर घर तक स्वास्थ्य का अधिकार, जन जन के साथ सुखू सरकार, स्वस्थ हिमाचल, खुशहाल परिवार, सुखू सरकार, सबके द्वार। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जनहित में जारी।

भरोसा ही इस मोहब्बत की मंजिल तक इस सफर के राही को लेकर जाता है, और साथ हम सफर हो तो बस ये सफर रंगीन हो जाता है और मोहब्बत आजाद परिंदे की तरह उड़ान भरती है। संजोग फिल्म का ये गीत आपने सुना, आवाजें सुरेश वाडेकर और आशा भोसले की, अनजान के बोल लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत। म्यूजिक मस्ती आप सुन रहे हैं FM शिमला के साथ।

हर खामोशी में एक इबादत होती है, मोहब्बत की भी अपनी एक अदालत होती है। ज़रूरी नहीं हर इश्क मुकम्मल हो, कुछ अधूरेपन में भी एक नज़ाकत होती है। चांदनी फिल्म का ये गीत आपने सुना लता मंगेशकर की आवाज़ में, आनंद बख्शी के बोल, शिवहरि का संगीत। म्यूजिक मस्ती आप सुन रहे हैं FM शिमला के साथ। हीरो फिल्म का गीत लीजिए पेश है रेशमा की आवाज में। इस गीत को लिखा आनंद बख्शी ने, संगीत दिया लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

मैंने प्यार किया फिल्म के इसी गीत के साथ म्यूजिक मस्ती कार्यक्रम में बस इतना ही। आप सुन रहे हैं FM शिमला 103.7 मेगाहर्ट्ज पर। हवाओं में तैरते सुर, यादों के गलियारे और आपकी मुस्कुराहट। जी हां, सबसे बनकर बनता है एक गुलदस्ता जिसे कहते हैं सब रंग। और अगर जिंदगी में एक ही रंग हो तो जिंदगी थोड़ी बेरंग सी लगने लगती है। इसीलिए लेकर हम आते हैं आपके लिए ये कार्यक्रम, नाम है जिसका सब रंग, यानी आपके पसंदीदा संगीत का मेल, गुजरे जमाने की यादें, सिनेमा के गलियारों से छनकर निकली बातें और हाँ वो संगीत जो सीधा आपके दिल को छू ले। तो आइए, ये सूफी कलाम पेश है सबरंग कार्यक्रम के आरंभ में बस आपके लिए।

सबरन कार्यक्रम आप सुन रहे हैं और आपने आनंद लिया उस्ताद शुजात खान की आवाज़ में सूफी कलाम का। आइए अब सुनते हैं हरभजन मान को।

सबरंग कार्यक्रम में आज बस इतना ही। इस वक्त आप सुन रहे हैं आकाशवाणी FM शिमला का प्रसारण। 2:15 होने को है। दोपहर हिंदी समाचार अब आप सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। कृपया रिले की प्रतीक्षा कीजिए।

नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री। मंत्रिमंडल ने इस उपलब्धि पर प्रस्ताव पारित किया। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अहमदाबाद मेट्रो के विस्तार और अमरावती में सरकारी कार्यालय और आवासीय परिसरों सहित 4,700 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं को मंजूरी दी। प्रधानमंत्री की उपलब्धियों और सरकार के 12 वर्ष पूरे होने का उत्सव मनाने के लिए नई दिल्ली में एनडीए की बैठक होगी। ईरान ने जॉर्डन में अमरीकी ठिकानों पर हमले किए, अमरीका ने ईरान पर किए जवाबी हमले। अफगानिस्तान में पाकिस्तानी हवाई हमले में 11 बच्चों सहित 13 लोग मारे गए। और मौसम विभाग ने अगले 3 दिन में दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में भीषण गर्मी से राहत मिलने की संभावना व्यक्त की। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बन गए हैं। श्री मोदी ने 26 मई 2014 को प्रधानमंत्री पद की शपथ ली।

0: थी। प्रधानमंत्री मोदी का निरंतर कार्यकाल अब 4,399 दिन का हो गया है। एक रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यह उपलब्धि विशेष रूप से उल्लेखनीय है क्योंकि भारत जैसे 140 करोड़ से अधिक आबादी वाले देश का शासन प्रशासन अत्यंत व्यापक और जटिल है। भाषाई, सांस्कृतिक, धार्मिक तथा भौगोलिक विविधताओं से युक्त इस राष्ट्र का सफल नेतृत्व और संचालन अपने आप में एक बड़ी जिम्मेदारी और चुनौती है। ऐसे समय में जब अनेक देशों में राजनीतिक अस्थिरता, सरकारों में बार बार परिवर्तन तथा नीतिगत अनिश्चितता देखने को मिल रही है, भारत में नेतृत्व और शासन में निरंतर रही है। यह विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र में लगातार 3 बार राष्ट्रीय जनादेशों

0: अपने आप में एक बड़ी जिम्मेदारी और चुनौती है। ऐसे समय में जब अनेक देशों में राजनीतिक अस्थिरता, सरकारों में बार बार परिवर्तन तथा नीतिगत अनिश्चितता देखने को मिल रही है, भारत में नेतृत्व और शासन में निरंतरता रही है। यह विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र में लगातार 3 बार राष्ट्रीय जनादेशों द्वारा जनता का निरंतर भरोसा दर्शाता है। स्वतंत्र वैश्विक सर्वेक्षणों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लगातार विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय लोकतांत्रिक नेताओं में स्थान दिया गया है। साथ ही उन्हें अब तक 30 से अधिक देशों द्वारा सर्वोच्च नागरिक सम्मानों से भी सम्मानित किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के दौरान लगभग 25 करोड़ भारतीय बहुआयामी गरीबी से बाहर निकले हैं तथा व्यापक सामाजिक आर्थिक प्रगति हुई है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि यह ऐतिहासिक अवसर है, देश की जनता का उनके नेतृत्व में अटूट विश्वास और भरोसे का प्रमाण है। उन्होंने कहा कि श्री मोदी के कार्यकाल में शासन, आर्थिक दृढ़ता और सामाजिक परिवर्तन के क्षेत्र में दूरगामी प्रगति हुई है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि प्रधानमंत्री के दूरदर्शी नेतृत्व में भारत ने आर्थिक विकास, अवसंरचना विस्तार, सामाजिक सशक्तिकरण, तकनीकी उन्नति और वैश्विक स्तर पर भारत की प्रतिष्ठा में वृद्धि जैसे क्षेत्रों में उल्लेखनीय प्रगति देखी है। गृहमंत्री अमित शाह, विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर, वाणिज्य उद्योग मंत्री पीयूष गोयल, वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन और कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान सहित अन्य केंद्रीय मंत्रियों ने श्री नरेंद्र मोदी को देश के सबसे लंबे समय तक लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री बने रहने पर बधाई दी है। गृहमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना और उनके खोए हुए आत्मसम्मान को बहाल करना प्रधानमंत्री की सबसे बड़ी उपलब्धि है। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने कुशलता, धैर्य, दृढ़ संकल्प के साथ देश का मार्गदर्शन किया है। उन्होंने कहा कि श्री मोदी ने विकसित भारत के सपने को साकार करने का संकल्प लिया है।
2: भारत में डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी आज हुए हैं और विकसित भारत बनाने का संकल्प जो उन्होंने लिया है, हम सभी 140 करोड़ देशवासी उस संकल्प में जुड़े, ऐसी प्रार्थना प्रभु के पास की।
1: भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने समाज के हर वर्ग के कल्याण और विकास के लिए काम किया है, इसमें विशेष रूप से महिला सशक्तिकरण उल्लेखनीय है।
3: पिछले 12 सालों में जो उन्होंने कई कीर्तिमान बनाए, वे सबसे बड़ा विषय आज हमारा गरीब हमारा परिवार के मुख्य धारा के साथ जोड़कर काम कर रहा है, देश के विकास में काम कर रहा है। आज हमारा युवा पूरी तरह से उत्साह के वातावरण में, मैं मानता हूं कि 2013-14 का जो समय था एक निराशा का वातावरण में जो हमारा युवा था, आज हमारा युवा अपने आप को उत्साह और उम्मीद और आकांक्षाओं के साथ मोदी के साथ चलने को तैयार।
1: दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने अपना पूरा जीवन राष्ट्र सेवा में समर्पित किया है।
4: मोदी जी ने लगातार देश सेवा में अपना जीवन अर्पित किया। देश सेवा में जिन्होंने एक दिन भी बिना कोई अवकाश लिए देश का मान सम्मान और स्वाभिमान बढ़ाने का काम किया, और उनका जो योगदान विकसित भारत के लिए है, देश का हर नागरिक आज दिल की गहराई से उसके लिए धन्यवाद करना चाहता हूँ।
1: विश्व नेताओं ने भारत के सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री बनने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई दी है।
5: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लगातार सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने के अवसर पर श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमार दिसानायके, पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री जेम्स मरापे और त्रिनिदाद और टोबैगो के प्रधानमंत्री कमला प्रसाद विशेसर ने प्रधानमंत्री मोदी को बधाई दी। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के परिवर्तनकारी नेतृत्व, ग्लोबल साउथ की आवाज को मजबूत करने के प्रयासों और समावेशी तथा आर्थिक रूप से सशक्त भारत के उनके दृष्टिकोण की सराहना की। गृहमंत्री अमित शाह, विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर, वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान सहित नेताओं ने भी प्रधानमंत्री मोदी को शुभकामनाएं दी। श्री शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के पिछले 12 वर्ष भारत के गौरव की पुनर्स्थापना, सांस्कृतिक पुनर्जागरण और गुलामी की मानसिकता से देश को मुक्त करने के लिए समर्पित रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस दौरान देश की सीमाएं अधिक सुरक्षित हुई, जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाया गया, अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हुआ, नक्सलवाद पर प्रभावी नियंत्रण पाया और आतंकवाद को करारा जवाब दिया गया। प्रिया के साथ अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: भारत में अमरीकी राजदूत सर्जियो गोर ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि यह उपलब्धि प्रधानमंत्री मोदी के दशकों के समर्पित जनसेवा और नेतृत्व का सशक्त प्रमाण है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज एक प्रस्ताव पारित कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सबसे लंबे समय तक निर्वाचित रूप से पद पर बने रहने पर बधाई दी है। मंत्रिमंडल की बैठक के बाद नई दिल्ली में

0: मीडिया से बातचीत में सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि प्रस्ताव में श्री मोदी द्वारा निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में राष्ट्र की निरंतर सेवा की इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर चर्चा की गई। श्री वैष्णव ने बताया कि मंत्रिमंडल ने आज 2169 करोड़ रुपए की लागत से अहमदाबाद मेट्रो के चरण 2A के विस्तार को मंजूरी दी। उन्होंने बताया कि इसमें 5 स्टेशन वाला 6 किलोमीटर लंबा मेट्रो कॉरिडोर भी शामिल है।
1: आज कैबिनेट में 3 फैसले लिए गए। एक फैसला अहमदाबाद में मेट्रो के विस्तार का है और 2 फैसले अमरावती, जो कि आंध्र प्रदेश का नया कैपिटल निर्मित हो रहा है, बन रहा है, डेवलप हो रहा है, उसके 2 फैसले लिए गए। अहमदाबाद मेट्रो का फेज 2A कोटेश्वर रोड से एयरपोर्ट का कॉरिडोर आज अप्रूव हुआ है कैबिनेट में।
0: श्री वैष्णव ने बताया कि मंत्रिमंडल ने आंध्र प्रदेश के अमरावती में केंद्रीय सरकारी कार्यालय परिसर और केंद्रीय सरकारी आवासीय परिसर को भी मंजूरी दी।
1: अमरावती नया शहर बन रहा है तो नए शहर में कई सारे जो सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिसेज हैं, इनको एक सिंगल कॉम्प्लेक्स में शिफ्ट किया जाएगा। बिखरे बिखरे से ऑफिसेज से काम करने में तकलीफ होती है, इंटीग्रेशन होने से कोऑर्डिनेशन प्रॉपर हो पाता है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिस कॉम्प्लेक्स अमरावती में बनेगा। इसके लिए करीब 5.5 एकड़ की जमीन राज्य सरकार ने दी है और 23 लाख स्क्वायर फीट का कंस्ट्रक्टेड एरिया बनेगा। लोकेशन ये मैप में है सारा। 2 प्रोजेक्ट है, एक तो रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स है और एक ऑफिस कॉम्प्लेक्स है।
0: राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन NDA की बैठक आज नई दिल्ली में होगी। इसमें सरकार के 12 वर्ष पूरे होने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भारत के सबसे लंबे समय तक लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने पर उत्सव मनाया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं के साथ साथ NDA गठबंधन के सभी घटक दलों के नेता के भी बैठक में शामिल होने की उम्मीद है। बैठक में विभिन्न राष्ट्रीय विकास कार्यक्रमों, बुनियादी सुविधाओं से जुड़े कार्यक्रमों और सरकार के विकसित भारत 2047 के दृष्टिकोण पर चर्चा होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गृहनगर गुजरात के वडनगर में आज उनके सफल शासन के 12 वर्षों के उपलक्ष्य में कार्यक्रमों की एक श्रृंखला आयोजित की जाएगी, जिसमें विकसित भारत के दृष्टिकोण को साकार करने के लिए जन भागीदारी पर जोर दिया जाएगा। सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए 95,692 करोड़ रुपए के अंतरिम बजट आवंटन का प्रस्ताव रखा है, जिससे मनरेगा से विकसित भारत रोजगार गारंटी और आजीविका मिशन ग्रामीण VBG रामजी में सुचारू रूप से परिवर्तन सुनिश्चित किया जा सके। यह अधिनियम 1 जुलाई से पूरे देश में लागू हो जाएगा। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नई दिल्ली में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के ग्रामीण विकास मंत्रियों के साथ वर्चुअल बैठक के बाद इसकी घोषणा की।
2: इस साल बजट में 30,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया था नरेगा चलाने के लिए। नियमों को अंतिम रूप देने में कुछ समय लग सकता है, इसलिए कोई दिक्कत मजदूरों को ना आए और विकास का जो महायज्ञ ग्रामीण भारत के गांव का वो भी चलता रहे, इसलिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को इंटरिम एलोकेशन कुल मिला के है 95,692 करोड़ का।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नई दिल्ली के राष्ट्रपति भवन सांस्कृतिक केंद्र में नीति आयोग के 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। प्रधानमंत्री की टीम इंडिया के दृष्टिकोण के अनुरूप इस वर्ष का विषय है 2047 तक विकसित भारत के लिए समावेशी मानव विकास। ये विषय प्रत्येक भारतीय के कल्याण और विकास पर केंद्रित है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने आज कहा कि देश में CNG की कोई कमी नहीं है। उन्होंने कहा कि सरकार घरों तक पाइपलाइन वाली प्राकृतिक गैस PNG की आपूर्ति कर रही है। श्री पुरी ने कहा कि LPG कनेक्शनों को PNG कनेक्शनों में बदलने के प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि कुछ लोग गलत सूचना फैलाकर वैश्विक स्थिति का फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं।
3: ग्लोबल सिचुएशन का फायदा उठा के कुछ लोगों ने आर्टिफिशियल शॉर्टेजेस करने की कोशिश की है, तो एकदम हमने उस पर क्रैकडाउन कर दिया। कोई कमी नहीं है, ना CNG की कमी है, ना पाइप गैस जो लोगों के घरों में जा रहे हैं, इनफैक्ट LPG के हम कन्वर्ट कर रहे हैं इनटू PNG कनेक्शन।
0: सरकार ने सोशल मीडिया पर चल रही उन खबरों का खंडन किया है जिसमें कहा गया था कि रिजर्व बैंक इस महीने की 30 तारीख से कागजी नोटों को बंद करके उनके जगह प्लास्टिक नोटों का प्रचलन शुरू कर देगा। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने इस दावे को फर्जी बताया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। अमेरिका और ईरान के बीच एक बार फिर तनाव बढ़ गया है। दोनों देशों की सेनाओं के बीच रात भर सैन्य हमले हुए। एक रिपोर्ट।
4: अमेरिका के केंद्रीय कमान ने पुष्टि की है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के निर्देश पर कल होर्मुज जलडमरू मध्य के पास अपाचे हेलीकॉप्टर को गिराया

0: जाने के जवाब में ईरान के खिलाफ आत्मरक्षा में हमले किए गए। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि चालक दल के दोनों सदस्य सुरक्षित हैं। ईरान की ओर से भी तुरंत प्रतिक्रिया सामने आई। इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर ने बहरीन में अमेरिका के पांचवें बेड़े और कुवैत में अली अल सलेम हवाई अड्डे पर ड्रोन हमले का दावा किया। साथ ही जॉर्डन में अल अजराक हवाई अड्डे पर लंबी दूरी की मिसाइल से हमला किया गया। जॉर्डन के सशस्त्र बलों ने पुष्टि की है कि उन्होंने अजराक क्षेत्र की ओर दागी गई सभी 5 ईरानी मिसाइलों को नष्ट कर दिया है। गार्ड कोर ने दावा किया कि उन्होंने क्षेत्र में अमरीकी ठिकानों पर 21 लक्ष्यों को निशाना बनाया है। हालांकि इस आंकड़े की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं की जा सकी है। एक अमरीकी अधिकारी ने कहा कि प्रारंभिक आकलन से संकेत मिलता है कि लगभग सभी ईरानी मिसाइलों और ड्रोन को सफलतापूर्वक रोक दिया गया था और तत्काल किसी के हताहत होने या बड़े नुकसान की कोई खबर नहीं है। पिछले सप्ताह अमरीका की मध्यस्थता में हुआ युद्ध विराम अब गंभीर स्थिति में है। लेबनान में हिजबुल्ला द्वारा उत्तरी इसराइल में मिसाइल हमले के बाद इजरायली बलों ने बेरूत के दक्षिणी उपनगरों पर हमले किए। जवाब में ईरान ने भी इजरायली हवाई अड्डे पर हमले का दावा किया है। इस बीच संयुक्त राष्ट्र महासचिव के निजी दूत वर्तमान में दोनों देशों के बीच व्यापक समझौते को लेकर अमरीकी अधिकारियों के साथ बातचीत के लिए वॉशिंगटन में है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
1: अफगानिस्तान के कुनार्क होस्त और पक्तिका प्रांत में पाकिस्तानी सेना के हवाई हमले में 13 लोग मारे गए। इनमें ज्यादातर बच्चे थे। तालिबान के प्रवक्ता जबीउल्ला मुजाहिद ने हमले की निंदा करते हुए कहा कि नागरिकों के घरों को निशाना बनाकर कल रात ये हमला किया गया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी सेना ने एक बार फिर अफगानिस्तान के हवाई क्षेत्र का उल्लंघन किया है। उन्होंने इसे मानवीय अपराध और आक्रामकता का कृत्य बताया है। मौसम विभाग ने अगले 3 दिन में दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में भीषण गर्मी से राहत मिलने की संभावना व्यक्त की है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में अगले 3 दिन में गरज के साथ बारिश और धूल भरी आंधी की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, सिक्किम, कर्नाटक के तटवर्ती इलाकों और पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर मूसलाधार बारिश हो सकती है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री। मंत्रिमंडल ने इस उपलब्धि पर प्रस्ताव पारित किया। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अहमदाबाद मेट्रो के विस्तार और अमरावती में सरकारी कार्यालय और आवासीय परिसरों सहित 4,700 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं को मंजूरी दी। प्रधानमंत्री की उपलब्धियों और सरकार के 12 वर्ष पूरे होने का उत्सव मनाने के लिए नई दिल्ली में एनडीए की बैठक होगी। ईरान ने जॉर्डन में अमरीकी ठिकानों पर हमले किए। अमरीका ने ईरान पर किए जवाबी हमले। अफगानिस्तान में पाकिस्तानी हवाई हमले में 11 बच्चों सहित 13 लोग मारे गए और मौसम विभाग ने अगले 3 दिन दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में भीषण गर्मी से राहत मिलने की संभावना व्यक्त की। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

एफएम शिमला आप सुन रहे हैं। कहते हैं पहाड़ों की हवाओं में एक अलग ही जादू होता है। जब इन हवाओं के साथ यहाँ के लोकगीतों और संस्कृति के सुर मिलते हैं तो दिल सुकून से भर जाता है। आज कार्यक्रम शिखरों के स्वर में हम आपके लिए लेकर आए हैं पहाड़ों की मिट्टी की महक, यहाँ की परंपराएं और कुछ बेहद सुरीले नगमे जो सीधे हमारे दिल को छूते हैं। तो आइए आज कार्यक्रम शिखरों के स्वर के आरंभ में ये लोकगीत आप सबके लिए। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

दीपराम भारद्वाज की आवाज़ में ये लोकगीत आपने सुना। आप सुन रहे कार्यक्रम शिखरों के स्वर, और कार्यक्रम में आइए अब सुनते हैं गौरीशंकर ठाकुर की आवाज़ में कार्यक्रम का अगला लोकगीत।

बांसुरी की तान और पहाड़ों की ये शाम जैसे हर सुर में लिखा हो कुदरत का नाम। सुनो गौर से तो इनमें झरनों की रवानी है, पहाड़ी संगीत ही हमारी पुरखों की निशानी है।

नदियों की कलकल में एक अजीब सी रवानी है। यहाँ की हर नाटी और झूरी में कोई पुरानी कहानी। चीड़ के जंगलों से जो छनकर आती है बांसुरी की तान, सच कहूँ तो वही हमारे पहाड़ों की असली जिंदगानी है। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम शिखरों के स्वर FM शिमला के साथ। सुनते रहिए।

करो हुंदे भवाई पाछे चालो शोरा आगे जुमाई ता तो बैठी मोले

ऊंचे पहाड़ों की वादियों में जब ये सुर गूंजते हैं तो पत्थर भी जैसे गुनगुनाने लगते हैं। ये पहाड़ी संगीत नहीं, रूह का सुकून है जिसमें हम अपनी जड़ों को ढूंढते हैं। शिखरों के स्वर, जी हाँ, ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं FM शिमला के साथ। और कार्यक्रम में लीजिए पेश है कृष्णा शर्मा की आवाज में ये लोकगीत।

0: शिखरों के सुर कार्यक्रम में बस इतना ही। 103.7 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं FM शिमला। कृपया हमारी अगली उद्घोषणा की प्रतीक्षा कीजिए।
1: आकाशवाणी का शिमला केंद्र है। 3 बजने को हैं, अब आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार, जिन्हें आकाशवाणी के हमीरपुर और धर्मशाला केंद्रों के साथ साथ आकाशवाणी FM शिमला 103.7 मेगाहर्ट्ज पर भी सुना जा सकता है। प्रादेशिक समाचार मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन AIR के साथ साथ DTH सेवा पर भी उपलब्ध हैं।
2: नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राकेश शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बन गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 26 मई 2014 को पद की शपथ ली थी। उन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू का रिकॉर्ड तोड़ दिया है, जिन्होंने पहली बार 13 मई 1952 को निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली थी और 27 मई 1964 तक सेवा की थी। पंडित नेहरू का निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में कार्यकाल 4398 दिन का था। 26 मई 2014 से आज 10 जून 2026 तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का निरंतर कार्यकाल अब 4399 दिनों का हो गया है, जिससे वे भारत के इतिहास में सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बन गए हैं। इस बीच नरेंद्र मोदी द्वारा प्रधानमंत्री के रूप में सबसे लंबे कार्यकाल का कीर्तिमान स्थापित करने की खुशी और उनकी दीर्घायु की कामना में आज प्रदेश भर में भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं द्वारा हवन यज्ञ का आयोजन किया गया। सोलन में भाजपा शहरी मंडल द्वारा इस मौके पर आयोजित हवन यज्ञ के बाद भारत सरकार में सहकारिता राज्य मंत्री कृष्ण लाल गुर्जर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समक्ष कोरोना महामारी और पाकिस्तान के साथ युद्ध सहित खाड़ी देशों में संघर्ष जैसी विकराल समस्याएं आईं, लेकिन उन्होंने सफलतापूर्वक देश को इन समस्याओं से उबारा।
3: आज आदरणीय नरेंद्र मोदी जी देश के सबसे लंबे समय तक रहने वाले प्रधानमंत्री का रुतबा उन्होंने हासिल किया है और इन 12 सालों में आदरणीय मोदी जी ने देश को जो

0: आर्थिक तौर पर मजबूत किया है, देश के सांस्कृतिक विरासत को मजबूत किया है। ये अपने आप में एक मिसाल है, अद्भुत है, अद्वितीय है, अतुलनीय है। ऐसा प्रधानमंत्री जिसके हाथों में देश का खजाना भी सुरक्षित है, देश की सीमाएं भी, तो ऐसे प्रधानमंत्री के लिए आज पूरे देश मंदिरों में भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं।
1: शिमला में भी इस मौके पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने हवन यज्ञ का आयोजन कर प्रधानमंत्री की दीर्घायु की कामना की। इस मौके पर भाजपा विधायक विनोद कुमार ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये कार्यकाल गरीब कल्याण के लिए जाना जाएगा। उन्होंने कहा कि आज देश नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है।
2: आज शिमला के राम मंदिर में भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं की ओर से देश के प्रधानमंत्री श्रद्धेय नरेंद्र भाई मोदी जी के दीर्घ आयु के लिए, वो स्वस्थ रहे, देश के करोड़ों लोगों की सेवा इसी तरह से करते रहे, उस संदर्भ में आज राम मंदिर में हवन और पूजा का आयोजन यहां पे किया गया।
1: राज्यपाल कविंद्र गुप्ता ने युवाओं से आह्वान किया है कि वे जन कल्याणकारी गतिविधियों में बढ़ चढ़कर भाग लें। राज्यपाल आज शिमला में हिमाचल प्रदेश राज्य रेडक्रॉस सोसाइटी द्वारा आयोजित रक्तदान शिविर व निःशुल्क दंत स्वास्थ्य जांच शिविर के उद्घाटन अवसर पर बोल रहे थे। राज्यपाल ने रेडक्रॉस द्वारा समाज के प्रति किए जा रहे प्रयासों की सराहना की। उन्होंने कहा कि रेडक्रॉस मानवता की सेवा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के अलावा पीड़ितों व जरूरतमंदों को सहायता प्रदान करने के साथ साथ करुणा और सामुदायिक कल्याण की भावना को भी प्रोत्साहित करता है। राज्यपाल ने मोबाइल डेंटल क्लिनिक वैन का निरीक्षण भी किया। उन्होंने रक्तदाताओं को प्रशस्ति पत्र भी प्रदान किए और रेडक्रॉस सोसाइटी को सहयोग देने और वर्षों से नियमित रूप से रक्तदान करने के लिए राजकुमार को सम्मानित किया। अंतर्राष्ट्रीय शिमला ग्रीष्मोत्सव में आज से मिनी बैडमिंटन चैंपियनशिप आरंभ हुई। चैंपियनशिप का शुभारंभ उपायुक्त अनुपम कश्यप ने किया। ये चैंपियनशिप अंडर 11, 13 और 15 आयु वर्ग में लड़के और लड़कियों के लिए आयोजित की जा रही है। इस प्रतियोगिता में शिमला जिला से लगभग 180 प्रतिभागी हिस्सा ले रहे हैं। उपायुक्त ने इस मौके पर कहा कि विद्यार्थी जीवन में पढ़ाई के साथ साथ खेलों का भी महत्वपूर्ण स्थान है। इस प्रतियोगिता का आयोजन शिमला जिला बैडमिंटन एसोसिएशन द्वारा किया जा रहा है। प्रदेश में भीषण गर्मी का दौर जारी है। खासकर राज्य के मैदानी इलाकों में लोगों को जोरदार गर्मी का सामना करना पड़ रहा है। ऊना में आज अधिकतम तापमान 42 डिग्री से अधिक दर्ज किया गया। राजधानी शिमला में भी लोगों को दिन के समय जोरदार तपिश का सामना करना पड़ रहा है। इस बीच मौसम विभाग ने कल 11 जून से राज्य में मौसम में बदलाव की संभावना जताई है। विभाग के अनुसार हिमालयी क्षेत्र में ताज़ा पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हुआ है। उसके प्रभाव से 11 और 12 जून को राज्य में अधिकांश स्थानों पर वर्षा होगी। विभाग ने इन दो दिनों के दौरान राज्य के 4 जिलों कुल्लू, मंडी, शिमला और सिरमौर में कुछ स्थानों पर अंधड़, ओलावृष्टि और 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आंधी तूफान चलने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। विभाग ने इस दौरान अन्य जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं शाम 6 बजे। नमस्कार।
3: प्रादेशिक समाचार के बाद प्रस्तुत है सामयिक चर्चा, जिसका विषय है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सर्वाधिक कार्यकाल की ऐतिहासिक उपलब्धि। वाचक स्वर राकेश शर्मा का।
1: भारत की लोकतांत्रिक राजनीति में 9 जून 2026 का दिन एक ऐतिहासिक पड़ाव के रूप में दर्ज हो गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगातार 12 वर्ष तक देश का नेतृत्व करते हुए स्वतंत्र भारत के इतिहास में एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। वर्ष 2014 में पहली बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने वाले मोदी आज देश के सबसे लंबे समय तक लगातार सेवा देने वाले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बन चुके हैं। उनके नेतृत्व में भारत ने आर्थिक, सामाजिक, तकनीकी, कूटनीतिक और आधारभूत संरचना के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण उपलब्धियाँ हासिल की हैं। प्प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 26 मई 2014 को पहली बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। आज 10 जून 2026 तक प्रधानमंत्री मोदी का निरंतर कार्यकाल अब 4,399 दिनों का हो गया है, जिससे वे भारत के इतिहास में सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बन गए हैं। उन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। पंडित नेहरू का निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में कार्यकाल 4,398 दिनों का था। नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2014, 2019 और 2024 में लगातार 3 बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। लगातार 3 लोकसभा चुनाव में जीत हासिल करना अपने आप में एक बड़ी राजनीतिक उपलब्धि है। पिछले 12 वर्षों में मोदी सरकार

0: सरकार ने अनेक ऐसी योजनाएं और नीतियां लागू की जिनका प्रभाव देश के करोड़ों लोगों के जीवन पर पड़ा है। मोदी सरकार के कार्यकाल में भारत दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है। भारत ने ब्रिटेन को पीछे छोड़कर विश्व की पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था का स्थान प्राप्त किया और अब चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में वृद्धि, डिजिटल भुगतान प्रणाली का विस्तार और स्टार्टअप संस्कृति को बढ़ावा देने से भारतीय अर्थव्यवस्था को नई गति मिली। सरकार ने मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया और आत्मनिर्भर भारत जैसे अभियानों के माध्यम से देश में विनिर्माण और उद्यमिता को प्रोत्साहित किया। मोबाइल फोन निर्माण से लेकर रक्षा उत्पादन तक कई क्षेत्रों में भारत ने आत्मनिर्भरता की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बढ़ाए हैं। मोदी सरकार के सबसे चर्चित कार्यों में डिजिटल इंडिया अभियान शामिल है। आज भारत दुनिया में डिजिटल भुगतान के क्षेत्र में अग्रणी देशों में गिना जाता है। यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यूपीआई ने लेन देन की प्रक्रिया को सरल, तेज और पारदर्शी बनाया है। गांव तक इंटरनेट और डिजिटल सेवाओं की पहुंच बढ़ने से शासन व्यवस्था में पारदर्शिता आई है। सरकारी सेवाओं को ऑनलाइन उपलब्ध कराने, आधार और जनधन खातों को जोड़ने और प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के माध्यम से करोड़ों रुपए की बचत हुई है। इससे भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने में भी मदद मिली है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के माध्यम से महिलाओं को मुफ्त गैस कनेक्शन उपलब्ध करवाए गए, जिससे उनके स्वास्थ्य और जीवन स्तर में सुधार आया। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लाखों गरीब परिवारों को पक्के घर मिले। आयुष्मान भारत योजना ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को स्वास्थ्य सुरक्षा प्रदान की। वहीं प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों को प्रत्यक्ष आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाई गई। मोदी सरकार के कार्यकाल में देश में सड़कों, रेल मार्गों, हवाई अड्डों और बंदरगाहों के विकास को विशेष प्राथमिकता दी गई। एक्सप्रेसवे, वंदे भारत ट्रेनें, नए एयरपोर्ट और आधुनिक रेलवे स्टेशनों का निर्माण भारत के बुनियादी ढांचे को नई पहचान दे रहा है। सीमावर्ती क्षेत्रों में भी सड़क और सुरंग निर्माण के कार्यों में तेजी आई है। जम्मू कश्मीर से लेकर पूर्वोत्तर राज्यों तक कनेक्टिविटी में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। इससे आर्थिक गतिविधियों और पर्यटन को भी बढ़ावा मिला है। प्रधानमंत्री मोदी ने वैश्विक मंचों पर भारत की भूमिका को अधिक प्रभावशाली बनाया। लगातार 12 वर्ष तक देश का नेतृत्व करना किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में बड़ी उपलब्धि माना जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने कार्यकाल में कई ऐसे निर्णय लिए जिन्होंने देश की राजनीति और शासन व्यवस्था की दिशा में प्रभावित किया। समर्थकों के लिए वे विकास, निर्णायक नेतृत्व और परिवर्तन के प्रतीक हैं, जबकि आलोचक उनकी नीतियों पर सवाल उठाते रहे हैं। लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि पिछले 12 वर्षों से भारतीय राजनीति का केंद्र बिंदु नरेंद्र मोदी ही रहे। इतिहास के इस महत्वपूर्ण पड़ाव पर प्रधानमंत्री मोदी का नाम उन नेताओं की श्रेणी में दर्ज हो गया है जिन्होंने लंबे समय तक देश का नेतृत्व करते हुए भारत के विकास और वैश्विक पहचान को नई दिशा देने का प्रयास किया। आने वाले वर्षों में उनके कार्यकाल की उपलब्धियों और चुनौतियों का मूल्यांकन इतिहासकार और राजनीतिक विश्लेषक करते रहेंगे, लेकिन वर्तमान समय में इसे निश्चित रूप से भारतीय लोकतंत्र के एक महत्वपूर्ण अध्याय के रूप में देखा जा रहा है। इसके साथ ही सामयिक चर्चा संपन्न हुई। नमस्कार।
1: राकेश शर्मा से आप सुन रहे थे सामयिक चर्चा, जिसका विषय था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सर्वाधिक कार्यकाल की ऐतिहासिक उपलब्धि। इसे आकाशवाणी के हमीरपुर और धर्मशाला केंद्रों के साथ साथ आकाशवाणी FM शिमला 103.7 MHz पर भी सुना गया। कृपया हमारी अगली उद्घोषणा की प्रतीक्षा कीजिए।
2: इस वक्त आप हमारे साथ और सुन रहे हैं FM शिमला 103.7 MHz पर।

जी वक्त ठहर जाता है जब उसर कानों में घुलते हैं, पुराने गीतों को सुनते ही तो यादों के झरोके खुलते हैं। जी बिल्कुल, यादों के झरोकों को जरा फिर से खोलते हैं और चलते हैं उस जहां में जहां वक्त बदला, दुनिया बदली, महफिल के नज़ारे भी बदले, मगर आज भी दिल उन्हीं नगमों को सुनकर धड़कता है जो कल भी लाजवाब थे और आज भी बेमिसाल हैं और हमेशा यादगार रहेंगे। जी हाँ, हाजिर हो गए हैं ओल्ड हिट्स के साथ। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

अल्फाज जिनमें बहते हैं सीधे दिल के रास्ते, वो गीत बने थे सिर्फ मोहब्बत के वास्ते। जब भी गूंजती है सुरों की वो पुरानी धुन, धड़कने थम जाती है गुजरे जमाने के वास्ते।

वक्त की धूल भी इनका कुछ बिगाड़ न सकी, ये वो चिराग हैं जो हर दौर में रोशन रहे। नया दौर फिल्म का ये गीत आपने सुना, आवाज आशा भोसले और शमशाद बेगम की, साहिर के बोल ओपी नैयर का संगीत। ओल्ड हिट्स आप सुन रहे हैं एफएम शिमला के साथ।

गीता रॉय और लता मंगेशकर की आवाज़ में आपने ये गीत सुना फिल्म गूंज उठी शहनाई से। इसी गीत के साथ ओल्ड हिट्स को यहीं समेटते हैं। 103.7 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं FM शिमला। FM शिमला पर लीजिए पेश है कार्यक्रम युववाणी।

कार्यक्रम युववाणी सुनने वाले सभी साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं आपकी दोस्त अंजलि ठाकुर और आप सभी जुड़े हैं 103.7 मेगाहर्ट्ज पर FM शिमला के साथ। आशा करती हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और अपना पसंदीदा कार्यक्रम ज़रूर सुन रहे होंगे। तो दोस्तों, कहते हैं कि दिमाग में सुकून और जिस्म में रवानी ज़रूरी है। ज़िंदगी जीने के लिए दोनों की कहानी ज़रूरी है। अगर दिमाग बीमार हो तो हर खुशी अधूरी लगती है। इसीलिए दोस्तों, सेहत दिल और सेहत जान दोनों ही ज़रूरी है। तन दुरुस्त हो तो मन मुस्कुराता है और मन खुश हो तो हर रास्ता आसान हो जाता है। ना बिगड़ने दे इस दोस्ती को कभी, क्योंकि दिमाग और जिस्म के साथ से ही ज़िंदगी को जिया जाता है। जी हाँ दोस्तों, हम अक्सर मेंटल हेल्थ के कंसेप्ट को इग्नोर कर देते हैं और शारीरिक स्वास्थ्य को सुधारने पर ही बल देते हैं, जिसके लिए हम स्पेशली जिम ज्वाइन करते हैं। ज़रा सोचिए, अगर हमारा मानसिक संतुलन ही बिगड़ जाए तो? विचार करिए, यदि हम डिप्रेशन का शिकार हो गए तो? क्या आपने कभी इस बारे में सोचा है? यदि नहीं तो अब सोचिए। चर्चा करेंगे इसी बारे में, पर उससे पहले सुनते हैं एक प्यारा सा गीत।

पहले बात करते हैं शारीरिक स्वास्थ्य यानी कि फिजिकल हेल्थ की। ये शरीर ही हमारा पहला और असली घर है। अगर ये तंदुरुस्त है तो हर सफर बेअसर है। दौलत और शोहरत तो बाद की बात है, असली सुख तो निरोगी काया का है। जी हाँ दोस्तों, कितनी अजीब बात है ना, हम अपनी कार की सर्विसिंग समय पर करते हैं, अपने मोबाइल को रोज चार्ज करते हैं, लेकिन इस प्यारे से शरीर को अक्सर भूल जाते हैं जो 2400 घंटे हमारे लिए काम करता है। इसको मेंटेन रखने के लिए हमें योगा एंड एक्सरसाइज ज़रूर करनी चाहिए। एक बैलेंस डाइट जो कि प्रोटीन एंड न्यूट्रिएंट से भरपूर हो उसे लाइफ में ऐड करना चाहिए। खेलकूद जैसी शारीरिक गतिविधियों में भाग लेना चाहिए और सबसे ज़रूरी, फ़ोन पर घंटों बैठकर समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं हमारा अगला गीत।

सिर्फ जिस्म का ठीक होना ही सेहत नहीं होती, मन उदास हो तो चेहरे पर रंगत नहीं होती। हजारों ख्वाब टूट कर बिखर जाते हैं अक्सर, अगर दिमाग में सुकून की सल्तनत नहीं होती। अक्सर हम सोचते हैं कि अगर कोई शारीरिक रूप से बीमार नहीं है, वो जिम जा रहा है या फिट दिख रहा है, तो वो पूरी तरह स्वस्थ है। लेकिन सच तो ये है कि अगर इंसान अंदर से उदास है, तनाव में है या अकेला महसूस कर रहा है, तो उसे संभलने की ज़रूरत है। हमारे पास कितनी भी बड़ी गाड़ियाँ, पैसे, सपने, ख्वाब क्यों ना हो, अगर हमारे दिमाग में शांति नहीं है तो सब कुछ बिखरा बिखरा लगता है। साइंस भी कहती है कि जैसा हमारा मन होता है वैसा ही हमारा शरीर रिएक्ट करता है। जब आप बहुत तनाव में होते हैं तो सिर दर्द, पेट की गड़बड़ी या थकान महसूस होने लगती है। यानी बीमारी शरीर में बाद में दिखती है, पहले मन में दस्तक देती है। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और आपको सुनवाते हैं एक मज़ेदार गीत।

कार्यक्रम में आगे बढ़ने से पहले मैं आपके साथ एक ज़रूरी जानकारी साझा करना चाहती हूँ। जनगणना 2027 के प्रथम चरण मकान सूचीकरण एवं मकान

की गणना का आयोजन हिमाचल प्रदेश में निर्धारित तिथियों के अनुसार 16 जून 2026 से 15 जुलाई 2026 तक किया जाएगा। इससे ठीक 15 दिन पूर्व यानी 1 जून 2026 से 15 जून 2026 तक स्वगणना का विकल्प भी सभी हिमाचल वासियों को उपलब्ध रहेगा। निवासी se.census.gov.in पोर्टल पर जाकर स्वयं अपनी जानकारी भर सकते हैं। जनगणना 2027 का कार्य डिजिटल माध्यम से संपादित किया जाएगा, जिसके अंतर्गत प्रगणक एवं प्रवेशक मोबाइल डिवाइस अथवा निर्धारित एप्लीकेशन के माध्यम से सूचनाएं संकलित करेंगे। प्रथम चरण में मकानों की स्थिति, परिवार को उपलब्ध सुविधाएं तथा परिसंपत्तियों से संबंधित कुल 33 प्रश्न पूछे जाएंगे। जनगणना अधिनियम 1948 के अंतर्गत जनगणना में दी गई सभी जानकारी गोपनीय होती है तथा इसका उपयोग केवल नीति निर्माण एवं अनुसंधान कार्यों हेतु किया जाता है। जानकारी समाप्त हुई। फिट रहेगा जब शरीर तो खुश रहेगा ये मन, दुर्भाग्य की हर टेंशन जब खुश रहोगे हरदम। खुद से प्यार बढ़ाना है और सेहत को रखना है ध्यान में, तभी तो बनेगी अपनी जिंदगी एकदम आलीशान। अब बिना रुके आगे बढ़ाते हैं अपना ये प्रोग्राम और चलो सुनते हैं एक प्यारा सा गाना आपके नाम।

रोज सुबह तुम जल्दी उठो और करो थोड़ा व्यायाम। ताज़ा खाना खाओ, सेहत बनेगी सुबह शाम। मन की बातें कभी ना छुपाओ, अपनों से तुम बातें करो। फोन को छोड़ो रात के वक्त और चैन की नींद तुम सोआ करो। खूब पियो पानी तुम, लंबी गहरी सांस लो। टेंशन को तुम मारो गोली, हर पल बस मुस्कुराते रहो। जब तन और मन दोनों होंगे फिट, तभी तो लाइफ होगी हिट। चलो बढ़ाते हैं प्रोग्राम को आगे और सुनते हैं एक और गीत।

बॉडी को रखे एकदम फिट और मन को रखे तैयार। बॉडी को रखे एकदम फिट और मन को रखे तैयार। टेंशन को कहे बाय बाय और खुद से करे ढेर सारा प्यार। तो दोस्तों, आज के युवानी कार्यक्रम में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त और आप बने रहिए 103.7 MHz पर FM शिमला के साथ।

इस वक्त आप हमारे साथ और सुन रहे हैं FM शिमला 103.7 MHz पर। अल्फाज कम पड़ जाते हैं जब सामने तुम होते हो, न जाने कौन सी जादूगरी है आंखों से तुम करते हो। कहने को तो दिल मेरा है सीने में, पर धड़प कर बनकर इसमें तुम धड़कते हो। जी FM शिमला पर लेकर आ गए हैं फिल्म संगीत। फिल्म संगीत में ये गीत आप सबके लिए। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

चल मेरे भाई, इस फिल्म का गीत आपने सुना, आवाजें उदित नारायण, सोनू निगम, अलका याग्निक और जसपिंदर नरूला के। इस गीत को लिखा समीर ने, संगीत दिया आनंद मिलिंद ने। आप सुन रहे फिल्म संगीत एफएम शिमला के साथ।

दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे। इस फिल्म का गीत आपने सुना, आवाज़ें लता मंगेशकर और कुमार सानू की, आनंद बख्शी के बोल, जतिन ललित का संगीत। आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत FM शिमला के साथ। लीजिए पेश है आंदोलन फिल्म का गीत, आवाज़ें कुमार सानू और अलका याग्निक की।

अग्निसाक्षी फिल्म के इसी गीत के साथ बस यहीं समेट रहे हैं फिल्म संगीत को। इजाजत दीजिए अलका ठाकुर को जाने की और आप यूं ही सुनते रहिए एफएम शिमला 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। 4:20 मिनट होने को है, प्रतीक्षा कीजिए हमारी अगली उद्घोषणा की।

मीडियम वेव 387.6 मीटर अर्थात 774 किलोहर्ट्स और एफएम शिमला 103.7 मेगाहर्ट्स पर ये आकाशवाणी का शिमला केंद्र है। लीजिए पेश है हिमाचली बोलियों के कार्यक्रम। आइए शुरुआत करते हैं स्पीति कार्यक्रम के साथ।

पंडित नेहरू की निर्वाचित प्रधानमंत्री कार्यकाल लादन श्यांगमा जितोंग सुमग्या गुपचु खोबगे की फिले दकाई दूसिया तेने मई की तरी निशुसाटू नितोंग चुपशील ने लो तेन थिरिंग जून की तरी चू नितोंग निशुसाटू रूपा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल ल श्यांगमा जितोंग गेबग्या गुपचू गुपचू छासासिया तेने वती फिले तेने खोंग ग्याकर की तेने लोग्यू विनांग ने लो तेने मांगशो जे तेने रिंगशो सेवा जो निर्वाचित प्रधानमंत्री छासासिया इ वी तेने गिरी वी फिला तेने खोंग वी तेने मिसे रिंगबो की फिला तेने थिरिंग पूरा प्रदेश वी बीजेपी वी नेता गया छे तेने लेओ फेकाइंग गया तेने खोंग की फिला तेने हवन आयोजित जुए पासिया तेने प्रदेश वी तेने नामला मिनांग मती ठनमो छा दे रासिया तेने खास करके राज्य की मैदानी जगह के रू मी गया गर्मी ने लो तेने गर्मी गर्मी ने लो तेने सहन जोगोसिया उन्नरु तेने थिरिंग मांग ना तापमान शिपचू शेपगे से मा दुखसिया राजधानी शिमला रुवा तेने गिनमो मी गेला तेने ठनमो ने लो सामना जोगोसिया मौसम विभाग से ना तेने नांगमो जून तारीख चुकचिक ने लो तेने मौसम न्यूसिय गुरशी दुखसिया विभाग से ने हिमालय क्षेत्र रू ताज़ा पश्चिम विक्षोभ यौन दे दूसिया तेने वती पिला तेने जून की तारीख चुकचिक से चुंगेला तेने राज्य जगह हलम जो तो तेने छारवा गेपचे दूसिया तेने विभाग से ने तेने ई शांग नीला तेने राजधानी के तेने जिला जीरो कुल्लू चे मंडी चे शिमला चे तेने सिरमौर की जगह हलम जो तो तेने छारवा चे सेरा चे जिलो लुया यौन जो दूसिया तेने वती पिला फिर ऑरेंज अलर्ट जारी हुए पासिया इन बोला जगह जमा गिरो तेने येलो अलर्ट जारी हुए पासिया यम जी इन तो एक लुचुंग बुशिंग ना इन

ता इलुन्यपो के गबला तन थिरिंग के लेरिम निपा दे तने पिटी की होम स्टे की संस्कृति की कोलशन आहिन तने पिटी हिमालय रिगुरु छा दकन सच मेना मोते टांगमुज किंदुसिया तने इरु छार्व मेना मोते न्युकुन छे तने गुंगा मेना मोते टांगमुज जे तने रिंगबो योंगासिया पिटी पिटी रिथन बोचे तने कांगरी कर बोचे तन तांगबो योंग वंबो निंगबो गे छे तने रिक्षु मिरावि फिला मेना मोते केडा योगासिया वती पिला तने लोता पिटी रु तने जमलिंग खाने लुना तेने मेघे खोर्तु मांगो योगासिया पीती रु तेने ना लगी खोर्तु योगन से जू योग मासी योगन गे वेने रंग वेवन मीघी दूर देखासिया तेने वोतेसने तेने पीती ने होटल चिक नीज मैंने मेकासिया होम स्टे से वोतेसने मेकासिया तेने होम स्टे की तेने कॉन्सेप्ट तेने पीती रु मीनांग मत तिंग लगे दूसिया तेने पीती होम स्टे के मीनांग मत देचे वाला मीनांग मत खुद मो योगासिया खोर्तु योंग तेने कुकअप मीना मत यापोज थपकासिया पीती मी गि सतांग थूंदांग देतांग तना योगासिया उजिर रिक्शुंग चे लुक्सो गेला एक्सपीरियंस तो ना योगासिया होटल के चौक से मान दल तेने होम स्टे गिरो जिमे गिने बो दे चलो सचे सना योगासिया लेव पेट्स ना लेव यतो फेना योगासिया तेने ची यिन ना तेने खांग यिन ना तेने उजिर रिक्शुंग के कोला माश ये लोसिया तेने हाने लो तेने मी गया डन छे जो छल पोचे मीना पीतिया गिवे थे लुक्सू जी खिंदूसिया तेने सू ये ना या ल माल डोन मी तो छल फोकासिया तेने ना ले ये ना तेने खोर तो योंगे छे तेने सोंगबा योंगे छे यहाँ था रिंगो ने लो छेंजल ने जल योंगे आ रहा होते कि चुंसुन ते खोब गिल खंब लो भेज लो मीना मत शे वो ने बोपासिया तकसा ही ना तेने पीती रो तेने ये लुक्सो दे तेने तकसा पीती यूल मांग तो ले ना योगासिया तेने होम स्टे के तेने पीती रो तेने सतक पर्यटन लेने बढ़ावा ते ना कि फिल्म मीना मत खाक छमो जिकीन दुखसिया तेने होम स्टे योगेंगे तेने खोर तो योगेंगे मीना मत देमो चेज लो तेने एक्सपीरियंस या पोतियासिया तेने इन लो तेने लोकल मी गे लेने डायरेक्ट खेपसांग चे थोपतांगे व थोपकासिया होम स्टे की गुन लो तेने मी गेला मूला या पो योगासिया तेने वो तेने रंगे खम्बा लतांग ना छे टू गे लोपजुंग लतांग ना छे बोलो तेने मी गे वि पेंजो ल मीना मत या पो चेज शांदे जोसिया पीती रु होम स्टे गेरु दे ना लेने किशो छे देशो दे तेन ची योगा पासन तेने पीती विसा छे थूंजे गे छे तेने पीती लुक्सो तना दे इंदुसिया तेने फितन योगन मी गेला तेने उजी पीती वि देतांग सातांग थूतांग गे वतना योगा से पीती रु खंबिर जोपन तोपजे गे थुप इना छे यहाँ टीमो इना छे साजा छे सांबा छे सांबी थुपा रंग तेने पाक रंग होते गे सना वा योगा सिया तेने खोट योंगे फिल खुक मीना मत याकू इंदुसे पीती वि रिक्शुंग छे तेने वाई गि दुचेंगे छे शिंगले पेतांग रंग वो के कोल जंगना योगासिया शिंगले सुख से पेतु पोते तना योगासिया पीती गंदगी ने बुद्धे चुलो तेने लाभ तना योगासिया पीती वि कल्चर तना योगासिया इजु टुपा एक्सपीरियंस के लिए तेने खोट योंगे मी गे छे तेने हो स्वयं जिमे गि जुंग दु तेने डेलो मीना मत याको जोसिया

होमस्टे की फिलहाल तेने पिटीवी खंबे के दांत तेने होमस्टे की लुक्सो दे मिनामो ते थार दे गान सोले पिटी खंबे के तेने मेन्यू से सोसो जी गिफ्ट उसे तां बी वी स्टाइल चीजे तक्सां दांत तेने मॉडर्न स्टाइल ने डेज लो गिफ्ट उसे तेने वाते ने लो पिटी खंबे मांग छे तेने थालवा छे दो छे शिंग गी गिफ्ट का से चिले से ने ई उजी दी पिटी नमशी की फिलहाल मिना या पो का से चिले से पिटी मिनामो ते चांग मो योगा तेने पिटी वी दक्सां आ पिटी होमस्टे हलम मांग छे तें तां बी खंबे योगा दा योगा से तां बी खंबे ले या पो छे जे मेंटेन जे जलो खोरदो योंगा गेलो फेना या पो योगा से चिले से ने इनेल उजी री पिटी वी खा तां बी खंबे गे छे चला ग्यारा होते गेला कातर जो नाजिंग जे हिंदू से तेने पिटी रो तेने होमस्टे ले थार खेल चुकन दिला डेलवा मांगशो जोन दे तेने आने फोमो गे हिंदू से चिले से ने यूल खार हिना तेने आने फोमो गे नांग ये सांगमा जोना हिना छे तोपचो योना हिना छे यहाँ छिगल गिनी लाभ ताना हिना छे ची ना खांगी थोले ना आने फोमो गे लेवा मा फेगा से तेने ई आने फोमो गी फिला तेने कुकब मिना मत सुमा छे याकू जी का हिंदू से तेने होमस्टे की फंतो ची ची ची पासन तेने इरु खोर तु योंग मी गेल ते यहाँ इंची कल से रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म वा चुआस तेने चिले से ख्वागे वागी दे ताने तेने उजी पीती ने तंग छे वागे खबी ने तंग के थोड़ा से पीती रु मेसे तंग छे खावो दुख से तेने इक इन बोलो तेने छू रंग होते के चुचे वा खावो दुख से ख्वागे हाँ ख्वास तेने इन बोलो उजी पीती रिक्शू छे लुक्सो गेला तेने ख्वागे घुशब या पुआस तेने इक इन्या बोलो तेने पीती रो तेने जमलिंग खावा खासा ने मी मांगबू से योगा से तेने होती मी गेल तेने खम्बा चिचिक तो थूक सो तेने खुआ गे फासू लाभ रंग होते के तांग जिलो तेने चिक तांग चिक रिक्शुंग रंग रुक्सो गेल तेने हाँ कोश खुशब जो आसे तेने टूरिज्म दांग तेने के तुल मीनांग मत तेने मांग दू डो आसे होते होते ने लो तेने सतक विकास योग जो मीनांग मत खा छम योगा से चिले से पीती ला संग मचे तेने देमो पोर्से तेने वा गि प्रशासन छे तेने गुजरी मी गे छे तेने होम स्टे रहा यहाँ रेस्टोरेंट योगन रहा होटल योगन मी गया रहा तो अले जोम जिलो तेने लेवा यहाँ पो फेन नियबो फेन ना तेने लेवा नियबो फेचो मिना मते खाचमो योगा सिया तेने यम जी इन तेने एक कबलो पिटी लुजो नियबो शिंगे ना इन

Ta ilu nyembo ki gabla tringki lerim sumba de tene. Gosuna yin ten tringki lerim sumba de mina mo de tonda chemo che ten chiso ki pila mina khak chemo yo kon yojina ji ki ko la shena yin. Ten ii yojina ki min la beti bachao beti padao yojina siya. Ii yojina sarkari yojina chikpo ji mandala nyembo la tene chiso nang du gyurwa shuk chemo ji kyung na yojina ji ka yin duk siya. ई योजना जनवरी तारीख निशु चांगी नितोंग चोयंग लथने गेलखप के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की ड्यू ने तेने हरियाणा की पानीपत से यूल दो कोसुक हिंदू सिया तेने न्यम्पोला महिला एवं बाल विकास मंत्रालय छे शिक्षा मंत्रालय छे स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की न्यम्पो थुल जिलो तेने इलो कोसुक हिंदू सिया ई विमयूल सोवो दे तेने लिंग भेदभाव लुंग दुताना हिंसिया न्यम्पोला फोमो गेल लोबजुंग लथने गेलखप की नांगदो यरके ताना हिंसिया ई केंद्र स्पॉन्सर्स वेपन योजना ची खींदू सिया तेने ई वी ग्यू नेलो गेलखब की जिला तोले लतेन संबाल वर्टिकल मिशन शक्ति की ग्यू नेलो तेन मी गेलो रोकलम थवा सिया ई योजना की ग्यू नेलो सरकारी एजेंसी गे छे या सिविल सोसाइटी गे छे मीडिया गे छे तेने मीमांग ग्यारंग तोरे लो फेल जे नियम बोलो तेने चिसो के नांग दू तेने लिंग भेदभाव ल न्यूंग दू ताना छे नियम बोलो फोमो गेलो खुशब तेना छे तेने खुकब तेना छे तेने खोंब की थोपतांग गेलो यरके ताना की फिला तेने लेओ फेका सिया gelkhab la yerke tangna ki phila tene pomo gel lo jung ter she yela khenna tene khomba gel sungyop chuje de mina mate kha chmo yo pa sia chile sene uji chi so ki nang do tene lo mangbu ji ki phila tene pomo gel bed bau thwa khawo mangbu chung wa sia nge bolo pomo yo ne pomo lang gone yin sia sia tene pomo gel chi so nang do tal ji pon na che tene lo jung mala wal pon na che tene yang school la tang na tene logic lo ni ga lo ton ji kyo na na che khambar lewa pe chu na che tu zie pe chu na ra ho tu tu pa tene कांगिन दारे व चुंगे हिंदू सिया तेने वती पिला तेने इन नेतां गेले तेज लो तेने सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना ल तेने कोसु कोई हिंदू सिया ई योजना तेने पोमो की फिल का नाजिंग जी हिंदू सिया ई योजना की ग्यू नेलो पोमो गेलो सुंगे पाथब का सिया पोमो गेल लो जुंग आती आसिया तेने पोमो गेल खुकब जे तेने खोंबा की थप तांग गे बातें खोंबा गेल थप का सिया ई योजना की थोने लो चिसोक नांग दु तेने लोन लोन शुक्षे मुझे भन्ना इंसिया नियम बोलो तेने पोमो गेला तेने nga le na uji ri gyal khap ki na do phomo yone phomo long gone in si ka se ani ami thopal tu yos na phomo yone se ta na ra ngu tut bale pa ka se tene uyi ki khilap la tene i gi khilap la do na in si nya bola tene i bi gyun ne lo tene phomo mang thu ta la school la chuk na che phomo ge lo lob jung la phomo ge bi lob jung la yer ke ta na ki phila tene mena ma ti khomba ka khaw gure in du sia i yojana ki thon

ये आकाशवाणी शिमला टाइम हुआ 4:50 और ये टाइम सो मारे अपने महाशिव कार्यक्रम रहा सभी सुनने वाले के मेरा नमस्कार। देखो श्रोताओं आजकल है तो धीरे धड़े सो और खूब दौं तो अपने लागे रो है इसे दा सभी का ज़्यादा जरूरी तो हम के अपने आपा का गर्मी का बचावना सो और मारे शरीर दा पानी की कमी ना हो ज़्यादा दौ ना लागो दवा साथी या गर्मी साथी हमें बीमार ना हो क्योंकि ज़्यादा गर्मी रहा हमारे स्वास्थ्य पांदे सीधा असर पड़ो सो तो इतने हम अपने स्वास्थ्य रा खास ध्यान रखने री जरूरत हो इतने री ते हमें ज़्यादा का ज़्यादा पानी पी सकूँ और अपना जो काम काज सो से दोथी बेड़े री जो शरीर हो तो बढ़िया तरीके साथ अपना काम निपटाए सकूँ। देखो आजकल जो जनगणना 2027 इतरा पहला चरण शुरू होगा इतने का जो पहला चरण सो सभी का पहले मकाना रे जो सूचीकरण सो मकाना रे जो गणना सो इतरा आयोजन हिमाचल प्रदेश का जो निर्धारित डेटा सो तितर साबे 16 जून 2026 का 15 जुलाई 2026 तई किया जाना और इतने का ठीक पहले जो 15 दिन यानी कि 1 जून 2026 का 15 जून 2026 तई स्वगणना रा विकल्प भी हर हिमाचलवासी के उपलब्ध रहना। इतिर निवासी sa.census.gov.in जो पोर्टल असो इतने पंदे अपनी जानकारी अपने आप भरी सको। जनगणना 2027 रा जो फार्म सो ए डिजिटल माध्यम का ही पूरा किया जाना जनी रे अंतर्गत जो भी प्रगणक होने या प्रवेक्षक होने मोबाइल साथी या निर्धारित जो एप्लीकेशन सो इतरे माध्यम का तीना सूचना इकट्ठी करनी। पहले चरणा दा मकानरी स्थिति परिवार का जो उपलब्ध सुविधा सो परिसंपत्ति सो इतने का संबंधित 33 प्रश्न पूछे जाने। जनगणना अधिनियम 1948 रे अंतर्गत जनगणना दा दे गए जो जानकारी से गुप्त ओ इतरा उपयोग सिर्फ नीति बनाने और अनुसंधान रे कामारी ते ही किया जाओ सो तो हर एक हिमाचलवासी इतने दा भाग लो सको और स्व जनगणना दा अपने जानकारी अपने आप भरी सको। ये तो थी थोड़ी जी जनगणना री जानकारी। एवं सुन लो मैं एक लोकगीत तो आगड़े करूँ मैं तेई कुछ गल।

नरेश भारद्वाजरी आवाज़ दा ये शुणा तुमे लोकगीत। एबे थोड़ी जी हम गलबात करनी जो संस्कार सो से मारे जीवना रा आधार सो।

संस्कार हर एक मानव जीवन रे अमूल्य धरोहर सो जो तेस के बढ़िया और अच्छा इंसान बनाओ सो जिसे कसी गौर और टें के नींव री जरूरत हो गौर आ री नींव बढ़िया और पाकी हो तो से भवन बढ़िया टीको तीसा ही एक सफल और आदर्श जीवन जीवने री टें के जो ये संस्कार सो अच्छे संस्कार यो बहुत ज़्यादा जरूरी हो जे मानू रे जीवना दा संस्कार ना हो तो तीसरा ज्ञान धन दौलत और शक्ति अपने आप ही कोई महत्व नहीं रखो। संस्कार हमा के बचपना का ही मारे परिवार का मारा समाज स्कूल इत्था हर जगह का हमा के मिलो सो मारे आमा बापू हमा के प्यार सम्मान और अनुशासन खेयो सो माठे का जहाँ जो हमें अपने परिवार दा अपने आमा बापू या अपने गौरारे बड़े जने साथी रहू सो तो से वो हमा के हर बात दा कुछ ना कुछ सीख दियो सो। तीसा ही स्कूल दा मारे जो गुरु हो से वो शिक्षा साथी साथी नैतिक मूल्य रा ज्ञान भी हमारी तई दियो सो और समाज का हमा के मिली जुली रोने एक ही दूजे री सहायता करने एक ही दूजे री तई दया भाव रखने री प्रेरणा दियो सो। ये सीख आगू चाले रो मारा जो व्यक्तित्व असो ते तेरी तई सहायक ओ सो। अच्छे संस्कार मानु के सच बोलना बड़ेरा आदर करना माठे री तई प्रेम भाव रखना हर एक काम ईमानदारी साथी करना तई बुरे टाइम दा भी सही रास्ते पंदे चलना ये सब चीज़ा हमा के संस्कार साथी ही आओ सो। संस्कार हमा के ये बताओ सो कि जीवना दा सिर्फ सफलता लौनाई खास नहीं हो सो बल्कि जो सफलता हो सो से हम सही तरीके साथी लौने चाहिए तेते दा ईमानदारी तेते दा मारी कड़ी मेहनत और बड़े बुजुर्ग का आशीर्वाद जरूर होना चाहिए। आज के टाइम दा विज्ञान और तकनीकों साथी जो मारा जीवन सो से बहुत ज़्यादा आसान बनेगा हमें नई नई सुविधा रा उपयोग करूँ पर जे देखो इस तकनीक का साथी संस्कार रा विकास ना हो तो जो मारा समाज सो से कई तरह री समस्या का गिरी सको। हम आधुनिकता साथी साथी अपने जो संस्कार और नैतिक मूल्य सो इते के भी बनाए रखना पड़ो तो ही हमें आगू विकास करी सकूँ। मारी संस्कृति हमेशा का ही संस्कार पांदे आधारित रहे सो भारतीय जो परंपरा इतदा आमा बापू गुरु अतिथि सभी के खास सम्मान दिया गया ये संस्कार हमा के पूरी दुनिया दा एक अलग ही पहचान दियो सो हमें अपने एक अलग जगह अपने संस्कार री वजह का बनाए सकूँ। संस्कार सिर्फ मानू ते ही सीमित नहीं हो यो अच्छे संस्कार वाले नागरिक एक अच्छे और मजबूत राष्ट्र बनाने दा भी अपना सहयोग दियो सो। जे हर मानू ईमानदारी साथे जिम्मेदारी साथे और सद्भावना साथे अपने कर्तव्य रा पालन करो तो मारा देश तई ज़्यादा आगू बढ़े सको। एक चीज़ जो ये संस्कार एक ऐसी किताबा का नहीं सीखी सकूँ हमें बल्कि इना के अपने व्यवहार दा अपनावना पड़ो जो हमें इना छोटी छोटी बाता बड़ेरा आदर सच बोलना सम्मान करना ये सब चीज़ा अपने व्यवहार दा लेनी तो हमें अपने आप अपने व्यक्तित्व दा निखार ले सकूँ और ये मारे जीवन रा सही आधार भी बनो सो और समाजों के सही दिशा दियो मारे राष्ट्रों के सशक्त बनाने दा भी सहायता करो सो। हमें हमेशा अच्छे संस्कार अपनाए रो अच्छा नागरिक बनने की कोशिश करनी चाहिए ताकि अपने देश समाज परिवार सभी रा भला हमें कर सकूँ और आगू बढ़ सकूँ।
ये तो थे थोड़ी जी गलबात। एबे किरण भारद्वाज और लता चंदेलोरी आवाज़ अदा एक बढ़िया जा।

बात करने स्वच्छ भारत अभियान ये जो अभियान से साफ सफाई का संबंधित से जो स्वच्छता से इमारे जीवनारी ते बहुत ज़्यादा खास हो इना सिर्फ हमा स्वस्थ रख बल्कि मारा जो नेड़े तेड़े रा वातावरण हो तेते के भी सुंदर और सुरक्षित बनाओ सो ये तेरे देना दा रख दे ही 2 अक्टूबर 2014 के स्वच्छ भारत मिशन जो इतरी शुरुआत करे गए थी। इस मिशन रा खास उद्देश्य सो मारे देशा के साफ सुथरा बनाना खुले दा पानी किनारे नांटे होना और मानु के स्वच्छता रीते ही जागरूकता बढ़ाना ताकि हर एक मानु साफ सफाई रा मतलब समझी सको जो मानु साफ सुथरा रहना तो तीसरे नेड़े तेड़े कोई भी बीमारी नहीं आओ सो ये जो अभियान सो इतरे तहत गाँव दा और शहर दा शौचालय बनाना सो और मानु के स्वच्छता रा महत्व बताना मानु के स्वच्छता रीते ही जागरूक करना सो स्वच्छता रा सीधा संबंध मारे स्वास्थ्य साथे हो गंदगी की वजह का कई तरह की बीमारी फैले जाओ जिसे डेंगू आ मलेरिया हैजा टाइफाइड जे हमें अपने घर स्कूल और नेड़े तेड़े रे जो इलाके हो सो तीना साफ सुथरे रखूँ मैं तो काफ़ी हद तई जो यो बीमारी हो सो इतना हमें बची सकूँ बोला भी जाओ ना स्वच्छता ही सेवा हो सो जो हमें स्वस्थ होने तो हमें अपने समाज री ते भी योगदान दे सकूँ और जो स्वच्छता सो ये सरकार रे प्यार सको पूरे तरीके का स्वच्छ नहीं हो सको मारा देश इतरी ते के हर एक जो मानु सो तीनारा सहयोग बहुत ज़्यादा जरूरी सो जो हर एक नागरिक जागरूक होना से ओरा पूरा के थी कूड़ा ना फेंको हर के थी गंदगी ना फैलाओ जो भी कूड़ा हो सो से कूड़ेदान आदा ही पाना चाहिए और प्लास्टिक आरा कमा का कम प्रयोग करना चाहिए अपने आस पास रे जो मानु सो तीना के भी स्वच्छता रीते ही हमें प्रेरित कर सकूँ सभी का जाते जो पढ़ने आए छोटू सो से वो इतना खास भूमिका निभाओ सो से वो हमारे पर्यावरण का ज़्यादा का ज़्यादा डाल बूट लाने री ते हमें तीना प्रेरित कर सकूँ और साथ ही साथ ही कई तरह रे जागरूकता अभियान साथ ही भी हमें पर्यावरण बचाने का सहयोग दे सकूँ यो माठे माठे प्रयास हो पर इना माठे माठे प्रयास साथ ही मारे समाज का एक बड़ा बदलाव आए जाओ सो सिर्फ सरकारी योजना ही नहीं सो है बल्कि एक जन आंदोलन सो जो हर एक मानु इतने साथे जुड़ना तीना स्वच्छता रे आदत बनाने तो हमारा देश सुंदर भी होना स्वस्थ भी होना और विकसित भी बनना सो तो हम सभी इतरी तई अपने आप एक संकल्प लौना पड़ो आपू पहले प्रेरित होना पड़ो तो हमें दूजे मानु भी जागरूक कर सकूँ और अपने देश अपने पड़ोस अपने जिले गांव सुंदर और स्वच्छ बनाए सकूँ। ये तो थी स्वच्छ भारत अभियान री जानकारी एवं बारी असो खबर सारी मारी पहली खबर असो अंतर्राष्ट्रीय शिमला ग्रीष्मोत्सव दा आज का मिनी बैडमिंटन चैंपियनशिप शुरू हुए चैंपियनशिप रा शुभारंभ उपायुक्त अनुपम कश्यप किया ए चैंपियनशिप अंडर 11, 13 और 15 आयु वर्ग रे छोटू और छोटी रीते ही आयोजित की जाया करो इस प्रतियोगिता दा शिमला जिले का लगभग 180 प्रतिभागी हिस्सा लो आ करो इस मौके पांदे उपायुक्त ने बोला कि पढ़ने वाले छोटू रजीवना दा पढ़ाई साथ ही साथ ही खेल भी खास जगह रखो इस प्रतियोगिता रा आयोजन शिमला जिला बैडमिंटन एसोसिएशन कराया करो। मारी अगली खबर सो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भारत रे सभी का लंबे टाइम ते सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बने गए तीने 26 मई 2014 के पदारी शपथ लाए थे और पंडित जवाहरलाल

नेहरू जी रिकॉर्ड बिटी ने जोड़े गया जिन्हें पहली बारी 13 मई 1952 का निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप का शब्द लोए थे और 27 मई 1964 तई सेवा की थी। पंडित नेहरू रा निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप का कार्यकाल 4398 दड़े रहा था। 26 मई 2014 का आज 10 जून 2026 तई प्रधानमंत्री मोदी रा लगातार कार्यकाल एबे 4399 दड़े रहा। ओए गुआ जनी साथी से भारत रे इतिहास दा सभी का लंबे टाइम तई सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बने गए। अगली खबर असो जो प्रदेश इतदा तेज गर्मी रा दौर जारी असो खास करी के मारे राज्य रे जो मैदानी इलाके इतदा जोरदार गर्मी रा सामना करना पड़ो उना दा आज ज़्यादातर जो तापमान असो से 42 डिग्री का ज़्यादा दर्ज किया गया। राजधानी शिमला दा भी माणु के दड़े रे टाइम में जोरदार तपश रा सामना करना पड़ा। इस बीच मौसम विभाग 11 जून का राज्य दा मौसम रे बदलाव रे संभावना जताए असो। विभाग के रेसाबे जो हिमालय क्षेत्र सो इतदा ताज़ा पश्चिमी विक्षोभ आना इतरा प्रभाव 11 और 12 जून के राज्य रे ज़्यादातर जगह दा बरखा होने। विभाग के इन दोए दड़े दौरान राज्य रे 4 जिले कुल्लू मंडी शिमला और सिरमौरा दा कुछ जगह पांदे अंधड़ ओले पड़ने और 40 का 50 किलोमीटर प्रति घंटे री रफ्तारा का आंधी तूफान चालने रा ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया सो। विभाग ने इस दौरान दूजे जिले के भी येलो अलर्ट जारी किया सो। ये तो थे खबरसार। एबे जानते जानते एक बढ़िया जा लोकगीत।

महास्वी का रिकम अभी आपने सुना। आकाशवाणी शिमला से अभी आप सुन रहे हैं हिमाचली बोलियों के कार्यक्रम। लीजिए अब पेश है किन्नौरी कार्यक्रम।

नीति निर्माण रंग शोध कमानु तांगेस लांजनियो। बैसे दो तांगेस ख्याजता जनगणना कर्मीगा मराव किमो बन्ना दोक सही रंग पूरा जानकारी रनिम ग्यामी। किमानु इत जिगिज भागीदारी देशु दम भविष्य रंग विकासु योजनागनु मजबूत दुर्यामु खास योगदान निजनियो। भारत देशु ख्याजता विकास योजना गनु जुर्यामु सही आंकड़ाओ जरूरत निजनियो। जनगणनाओ ची उनशी जू जानकारी गा आधार देन जू सुकूले अस्पताले सड़के तुमिंग ती गा बिजली आवास रंग दोग जू कई दोग सुविधा गनु योजना गा जुर्यासनियो। दो तंग एस दोक जनगणना सिर्फ सरकारी कमंग मनी बल्कि देशु विकासु आधार निजनियो। बैसी जनगणनाओ आंकड़ाओ उनशी जू जानकारी जू तेल अंश की हम जगो दोक तेजा सुकूले नु जरूरत दू दोक हम अस्पताल हची दिया दू हम जगो दोक सड़के रंग परिवहन सुविधा का हची दिया गा दू हम वर्गे नु तंगेस खास कल्याणकारी योजना का शुरू लनिक्स लनिम गया मिक्सियारियो जू चोई जनगणना कुमो बचनियो। हो जी जनगणना सिर्फ दोक मीनू संख्या नरमी कमंग मनीजनियो बल्कि देशु परमाणु सोमजनु रंग भविष्य दिशा तेलनु जरिया निजनियो। बैसी कशा चोकेनु जनगणना निशाजार स्थाईसु सफल जुर्यामु मराव योगदान रनिम ग्यामिंगनियो। सही जानकारी रनन जनगणना पंग सफल जुर्यामिक सिया मराव भागीदारीस विकासु न्यूक ओम खुलेचनियो। आई दो ईद सशक्त भारतु निर्माण हचिनियो। वैसे ही महात्मा गांधी स्ली लोशित की भारतु आत्मा दो देशानुकुमो भोसेचरियो। जनगणना दो देशानु कस्बा रंग शेरनु असली तस्वीर ओम्सकतनियो। जूस तोक विकासु लाभ हर म्यू दंगस्तंग पचनियो। वैसे जुदतो के सांदा जानकारी कच्चा देमा इत की थंगली रोंचे रोंची जू की थंग।

बस ये किना घिथंदा रोंचेश कलाकार तो किएश गोविंदा सी रंग कमल दारा। बस ये हुन बत्याशे जोर समाजू विकास रंग सशक्तिकरण दंग सीधा जुड़त्या यानी कि महिला मंडल रंग मनारिंग जनु बारे। बैसे मनारिंग जा हमली पेरंग समाज रंग राष्ट्र आधारशिला रंग कशानु समाजू कुमो मनारिंग जानु खास जगा निजनी हो। ईत मिनरिंगजी ख्याजता पेरंगू ख्यालताज छांगानु दम संस्कार रंज आई समाजू ओम्स त्वनु आनेनु योगदान रंजनी हो। तोरो मनारिंग जा तालीमु कुमो स्वास्थ्य रिमानु कामा बता व्यापार खेल रंग सरकारी सेवा का रंग एक हर क्षेत्र कुमो ओम्सा दोनी हो। महिला मंडल मनारिंग जानु ईत हुए समूह निज की दंग मनारिंग जा एक हचिस अने गानु अनुभव साझा लजनी हो। आई न्यू न्यू बतंगा सीखेसनी हो। महिला मंडलों उद्देश्य ख्याजता मनारिंग जानु जागरूक आत्मनिर्भर रंग आत्मविश्वासी जुर्यासनी हो। देशानु कुमो महिला मंडलो भूमि आयली तोक खास निजनियो। युगानु माध्यम सी ख्याचता मनारिंगजा स्वास्थ्य पोषण स्वच्छता छांगानु तालीम रंग सरकारी योजनागानु जानकारी पोरचनियो। महिला मंडल मनारिंगजानु अनु अनु दोक समस्या गंदेन खुलल्या चर्चा।

बस ही दौलतपति किना रोंची शेष नियो कचता देमा तो रोक तू परदेश खबर सारे लिखा शेतो जुली किना नो रिंग तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तोरो भारत चोकू बोधी समय स्तंग सेवा लंस्या निर्वाचित प्रधानमंत्री हचिशीत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी निजो टूक मई निश हजार सपुमिया जुपादू शपथ उंशी तोच नियो मोदी जी पंडित जवाहरलाल नेहरू रिकॉर्ड तोड़ाशीत हलिया जवाहरलाल नेहरू 16 मई 1952 म्या निर्वाचित प्रधानमंत्री रूपो शपथ उंशी तोच नियो आई निजो 30 मई 1964 संग सेवा लयशीत पंडित नेहरू निर्वाचित प्रधानमंत्री रूपो कार्यकाल प हजार सुमराव पनीजाव सारा दियारू तोसेय दंगची निजाव टूक मई निश हजार सबम्या च तोरो साय जून निश हजार 26 तंग प्रधानमंत्री मोदी लगातार कार्यकाल हुन प हजार

उमराव पनीजो सोस्कुई तैयारू हचिशीत जोर आने भारतु इतिहासु कुमो चोयकु लंबा समय स्तंग सेवा लंचिया निर्वाचित प्रधानमंत्री हचिशीत जू मजो नरेंद्र मोदी कोचंग प्रधानमंत्री रूपो चोयकु कार्यकालु कीर्तिमान स्थापित लन्नु खुशी रंग अनेनु लमस दीर्घायु कामनाओं कुमो तोरो प्रदेश पर कुमो भाजपा नेतागा रंग कार्यकर्तागनु कोचंग हवन यज्ञ आयोजन ली लंशीत आई खबर तो प्रदेश कुमो दोक जू भीषण गर्मी दोक दौर वाली दो हाजिस दुनियो खासकर राज्य कुमो मैदानी इलाका नु कुमो मीगनु वाल गर्मियों दोक सामना लानी पड़े दुनियो ऊनो कुमो तोरो तापमान निच निचाओ डिग्री काली बोधी दर्ज लंशीत राजधानी शिमलाली मीगनु लाए दोक वाल दोक यूनेगु बोधी तपंगस जू राकू सामना लानी हचोनियो जू मजो ख्याचता मौसम विभागस नसुम सिही जूनस राज्यो कुमो दो मौसम कुमो बदलाव बनु संभावना ली जत्याशित विभाग अनुसार हिमालय क्षेत्र कुमो ताजा जू पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हचिशित जू वजेस सिही तरंग सोनिश जूनु राज्यो कुमो कई जगानो जू ग्वेनिंग बतोय जू निश्तियारु कुमो पजिला गानु हलियाजोर कुल्लू मंडी शिमला रंग सिरमोरो दो कई जगानो अंधड़ ओलावृष्टि रंग निशनिजा रंग निशनिजो 100 किलोमीटर प्रति घंटा रफ्तारस जू आंधी तूफाने चलनुली संभावना जत्याशितनियो विभाग जू दो रंग दो कई जिला गानु तांगेस येलो अलर्ट ली जारी लाइशीत बैसी जुदा तो के खास खास खबर सार हूं युम से बरंग इत आई गिथंग रोंचे रोंची।

हिमाचली बोलियों के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे किन्नौरी कार्यक्रम। आइए अब सुनते हैं लोकगीत। शुरुआत करते हैं गोपाल शरण ठाकुर के गाए हुए इस लोकगीत के साथ।

0: अभी आप सुन रहे थे लोकगीत, ये आकाशवाणी का शिमला केंद्र है। 6 बजने को हैं, थोड़ी ही देर में प्रादेशिक समाचार प्रसारित होंगे, जिन्हें आकाशवाणी के हमीरपुर और धर्मशाला केंद्रों के साथ साथ FM शिमला 103.7 MHz, मोबाइल ऐप और रेडियो की DTH सेवा पर भी सुना जा सकता है।
1: बेटा, मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया, देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर AC चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में 2-2 फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? 0। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
2: PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in पर।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राकेश शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बन गए हैं। प्प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 26 मई 2014 को पद की शपथ ली थी। उन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू का रिकॉर्ड तोड़ दिया है, जिन्होंने पहली बार 13 मई 1952 को निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली थी और 27 मई 1964 तक सेवा की थी। पंडित नेहरू का निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में कार्यकाल 4398 दिनों का था। 26 मई 2014 से आज 10 जून 2026 तक प्रधानमंत्री मोदी का निरंतर कार्यकाल अब 4399 दिनों का हो गया है, जिससे वे भारत के इतिहास में सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बन गए हैं। इस बीच नरेंद्र मोदी द्वारा निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में सबसे लंबे कार्यकाल का कीर्तिमान स्थापित करने की खुशी और उनकी दीर्घायु की कामना में आज प्रदेश भर में भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं द्वारा हवन यज्ञ का आयोजन किया गया। सोलन में भाजपा शहरी मंडल द्वारा इस मौके पर आयोजित हवन यज्ञ के बाद भारत सरकार में सहकारिता राज्य मंत्री कृष्णलाल गुर्जर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समक्ष कई विकराल समस्याएं हैं, लेकिन उन्होंने सफलतापूर्वक देश को इन समस्याओं से उबारा।
1: आज आदरणीय नरेंद्र मोदी जी देश के सबसे लंबे समय तक रहने वाले प्रधानमंत्री का रुतबा उन्होंने हासिल किया है और इन 12 सालों में आदरणीय मोदी जी ने देश को जो आर्थिक तौर पर मजबूत किया है, देश की सांस्कृतिक विरासत को मजबूत किया है, ये अपने आप में एक मिसाल है, अद्भुत है, अद्वितीय है, अतुलनीय है। ऐसा प्रधानमंत्री जिसके हाथों में देश का खजाना भी सुरक्षित है, देश की सीमाएं भी, तो ऐसे प्रधानमंत्री के लिए आज पूरे देश मंदिरों में भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऐतिहासिक कार्यकाल के उपलक्ष्य में नादौन में भी भाजपा सांसद प्रोफेसर सिकंदर कुमार के नेतृत्व में हवन यज्ञ का आयोजन किया गया। सिकंदर कुमार ने इस मौके पर कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को विकसित भारत और आत्मनिर्भर भारत बनाने का जो महान संकल्प लिया है, वो आज धरातल पर सही साबित हो रहा है। इस मौके पर बड़ी संख्या में स्थानीय लोगों और भाजपा कार्यकर्ताओं ने भी हवन यज्ञ में हिस्सा लिया। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष राजीव बिंदल ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीते 12 वर्षों में देश ने अभूतपूर्व आर्थिक प्रगति की है और करोड़ों गरीबों को विकास की मुख्यधारा से जोड़ा गया है। बिंदल ने आज नाहन में कहा कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत की अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा नई ऊंचाइयों तक पहुंची है और आतंकवाद, उग्रवाद और अलगाववाद के विरुद्ध निर्णायक कार्रवाई कर देश को अधिक सुरक्षित बनाया गया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के सफल 12 वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य में विश्वास के विकास के 12 वर्ष, गरीब कल्याण के 12 वर्ष कार्यक्रमों में हिस्सा लेने के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा 12 और 13 जून को शिमला के 2 दिवसीय प्रवास पर रहेंगे। पंचायत समिति नाहन के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद पर भाजपा ने फिर से कब्जा जमा लिया है। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद के लिए आज हुए चुनाव में भाजपा समर्थित रमेश चौधरी अध्यक्ष और माया देवी को उपाध्यक्ष चुना गया। नाहन के एसडीएम राजीव सांख्यान ने बताया कि चुनाव में 15 में से 11 सदस्यों ने हिस्सा लिया और चुनाव सर्वसम्मति से हुआ।
2: पंचायत समिति नाहन के लिए अध्यक्ष पद के लिए श्री रमेश कुमार करकरण ग्राम पालियों को निर्विरोध निर्वाचित अध्यक्ष किया गया और उपाध्यक्ष पद के लिए माया

0: देवी पत्नी अशोक कुमार ग्राम बलसाड़ ग्राम पंचायत कौलामाला भुगतो पंचायत समिति नाहन का निर्विरोध उपाध्यक्ष निर्वाचित घोषित किया गया और उसके बाद विधि के अनुसार दोनों अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को संविधान और सत्यम शपथ दिलाई।
1: इस मौके पर नव निर्वाचित पंचायत समिति अध्यक्ष रमेश चौधरी ने कहा कि वे सभी सदस्यों के सहयोग से विकास कार्यों को आगे बढ़ाएंगे। उप मुख्य सचेतक केवल सिंह पठानिया ने कहा है कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कांगड़ा के गग्गल हवाई अड्डे के पास सरकारी भूमि पर बसे दुकानदारों और अन्य काम करने वाले 113 परिवारों को 16,76,00,000 रुपये की सहायता राशि मंजूर की गई है। उन्होंने कहा कि ये पहला ऐसा मामला है जहां सरकारी भूमि पर कारोबार करने वालों को सरकार भूमि अधिग्रहण करने के लिए सहायता राशि प्रदान कर रही है। पठानिया ने कहा कि सरकार का उद्देश्य गरीब और ज़रूरतमंद वर्गों के लोगों की मदद करना है ताकि वे अपनी आजीविका कमा सकें। उन्होंने ये भी कहा कि इन परिवारों की मदद कर मुख्यमंत्री ने गरीब लोगों के प्रति अपने संवेदनशील और मानवीय दृष्टिकोण को दर्शाया है। सर्वोच्च न्यायालय ने लंबित मामलों को आपसी सुलह और मध्यस्थता के माध्यम से निपटाने के लिए गूगल फॉर्म माध्यम से ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 31 जुलाई कर दी है। कुल्लू जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव विशाल तिवारी ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय में लंबित मामलों के पक्षकारों के लिए आपसी सहमति से विवादों के समाधान का ये एक सुनहरा अवसर है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं शाम 7:45 पर। नमस्कार।
2: अभी आप सुन रहे थे प्रादेशिक समाचार, जिन्हें आकाशवाणी के हमीरपुर और धर्मशाला केंद्रों के साथ साथ FM शिमला 103.7 MHz पर भी प्रसारित किया जा रहा था। कृपया हमारी अगली घोषणा की प्रतीक्षा कीजिए। हिमाचली बोलियों के कार्यक्रम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। लीजिए, अब पेश है बिलासपुरी कार्यक्रम।

बिलासप्री कार्यक्रम सुनने वाले सारे श्रोतियां जो तुम्हारी रेडियो दोस्त सुनीता परमार री प्यार भरी नमस्कार। साथियों वक्त तो गया 6:06 ता हूँ सुना तुहें अपना बिलासप्री कार्यक्रम। अज अहें गल करनी दहेज प्रथा रे बारे च और दूजी गल करनी कि जंगलां जो अग्गी ते बचाना। खबरां भी सुनानियां होर सुनाने कुछ प्यारे प्यारे लोक गीत। ਤਾਂ ਆਵਾ ਸੁਣੀ ਲੋ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਲੋਕ ਗੀਤ ਅਸ਼ਵਨੀ ਰਘੂਜੀਰੀ ਆਵਾਜ਼ਾਂ 'ਚ।

तां जे लोक गीत सुनै तुसें बबली होरी री आवाजा च। हुण असें गल्ल करनी वना जो अग्गी ते बचाना। दिक्खा वन जे तसै प्रकृति री अमुल्य धरोहर है, ये जमीना रे फेफड़े हुए हैं, क्योंकि ये आहां जो शुद्ध हवा देवा है और पर्यावरण रा संतुलन बनाए रखा है। वन ना सिर्फ माणू बल्कि पशु पक्षी और कई दूजे जीव जंतुओं रे जीवना रा भी आधार है। जलवायु जो संतुलित रखने, बरखा मिट्टिया रे कटाव जो रोकने और जैव विविधता जो सुरक्षित रखने च जंगलों की खास भूमिका हुई। पर देखा जाए तो आज जंगलों के सामने कई खतरे है। इस जंगलों च लगने वाली अग सभी ते गंभीर समस्या ही। हर साल हजारों हेक्टेयर वन अग्गी रिपेंट चढ़ी हुआ है। तिश जे जीव जंतु और मानव जीवना जो बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। इस खातर जंगलों जो अग्गी ते बचाना आहां सभी रा कर्तव्य। जंगलों च अग कई बार प्राकृतिक कारणों ने और कदी आदमी री लापरवाही रे कारण भी लगाई। जंगलों च अग बहुत जल्दी फैलाई और देखते ही देखते जंगलों जो अपनी चपेट च ले लुई। सूखी घा पत्तियां और तेज हवा अग्गी जो और भी ज़्यादा भयंकर बनाई दुई। वना च अग लगने रे कई कारण।

इस प्राकृतिक और मानवीय दोनों कारण शामिल हैं। कदी तो ज़्यादा गर्मी, बिजली गिरने या फेरी लंबे टाइम तक सूखा पौने रे कारण भी आग लगी हुई। गर्म मौसम च सूखी पत्तियां और का जल्दी आग पकड़ लो है। जंगलों च आग लगने का सभी तो बड़ा कारण माणुए री लापरवाही। लोग जंगलों च घूमने जावें, बीड़ी सिगरेट पीवें और जल्दी हुई मार्ची सारी तिल्ली या बीड़ी सिगरेट सटी दुएं, या फेरी कुछ लोग पिकनिक मनाने जावें, उत्थी आग जलाए ने कुछ खाना वगैरह बनावें और अग्गी जो पूरी तरह ने नहीं बुझाते, और ये लापरवाही बहुत बड़े विनाशा का कारण बनी हुई। कुछ लोग जंगलों च नौए घा खातर भी आग लगावें और फेरी ये अग विनाशा का कारण बनी हुई। कुछ लोग तो शरारत और निजी स्वार्था खातर भी जंगलों च आग लगावें। ये काम ना सिर्फ गैर कानूनी है बल्कि पर्यावरण खातर भी अत्यंत हानिकारक है। आग लगने ते जंगलों रे हजारों लखों पेड़ पौधे जली ने खत्म हुए हैं। कई सालों तैयार हुए वन कुछ ही घंटे जली ने राख हुई हैं। जंगलों च रहने वाले पशु पक्षी अग्गी ने नहीं बची पाते, कई जीव जली ने मरी हुए हैं। अग्गी ते बड़ी मात्रा धुआं और कार्बन डाइऑक्साइड निकलाई, इससे वायु प्रदूषण बढ़ा और वातावरण भी गर्म हुआ। अग्गी ते मिट्टी की ऊपरी उपजाऊ परता जो नुकसान हुआ, इससे जमीन का उपजाऊपन भी खत्म हुई हुआ। बना ते मिलने वाली लकड़ी, दवाइयाँ और कई वन उत्पाद नष्ट हुए हैं। इस खातर कुछ सावधानियां बरतनी बहुत जरूरी हैं। जंगलों च मार्चिस बीड़ी सिगरेट का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। जंगलों जानेबूझी ने आग लगाने वाले के विरुद्ध कठोर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। स्थानीय लोगों जो वन संरक्षण कार्यक्रमों शामिल किया जाना चाहिए। जे लोग अपू जंगलों की सुरक्षा का दायित्व समझ गए तो यह अग लगने का सिलसिला भी घट होना। वन मानव जीवन खातर बहुत जरूरी है। इन्हें बिना पृथ्वी पर जीवन की कल्पना करना कठिन आ। वनाग्नि ते होने वाला नुकसान सिर्फ पेड़ों तक सीमित नहीं है बल्कि इसका प्रभाव पूरे पर्यावरण और मानव जीवन पर पवा। इस खातर अहां जो जंगलों जो अग्गी ते बचाने खातर हर संभव प्रयास करना चाहिंदा। जे अज अहें अपने जंगलों की रक्षा करगे तो आने वाली पीढ़ियां भी स्वच्छ पर्यावरण और प्राकृतिक संपदा का फायदा ले सकें। सच बोलिए तो वनारी रक्षा ही जीवन की रक्षा ही। हूँ अहें गल करनी जनगणना 2026-27 की। जनगणना 2027 पहले चरण का आयोजन हिमाचल प्रदेश इन तारीखों के अनुसार 16 जून 2026 ते 15 जुलाई 2026 तक किया जाना। 1 जून 2026 ते 15 जून 2026 तक स्वगणना का विकल्प सारे हिमाचल वासियों जो उपलब्ध रहना। निवासी sesensus.com government.com इन पोर्टल पर जाने अपू अपनी जानकारी भरी सकें। जनगणना 2027 रकम डिजिटल माध्यम से पूरा किया जाना। इसरे अंतर्गत गणक और पर्यवेक्षक मोबाइल डिवाइस और दसी गई एप्लीकेशन के माध्यम से सूचना दी जानी। पहले चरण च मकाना की स्थिति, परिवार जो मिली रही सुविधा और परिसंपत्ति से संबंधित सिर्फ 33 प्रश्न पूछे जाने। जनगणना अधिनियम 1948 के अंतर्गत जनगणना च दी गई सारी जानकारी गोपनीय हुई, सहजे किसी ने भी साझा नहीं की जानी। इस जानकारियों का इस्तेमाल सिर्फ नीति निर्माण यानी कि योजना बनाने खातर या शोध कम्मा खातर ही किया जाना। ये तो गल की है जनगणना की। हूँ सुना तुम्हें कुछ खास खास खबर। एम्स चमियाना रे प्रधानाचार्य डॉक्टर ब्रिज शर्मा और बोलिया कि इस अस्पताल अगले एक महीने च 3 टेस्ला MRI मशीन लगाई दी जानी। डॉक्टर ब्रिज शर्मा और बोलिया कि एम्स चमियाना जो बहुत घट टाइम च पूरी तरह ने क्रियाशील कर दिता गया। तिन्हें बोलिया कि अस्पताल च मरीजों की संख्या च लगातार बढ़ोतरी हुई थी और इतने हर रोज़ OPD की संख्या 1000 से ऊपर पहुंची गई। तिन्हें बोलिया कि अस्पताल 24 घंटे की लैब सुविधा, ब्लड स्टोरेज सेंटर और CT स्कैन कने एक्सरे सुविधा शुरू करी दी गई।

और डायलिसिस की सुविधा भी मरीजों को दिलवाई जाएगी। अगली खबरी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भारत के सभी से ज़्यादा टाइम तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बने गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उरी 26 मई 2014 जो पदरी शपथ ली थी, तिने पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का रिकॉर्ड तोड़ी दिया। नेहरू जी पहली बार 13 मई 1952 जो निर्वाचित प्रधानमंत्री रूप च शपथ ली थी और 27 मई 1964 तक सेवा की थी। पंडित नेहरू जी का निर्वाचित प्रधानमंत्री रूप च कार्यकाल 4398 दिन रहा था। 26 मई 2014 ते अज 10 जून 2026 तक प्रधानमंत्री मोदी होरी का कार्यकाल 4399 दिन रहा हो गया। इसते से भारत के इतिहास सभी लंबे टाइम तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बने गए। नरेंद्र मोदी द्वारा प्रधानमंत्री के रूप च सभी ते लंबे कार्यकाल रा कीर्तिमान स्थापित करने की खुशी और तिन्हारी लंबी उम्र की कामना च आज प्रदेश भर च भाजपा नेतिया और कार्यकर्ता द्वारा हवन यज्ञ का आयोजन किया गया। तो ये थी कुछ खास खबर, हुण चलें लोकगीतों के पास।

तां जी बसंत लाल ठाकुर होरें इस लोकगीत कन्नै आखरी बिलासपुरी कार्यक्रम आरा वक्त जैसे खत्म होया था। अपनी रेडियो दोस्त सुनीता परमार जो देवा इजाजत, नमस्कार।

मेरे डिम्पल देवी रे नमस्ते। आकाशवाणी शिमला रे एवं कुलबी कार्यक्रम मजे तू असबीर स्वागत स। ताजी होर तुए राजी बाजी सब ठीक होने ता टंडे नरोगे होने। हाँ डिम्पल देवी तू असंगे अगले आधे घंटे तई होनी। ताजी वाला आज के म्हारे कुलबी कार्यक्रम मजे आंगल करनी कुलबी संस्कृति महत्वर बारे मजे तजो म्हारी सरकार योजना उस वाला त्या मौक भी हाँ एक बारे गलबात करनी ततित के बारे मजे खोजना। ताजी भला एडी एडी खबर था जानकारी संगे आ शुभली शुभली गिया भी सुननी त्यार मजा लेना। ताजी कार्यक्रम शुरुआत करने का पहले सुना तुए एक शुभली दे गी।

विकास योजना में जोन लोका का बिना ढबुए मंगे त्या इतके बारे मजे प्रशिक्षण दीस ता इतके बारे मजे खोजस बाड़ा ता भाड़ा जी एता संगे संगे जेबे प्रशिक्षण खत्म हुस बाड़ा तेबे त्याप सरकारी प्रमाण पत्र भी दीस जित की मान्यता पूरे देश में हुस। या योजना में जो हमारे जोन युवा साथी से वाला त्याब आधुनिक तकनीक था उद्योग हेरिए त जरूर ता हेरिए प्रशिक्षित कर स्थित के बारे में खोजस ताकि त्याब बदल दे वक्ता संगे आप बल ढाली सके। शुभ ले मानो सरकार और मननास की जो हमारे युवा से वाला त्या अगर कुशल होले ता तेबे देश और अर्थव्यवस्था मजबूत होनी था होर बेरोजगारी जेड़ी जो समस्या से वाला सो मजे मजे कम होनी था घटनी। यो एक कारण इसकी या योजना व ग्रह ग्रह था शहरा शहर तई पजेर दे लागे देस ताजी भाड़ा यो योजना ए बरतई कई चरणा में लागू करी चुकी इस 2015 में इतकी शुरुआत बाद एता में होर परमड़ा बनाने तई दुजुए चिणुए चरणा में बंडी दिस। हर चरणा में युवा और जरूरत था बाजारा र मांगा ध्याना में डौंदे नवे नवे कोर्से ता में जोड़ी देस। या योजना में तकनीकी व्यावसायिक सेवा ता होर डिजिटल जगह पेंदे जुड़ी दे कई कोर्स सा देस वाला जो हमारे युवाओं व्यवहारिक अनुभव संगे तैयार कर स। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना करे फैशन डिजाइनिंग आले वाला ब्यूटी पार्लर आले मोबाइल ठीक करने आले कंप्यूटर डाटा ट्रेनी बिजली ठीक करने आले होटल मैनेजमेंट आले टूरिज्म ता जो तकनीकी आले से वाला ए आज जगह पेंदे प्रशिक्षण दी स। या कोर्स ची कछ मिनर बीच समय हूँ ता एता मैं सिद्धांत संगे संगे प्रैक्टिकल ट्रेनिंग भी दीस ताकि युवाओं व असली कमर थो गलोड़ी लगा। या योजना फायदा भारतर कोई भी मानू ले सकस जसरी उम्र भाड़ा 15 का 45 साल बीच समय से एता मैं सीधे 10वीं 12वीं पास करी देनी बल्कि जस स्कूल छाड़ू दस था थोड़े पढ़ी लिखी देस वाला त्या लोग भी इतकी तई आवेदन कर सकस। इतका जो उद्देश्य ता मकसद से वाला सो भा जो हमारे समाज र हर वर्ग अब बराबरी मौका देना स खासकर ग्रह और मानुब बेटड़ी ता जो लाटे लंगड़े था थोड़े आर्थिक रूप संगति कमजोर वर्गों वाला त्याब आगे बढ़ाऊना ताकि त्या एक रंबड़ा था शोभला जीव जी सके। ताजी वाला प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना में पंजीकरण करना जबर आसान स तू सब है अपने नेड़ा र कौशल प्रशिक्षण केंद्र में नहीं करे या जो इतकी आधिकारिक वेबसाइट हूँ वाला तेता खोली करे रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरी सकस। इतकी ताई आधार कार्ड मोबाइल नंबर था एक ही फोटो र जरूरत हूँ स। प्रशिक्षण बाद युवा और मूल्यांकन हूँ ता तेता बाद त्या प्रमाण पत्र भी दीस जिते करे त्याब नौकरी पाने तई आसानी हूँ स। कई बेरा ट्रेनिंग सेंटर का युवाओं व प्लेसमेंटा में भी सहायता हूँ स। या योजना करे ए बरतई बड़ा करोड़ों माणुब फायदा बेटी से कुदस लाखों माणुब नौकरी भी बेटी इसता कई लोग अपना हो समोटा काम भी शुरू करू दस। कई बेटड़ी जो पहल घर तई थी सीधी वाला त्या आ सिलाई ब्यूटी पार्लर था हस्तशिल्पार कमा करी करे आप पे खटदी लागीस ता अपने घर परिवार हेरदी भी लागीस। यो योजना के लिए आर्थिक मजबूती नहीं दिंदी बल्कि माणु में आत्मविश्वास भी जगास। अंत में प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के लिए सरकारी कार्यक्रम न थी बल्कि करोड़ों मानु र सुपने व सची करने था मजबूत करने एक साधन स। यो योजना भारत अब आत्मनिर्भर बनाने कौमा में भी एक रंबड़ा साधन था रंबड़ा कदम स। तबाड़ा जी अगर युवा इतका रंबड़े रंगे उपयोग करे तो तेबे न केला अपना भविष्य बदलना बल्कि इत संगे देश और विकास मजे भी रंबड़ा योगदान देना। ताजी ओती जानकारी प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना बारे में से ता ए भी सुना तुए आज की किस खास खबरा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भारत सब इक लंबे वक्त तई सेवा करने आए निर्वाचित प्रधानमंत्री बनी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 26 मई 2014 में पद और शपथ ले थी। त्याए पंडित जवाहरलाल नेहरू रिकॉर्ड जोड़ू त्याए पहली बेरा 13 मई 1952 में बनी देती प्रधानमंत्री रूप में शपथ ले थी ता होर 27 मई 1964 ते बरताई बाड़ा ते सेवा देनी। पंडित जवाहरलाल नेहरू निर्वाचन वाला प्रधानमंत्री रूप में कार्यकाल 4398 दैड़ी रही थी। 26 मई 2014 का आज तई 10 जून बड़ा 2026 तई ए बरताई 4399 दैड़ी हुई तजे करे त्या भातर इतिहास में बहु वक्त तई सेवा करने आए निर्वाचित प्रधानमंत्री।

बणी। इतके भी समय बड़ा नरेंद्र मोदी रे प्रधानमंत्री रूपा में लंबे वक्त तई कार्यकाल करने रे कीर्तिमान लेवने तई खुशी में प्रदेश और भाजपा रे नेता तजो कार्यकर्ता स्वेला तैयार लंबी उम्र तई हबंधा यज्ञ करने आयोजन करू। ताजी वाला दूजी खबर से अंतर्राष्ट्रीय शिमला ग्रीष्मोत्सव में आज अन फेटे वाला मिनी बैडमिंटन चैंपियनशिप शुरू हुई। यह चैंपियनशिप पर शुभारंभ उपायुक्त अनुपम कश्यपे करू। यो जो चैंपियनशिप्स वाला यो 11, 13 था होर 15 साल टसुटा सिर तई आयोजित करी दी सर। यह प्रतियोगिता में शिमले जिले का लगभग 180 प्रतिभागी हिस्सा लेना। उपायुक्त बोलू कि ये मुक्ते पेंदे बोलू कि भला विद्यार्थी जीवन में पढ़ाई संगे संगे खेलार भी जबर महत्वपूर्ण जगाऊँ सर। ताजी भला यह प्रतियोगिता रे आयोजन शिमला जिला बैडमिंटन एसोसिएशन ने करना लाउदा सर। ताजी खबर से वे मौसमार बारे मजे प्रदेश में जबर गर्मी ध्याड़ीस वाला खासकर उथले इलाके में लोका जबर ताजो उंदले इलाके में देखे भी जबर गर्मी र सामना करना पड़ता लगा स। ऊना में 42 डिग्री का ज़्यादा तापमान दर्ज कर दस। शिमले में भी खासी गर्मी पड़ी स। इतके बीच में मौसम विभागे शुई 11 जून फिटे मौसम बदलने र संभावना खोजी दिस। विभागे 11 था 12 जून अब राज्य में 4 जिले कुल्लू मंडी शिमला था सिरमौरा में किस जगह पेंदे शहरू था अंधड़ एता संगे संगे 40-50 किलोमीटर प्रति घंटे र जोरा संगे आंधी बैना बागुर चलने र ऑरेंज अलर्ट जारी कर दस। विभाग के होरा जिला में येलो अलर्ट जारी कर दस। ताजी वाला याती आज की किस खास खबरा ताजी एवे सुना तुए एक होर शोभली दे गी।

ताजी ओ शुणी तू एक शुभ ली देगी बुडलू मामा टिंकूर आवाजा में। ताजी भला उम्मीद करसो तू आज की जानकारी शुभ ली लागी होनी। ताजी कार्यक्रम रे खत्म होने रा वक्त आवाय भी होई।

0: advantage. And in badminton, PV Sindhu and Tanvi Sharma today advanced to the second round of women's singles event at Australian Open tournament in Sydney. Two-time Olympic medalist Sindhu defeated Peru's Ines Castillo 21-13, 21-11 in the first round clash of the tournament. And that is the end of this news bulletin.
1: मीडियम वेव 387.6 मीटर अर्थात 774 किलोहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये शिमला केंद्र है। आइए अब आपको अगले प्रसारण के लिए ले चलते हैं आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र।
2: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के, नाउ वी ब्रिंग यू एन इंटरव्यू विद डॉक्टर एस जयशंकर मिनिस्टर।
3: 103.7 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी एफएम शिमला। 7:10 हुए हैं, आइए सुनते हैं कृषि जगत कार्यक्रम।
4: कृषि जगत कार्यक्रम सुनने वाले सभी किसान व बागवान भाई बहनों को हमारा
5: नमस्कार।
4: किसान भाइयों, आज इस अंक में मैं हूं आपके साथ शैलजा शर्मा।
5: और मैं जयप्रकाश।
4: और जयप्रकाश जी, कैसे हैं आप?
5: मैं ठीक हूँ शैलजा, आप सुनाओ कैसे हैं?
4: जी बहुत बढ़िया हैं, और हम उम्मीद करते हैं कि हमारे किसान और बागवान भाई बहन भी सकुशल होंगे और अपने दैनिक कार्य में व्यस्त होंगे।
5: जी तो किसान भाइयों, आज काम की बातों के अंतर्गत हम बात करेंगे गुलाब की व्यावसायिक खेती के बारे में, और साथ ही साथ मनोरंजन करेंगे पहाड़ी लोकगीत के साथ, और इसी के साथ सुनाएंगे जानकारी पूर्ण बातचीत का पुनः प्रसारण, प्रदेश में सजावटी पौधों का उत्पादन और संभावनाएं।
4: तो किसान भाइयों, अब बात करते हैं काम की बातों के अंतर्गत गुलाब की व्यवसायिक खेती के बारे में। गुलाब का फूल मानव को प्रकृति द्वारा प्रदान की गई एक खूबसूरत भेंट है। इसकी खुशबू और विभिन्न रंगों की वजह से इसे फूलों की रानी का दर्जा दिया गया है। गुलाब बहुत से देशों का राष्ट्र पुष्प है। वैसे तो गुलाब की खेती हजारों वर्षों से की जा रही है, परंतु आधुनिक युग में एक व्यवसायिक पुष्प के रूप में इसका उत्पादन किसानों के लिए बहुत ही लाभकारी सिद्ध हुआ है।
5: किसान भाइयों, ये विश्व भर में सर्वाधिक क्षेत्रफल में उगाया जाता है और विश्व बाजार में भी इस सबसे अधिक बिकता है। कट फूल के साथ साथ व्यावसायिक तौर पर गुलाब के फूलों का उपयोग खाद्य पदार्थों में खुशबू, इत्र व्यवसाय, गुलाब का तेल, गुलाब जल और गुलकंद के रूप में किया जाता है। विश्व के विभिन्न देशों में गुलाब की खेती सफलतापूर्वक की जा रही है। हमारे देश में जलवायु की विविधता प्रकृति का एक महत्वपूर्ण उपहार है, इसलिए यहाँ गुलाब की खेती एक बड़े व्यवसाय के रूप में उभर कर सामने आ रही है। पुणे, नासिक, बेंगलोर जैसी जगह जहाँ साल भर नम जलवायु के रूप में बनी रहती है और बुनियादी सुविधाओं और सामान्य जलवायु की दृष्टि से भी गुलाब के लिए सर्वाधिक उपयुक्त पाए गए हैं।
4: बात करते हैं गुलाब की प्रमुख किस्मों के बारे में। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उपभोक्ता की मांग के अनुसार किस्में बदलती रहती हैं। कुछ किस्में जैसे कि लाल गुलाब की किस्में रहेंगी फर्स्ट रेड, ग्रैंड गेला, पैशन, ग्रैंड प्रिक्स। पीली गुलाब की किस्में रहेंगी गोल्डन गेट, गोल्डन स्ट्राइक, पेपलोनिया, गोल्डी। सफेद गुलाब की किस्में रहेंगी बियांका, विजीनिया, हॉलीवुड। गुलाबी गुलाब की किस्में रहेंगी नॉबलेस पिंक, प्रिटी वुमेन, रेवेल और स्वीटनेस। दो रंगी गुलाब की किस्में रहेंगी कैनफेटी और नॉबलेस।
5: किसान भाइयों, ग्रीन हाउस या पॉली हाउस के अगर चयन की बात करें तो निर्यात के सख्त मानकों को पूरा कर सकने वाले अच्छे गुणवत्ता युक्त फूलों का सघन उत्पादन स्वाभाविक दशाओं में बहुत कठिन है, इसलिए उच्च गुणवत्ता वाले गुलाब पैदा करने के लिए प्लास्टिक से बने ग्रीन हाउस में गुलाब की संरक्षित खेती बहुत ही जरूरी है। निर्माण लागत को देखते हुए भारतीय दशाओं में एक ग्लास हाउस की तुलना में पॉली हाउस अधिक उपयुक्त है। किसी स्थान विशेष की मौजूदा बाहरी जलवायु पर यह निर्भर करता है कि यहाँ गुलाब की खेती के लिए किस प्रकार के ग्रीन हाउस या अन्य संरचनाओं की स्थापना की जा सकती है।
4: जी बात करते हैं गुलाब की खेती के लिए मिट्टी कैसे तैयार करनी है। स्वाभाविक रूप से गुलाब के पौधों की जड़ें गहरी होती हैं और पौधे को सक्रिय पोषक जड़ें 50 सेंटीमीटर की गहराई तक फैली होती हैं, जिससे मिट्टी में काफी गहराई तक भी पोषकों की जरूरत होती है। मिट्टी की पीएच 5.5 से 6 के बीच होना चाहिए। मिट्टी में पानी के निकास की अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए और जड़ों तक हवा का प्रभाव भी पहुंचना चाहिए। मिट्टी तैयार करने के लिए 40 से 50 सेंटीमीटर की गहराई तक मिट्टी की जुताई अवश्य करनी चाहिए। मृदा जांच परीक्षण के आधार पर मृदा के संरचनात्मक गुणों को बढ़ाने के लिए मिट्टी में पर्याप्त जैविक

0: सामग्री मिलाई जानी चाहिए। हल्की मिट्टी में पोषक और जल की परस्पर क्षमता को बढ़ाने के लिए जैविक सामग्री का प्रयोग लाभदायक होता है। इसी तरह भारी मृदा में जैविक सामग्री को मिलाने से इसमें वायु प्रवाह क्षमता में वृद्धि होती है, जो कि बहुत ही आवश्यक है। गुलाब की संरक्षित खेती के लिए बहुत से अवयवों का मिश्रण भी बनाया जाता है। यह मिश्रण या मीडिया दो भाग मिट्टी, एक भाग गोबर की सड़ी हुई खाद और एक भाग सड़ा हुआ लकड़ी के बुरादे से बना सकते हैं। मीडिया का पीएच मान भी 5.5 से 6 के बीच में होना चाहिए।
1: किसान भाइयों, मीडियम का निर्जमीकरण की बात करें तो किसी स्थान विशेष की चयनित मिट्टी में बड़ी मात्रा में सूक्ष्म जीव हो सकते हैं, जिनमें से रोग कारक सूक्ष्म जीवों के तुरंत फैलाव को रोकने के लिए उन्हें नष्ट करना आवश्यक होता है। शहरीकरण की अगर बात करें तो शहरीकरण की प्रक्रिया के तहत गर्मी के दिनों में लगातार 2 से 3 महीनों तक खेत को सफेद पॉलीथीन से पूरी तरह ढक दिया जाता है, जिससे मिट्टी का तापमान इतना अधिक हो जाता है कि उसमें सूक्ष्म जीवों के साथ साथ कुछ खरपतवार भी नष्ट हो जाते हैं। बात कर लेते हैं रासायनिक निर्जमीकरण। मृदा निर्जमीकरण के लिए आमतौर पर प्रयोग में लाए जाने वाले रसायनों में मिथाइल ब्रोमाइड, क्लोरोपिक्रीन और फॉर्मेल्डिहाइड प्रमुख है।
0: फॉर्मेल्डिहाइड से अत्यधिक विषैली फॉर्मलिन निकलती है, जिसे इसकी तीक्ष्ण गंध और अति ज्वलनशील झागों से पहचाना जा सकता है। इसे क्यारियों में नियमित अंतराल पर 1 फुट गहरे गड्ढे में फॉर्मेल्डिहाइड को 7 भाग पानी के घोल में डालकर गड्ढे को मिट्टी से ढककर प्रयोग में लाया जा सकता है। निर्जमीकरण की विधि के साथ ये बहुत जरूरी है कि उपचारित क्षेत्र को पॉलिथीन से ढक दिया जाए, ताकि विषाक्त झाग फैलकर व्यर्थ ना हो। उपचारित हिस्से को कम से कम 15 दिन तक निर्बाध रूप से ढके रहना चाहिए। उपचारित पॉलीहाउस में आदमी के प्रवेश को सुगम बनाने हेतु उनमें हल्के वायु प्रवाह का इंतजाम होना चाहिए।
1: किसान भाइयों, क्यारियां तैयार करने के लिए अगर देखा जाए तो गुलाब की खेती के लिए पॉली हाउस में मिट्टी के प्रकार को देखते हुए क्यारियों को बनाना चाहिए। भारी और खराब निकास वाली मिट्टी में क्यारियों को कम से कम 40 सेंटीमीटर उठाकर बनाया जाना चाहिए। भारतीय दशाओं में ऐसी क्यारी अच्छी मानी जाती है जिसकी चौड़ाई 1 मीटर, जिसमें 40 सेंटीमीटर चौड़ा पथ हो। जबकि क्यारी की लंबाई पॉलीहाउस की लंबाई के हिसाब से कितनी भी हो सकती है, क्यारी 20 से 40 मीटर तक लंबी हो सकती है।
0: किसान भाइयों, बात करते हैं पौधरोपण की। अच्छी किस्म वाले फूलों के लाभदायक उत्पादन के लिए प्रति वर्ग मीटर में 7 पौधे लगाना सबसे अच्छा होता है। भारतीय दशाओं में पौधरोपण को तो 2 पंक्ति प्रणाली सर्वाधिक उपयुक्त पाई गई है। पौधरोपण वाले गड्ढों में पौधे को न मुड़ने देने में सावधानी बरतनी चाहिए। पौधों को रोपने के लिए गड्ढे इतने होने चाहिए जिनमें पौधों की जड़ें बिना मुड़े या बेंड हुए उसमें समा जाए। एक बार पंक्ति की संख्या निश्चित हो जाने पर गुलाब की किस्म के आधार पर पौधों को 18 से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर लगाना चाहिए। लंबे तने वाली किस्मों को 25 से 26 सेंटीमीटर की दूरी और छोटे तने वाली किस्मों को 18 से 25 सेंटीमीटर पर लगाना चाहिए।
1: किसान भाइयों, पौधरोपण के बाद देखभाल की बात करें तो जड़ों को भली प्रकार ढक देना चाहिए, ताकि तापमान 18 डिग्री सेल्सियस तक हो जाए, जिससे कल्ले सही प्रकार से निकल सके। यदि तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे जाता है तो कल्ले नहीं भी निकल सकते हैं। यदि बादल हो तो कवर को हटा देना चाहिए, ताकि रोगों से बचाव हो सके। रोगों से बचाव के लिए सिस्टमेटिक कवकनाशी का छिड़काव करना चाहिए। पौधों की संरचना की बात करें तो गुलाब के व्यावसायिक उत्पादन के लिए पौधों का छत्र प्रबंधन एक महत्वपूर्ण उपाय है। यदि नए पौधों से तुरंत फूल लेना शुरू कर दिया जाए तो पौधे का पूरा संरचनात्मक ढांचा पूरी तरह से गड़बड़ा सकता है। इसलिए विभिन्न तकनीकों को अपनाकर पौधे को एक स्टिक आकार देना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है।
0: किसान भाइयों, बात करते हैं सिंचाई की। गुलाब को पानी की अधिक आवश्यकता पड़ती है। गुलाब की क्यारियों में नमी बने रहना आवश्यक है, परंतु क्यारियों में पानी नहीं खड़ा होना चाहिए। पौधों को 8 से 10 लीटर पानी प्रति वर्ग मीटर की आवश्यकता होती है। ग्रीन हाउस में गुलाब के लिए टपक सिंचाई बहुत ही उत्तम मानी गई है। गुलाब के पौधे में 500 से 1000 ग्राम पानी प्रति ग्राम शुष्क भार के अनुसार पानी की आवश्यकता पड़ती है। टपक सिंचाई के लिए प्रमुख लाइन में 70 मिलीलीटर, उप प्रमुख लाइन 40 मिलीलीटर और बीच वाली लाइन में 32 मिलीलीटर एक निकास लाइन, जो बचे पानी को निकालने का काम करे, मिट्टी के बीच दबा देनी चाहिए।
1: किसान भाइयों, कांट छांट और सिंचाई के बारे में अगर बात करें तो पौधों की कटाई और छंटाई अच्छी पैदावार लेने के लिए अत्यंत उपयोगी है।

0: ट्रेनिंग से पौधे की आकृति और बनावट और प्रूनिंग द्वारा पौधे की कार्यप्रणाली प्रभावित होती है। प्रूनिंग में पौधों के तने से 4 से 5 आंखें छोड़कर काट दिए जाते हैं, साथ ही सूखी और बीमारियों से ग्रसित टहनियों को भी काट दिया जाता है। इस प्रक्रिया में मुख्य तनों को छोटा करने का लक्ष्य होता है ताकि विगत वर्ष की वृद्धि को काटकर एक अच्छी नव वृद्धि आए, क्योंकि गुलाब में अच्छी गुणवत्ता वाले उन्नत पुष्प नववर्ष की वृद्धि वाली शाखाओं पर ही आते हैं। तो किसान भाइयों, ये थी मुख्य जानकारी गुलाब की व्यावसायिक खेती के बारे में।
1: तो किसान भाइयों, अब समय हो गया है मनोरंजन का। आइए सुनते हैं समूह स्वर में ये प्यारा सा लोकगीत।

0: किसान भाइयों, अभी आपने सुना समूह स्वरों में ये लोक गीत। किसान भाइयों, अब बात कर लेते हैं जानकारी पूर्ण बातचीत की। तो किसान भाइयों, पुनः प्रसारण के अंतर्गत आइए सुनते हैं प्रदेश में सजावटी पौधों का उत्पादन और संभावनाएं। बातचीत में भाग ले रहे हैं डॉक्टर रंजन और उनसे बातचीत करेंगे रीता हंस।
1: कृषि जगत के सभी श्रोताओं को हमारा नमस्कार। किसान भाइयों, आज हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हैं डॉक्टर रंजन शर्मा। डॉक्टर साहब, आपका स्टूडियो में स्वागत है।
2: बहुत बहुत धन्यवाद
1: जी। देखिए, और आज का विषय जो है वो है प्रदेश में सजावटी पौधों का उत्पादन एवं व्यावसायिक संभावनाएं। जी श्रोताओं, जहाँ बात आती है सजावट की तो मन खुश हो जाता है, और सजावट चाहे घर की हो, दफ्तर की हो, या फिर किसी भी समारोह की। फूलों को लेकर के बात आती है मन में तो मन खुश हो जाता है। जितने भी पूजा पाठ के काम है या फिर शादी विवाह के जो भी काम है, वहां पर फूलों की जरूरत अक्सर पड़ती है। इन्हें देख करके मन भी खुश हो जाता है। तो श्रोताओं, इसी विषय पर आज आपको जानकारी देने जा रहे हैं, प्रदेश में सजावटी पौधों का उत्पादन एवं व्यावसायिक संभावनाएं। और शुरुआत करते हैं, डॉक्टर साहब आपका स्टूडियो में एक बार फिर से स्वागत है। आपसे प्रश्न पूछना चाहूंगी, प्रदेश में पुष्प उत्पादन की क्या स्थिति है तथा प्रदेश में अभी तक किस तरह का पुष्प उत्पादन किया जा रहा है, इस बारे में?
2: सभी को मेरा नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद रीता जी।
1: जी,
2: जैसे कि हमने बात की कि पुष्प उत्पादन की, तो सबसे पहले मैं थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ कि हमारे पुष्प उत्पादन हिमाचल प्रदेश में है। अगर हम बात करें 1993-94 के दशक में, ये जो उत्पादन है लगभग 25 हेक्टेयर क्षेत्र में किया जा रहा था
1: जी,
2: और आज उत्पादन हिमाचल प्रदेश में लगभग 629 हेक्टेयर तक पहुँच गया है
1: जी।
2: क्योंकि हमारे प्रदेश में विविध जलवायु वाला प्रदेश है, क्योंकि समुद्र तल से अगर ऊंचाई देखें तो 365 मीटर की ऊंचाई से लेकर 3656 मीटर तक की ऊंचाई के क्षेत्र हमारे प्रदेश में पाए जाते हैं, और यही कारण है कि हमारे जो प्रदेश में विभिन्न तरह के पौधे जो है वो उगाए जा सकते हैं। जैसे मैंने कहा कि 1993-94 में 25 हेक्टेयर क्षेत्र से हमारा पुष्प उत्पादन प्रारंभ हुआ था, और पर अभी भी जो पुष्प उत्पादन हो रहा है हमारे प्रदेश में वो ज्यादातर जो है कट फ्लावर्स या खुले जो पुष्प होते हैं, लूज फ्लावर्स
1: जी,
2: है ना, उनके लिए उनका उत्पादन हो रहा है
1: जी।
2: उसमें जैसे कट फ्लावर में आपने देखा होगा मार्केट में गुलदाउदी है, गेंदा, कार्नेशन, गुलाब, ग्लैडलस और लिलियम, इस तरह के पुष्प जो है
1: जी,
2: वो उगाए जा रहे हैं और यहाँ से प्रदेश से बाहर की मंडियों में उन्हें बेचा जा रहा है
1: जी।
2: पर जैसा कि आज का हमारा टॉपिक है सजावटी पुष्प उत्पादन, तो इसका उत्पादन जो है अभी काफी कम मात्रा में लगभग 50 हेक्टेयर क्षेत्र में हिमाचल प्रदेश में हो रहा है
1: जी,
2: और यह उत्पादन भी ज्यादातर कांगड़ा, कुल्लू, शिमला जिले में हो रहा है
1: जी। और एक और प्रश्न है डॉक्टर साहब हमारे मन में कि सजावटी पौधों से क्या अभिप्राय है तथा इसके विभिन्न श्रेणियां कौन कौन सी हैं?
2: जी हाँ, ये बहुत ही आवश्यक है कि हमें जानना कि सजावटी पौधे हैं क्या, क्योंकि मैंने आपको कहा कि हमारा जो उत्पादन प्रदेश में हो रहा है वो कट फ्लावर और लूज फ्लावर के लिए हो रहा है
1: जी, जी।
2: अब सजावटी पौधे हमारे उस तरह के पौधे हुए कि जिन्हें हम अपने घरों में या ऑफिस में या फैक्ट्रियों में या परिसरों में
1: जी,
2: जो
1: जी।
2: जितने भी हमारे संस्थान है उनके परिसर है
1: जी, जी।
2: या गार्डन्स में, वहां पर जो भी हम पुष्प या पौधे लगाते हैं, जैसे खासकर हम गमलीय पौधे लगाते हैं, गमलों में लगाते हैं, या फिर अगर लैंडस्केपिंग की बात करें, भूदृश्य निर्माण की बात करें, तो ये वो पौधे हैं जो हम जमीन में लगाते हैं, है ना। कुछ सीजनल पौधे हैं जो हम एक मौसमी पौधे जिनको कहते हैं, वो इस तरह के पौधे जो भी हैं, जो भी सजावट में इस्तेमाल किए जा सकते हैं, वो सारे के सारे हमारे सजावटी पौधों में आते हैं। और इसमें जैसे श्रेणियों की बात की, ये जानना बहुत ही आवश्यक है जो इस व्यवसाय से जुड़ेगा युवक या युवती, इसमें विभिन्न श्रेणियां क्या होती हैं। श्रेणियों में जैसे हम बात करें तो झाड़ी नुमा पौधे हैं या श्रब्स हैं, उस तरह के पौधे हुए जिनकी ऊंचाई लगभग जो है वो 2 फुट से 3 फीट के बीच में रहती है। फिर इसके बाद कुछ हमारे सदाबहार शाकीय पौधे या फिर एवरग्रीन हर्बेशियस प्लांट्स जिनको बोलते हैं, ये छोटे पौधे होते हैं और क्यारियों में लगाए जा सकते हैं। फिर हमारे कुछ बल्बस पौधे या कंद वाले पौधे,
1: हाँ जी,
2: है ना, जैसे डेफोडिल्स हैं, लियम हैं, तो ये हो गए। फिर सीजनल पौधे या मौसमी पौधे जैसे होते हैं, तो

0: मौसमी पौधे ऐसे हुए हैं कि जो एक मौसम में लगते हैं, उसके बाद ख़त्म हो जाते हैं, फिर हमें दोबारा से दूसरे मौसम में लगाने पड़ते हैं।
1: जी
0: और कुछ सजावटी पौधे ऐसे हैं जो वृक्ष हैं,
1: जी
0: उनको भी हम सजावट के लिए इस्तेमाल करते हैं।
1: जी
0: तो
1: डॉक्टर साहब, प्रश्न है कि सब लोगों के मन में होता है कि हम फूल लगाएं, तो
0: जी
1: क्या आप बता सकते हैं कि इन दिनों हमारे किसान भाई या फिर हम लोग आम लोग जो हैं अपने गमलों में या फिर अपने क्यारियों में किस तरह के पौधे लगा सकते हैं?
0: जी जी बिल्कुल। इसमें ऐसा है कि जैसे मैंने अभी बात की आपको कि सजावटी पौधों में हमारे कुछ मौसमी पौधे होते हैं
1: जी
0: या सीजनल प्लांट्स हैं। तो सीजनल प्लांट्स में कुछ ऐसे पौधे हैं, तो उसमें हमारे जैसे गेंदा है,
1: जी
0: वो आजकल हम काफ़ी जो है वो क्यारियों में भी लगाते हैं और
1: जी
0: गमलों में भी लगाते हैं।
1: जी
0: तो इसके अलावा हमारे फिर गॉम्फ्रीना है, साल्विया है। तो इस तरह के पुष्प की हमारी नर्सरी जो है, वो नर्सरी हमें लगभग आप मई जून में हमें लगानी पड़ती, ताकि वो पौध तैयार होके फिर हम उसको गमले में लगा लें या फिर क्यारियों में लगा लें।
1: जी तो डॉक्टर
0: जी
1: साहब, ये जो है सीजनल प्लांट, जैसे आपने बात कही है, जो सीजन होता है उसी समय ये पौधे आते हैं या फिर बीच बीच में कभी आते भी रहते हैं, जैसे प्रागण होता है और वो उसके
0: बीज
1: बीज गिर जाते हैं, तो
0: जी
1: क्या
0: जी
1: ये अपने आप ही होते रहते हैं?
0: कि तभी मैंने श्रेणियों की बात की
1: जी
0: इसमें।
1: जी हाँ जी
0: श्रेणियों की बात इसलिए की कि हमारे जो खास, जैसे आपने कहा कि बीज जो गिर जाते हैं,
1: जी
0: तो ज़्यादातर जो मौसमी पौधे हैं वो क्या होता है, उनका उनका एक समय होता है, जैसे 2 या 3, 3-4 महीने का,
1: जी जी
0: जिसमें वो पुष्प खिलते हैं। उसके बाद उनके बीज जो है वो अपने आप गिर जाते हैं,
1: जी
0: या फिर हमें कलेक्ट करने पड़ते हैं, उसमें से बीज निकालते हैं, हम उसको दोबारा से रख लेते हैं। और जब समय आता है,
1: जी
0: जैसे नेक्स्ट जो है मई जून आएगा,
1: हाँ
0: तो
1: जी
0: फिर हम उन्हें क्यारियों में लगा के उसका रोपण करेंगे।
1: जी
0: पर इसके अलावा कई पुष्प ऐसे हैं जो सदाबहार हैं,
1: हाँ जी
0: है ना, तो
1: जी
0: उसमें हम बार बार उनको रोपित नहीं करते, एक बार ही लगा के छोड़ देते हैं। और उसमें जब भी मौसम में गर्माहट आती है, ज़्यादातर बसंत ऋतु में हमारे
1: जी
0: पुष्प
1: जी
0: खिलते हैं, तो वो गर्माहट के समय पुष्प उसमें आएंगे, उसके बाद पुष्प झड़ जाएंगे, जो हमारा पौधा है वो सदाबहार रहेगा। जी
1: जी इसके अलावा डॉक्टर साहब, हम आपसे और भी जानना चाहेंगे कि हिमाचल प्रदेश में कौन कौन से सजावटी पौधों का उत्पादन किया जा सकता है,
0: जी सर
1: जिनकी मांग प्रदेश और प्रदेश से बाहर भी रहती है।
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: प्रदेश में सजावटी पौधों की क्या व्यावसायिक संभावनाएं हैं?
0: जी बिल्कुल। यही जो बात है, ये हमने प्रश्न जो आपने किया है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न
1: जी
0: है, क्योंकि हम जैसे बात कर रहे हैं कि कट फ्लावर और लूज फ्लावर प्रोडक्शन तो हमारा हो ही रहा है।
1: जी जी
0: जैसे व्यावसायिक संभावनाओं की बात की, तो अगर हम देखें हिमाचल प्रदेश में शहरीकरण जो है वो बहुत अधिक बड़ा है,
1: जी
0: और बहुमंजिला इमारतें अगर देखें उनका निर्माण भी काफ़ी अधिक हो रहा है।
1: जी
0: हिमाचल क्योंकि ये पर्यटक राज्य है, और
1: जी
0: हमने देखा है कि कुछ वर्षों में यहाँ पर होटलों की, रिजॉर्टों की संख्या, उसमें भी काफ़ी अधिक वृद्धि हुई है। फैक्ट्रियाँ और कुछ शिक्षण संस्थान भी यहाँ पर काफ़ी अधिक बड़े हैं।
1: जी
0: तो मैं इन सब की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि जैसे जैसे ये हमारा शहरीकरण बढ़ रहा है या
1: जी
0: इंडस्ट्रीज लग रही है, तो सजावटी पुष्पों की मांग जो है इन सबसे काफ़ी अधिक बड़ी है।
1: जी
0: और अभी तक जो ये हमारे पॉटेड प्लांट्स हैं या सजावटी पौधे, जैसे हमारे गमलों में या फिर क्यारियों में जो हम लगा रहे हैं, तो इसका जो उत्पादन है वो प्रदेश से बाहर की नर्सरियों से मंगा कर जो है यहाँ पर आपूर्ति करवाई जा रही है।
1: जी जी
0: अगर हम देखें तो पिछले कुछ दशकों में कुछ ऐसे बड़ी बड़ी जो फैक्ट्रियाज हैं या कंपनीज हैं, उन्होंने तो अपने, अगर परिसर की बात करें,
1: हाँ
0: तो
1: जी
0: खास तौर पे कुछ एम्प्लॉयज़ उन्होंने ऐसे रखे हैं
1: जी
0: जो सिर्फ सजावटी पौधों का ही देख रेख कर रहे हैं।
1: जी
0: काफ़ी मालियों को उन्होंने लगा रखा है,
1: जी
0: और हमारे जो कुछ छोटे होटल्स हैं, कुछ लोगों ने भी ऐसा किया है कि वो नर्सरियों से पुष्प खरीदते हैं, और
1: जी
0: साल भर का उन्होंने कई बार एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट भी बना रखा
1: हाँ
0: है,
1: जी हाँ जी
0: वार्षिक अनुबंध भी बना रखा है, जिसमें कि वो विभिन्न विभिन्न तरह के पुष्प जो है वो गमले उन
1: जी
0: घरों में लेके आते हैं या
1: जी
0: होटलों में
1: जी
0: दे के
1: हाँ
0: आते
1: जी
0: हैं, फिर दोबारा वहाँ से अगर वो ख़राब हो जाते हैं या उसमें कुछ गमलों को चेंज करने की ज़रूरत पड़ती है, तो वो करते हैं, और एनुअल जो है वो पेमेंट उसकी करते रहते हैं।
1: जी जी
0: तो इस तरह से जो हमारे प्रदेश में सजावटी पौधों का जो है बहुत ही व्यावसायिक रूप में संभावनाएं हैं। और
1: जी
0: साथ में एक और चीज़ मैं इसमें ऐड करना चाहूँगा, जैसे प्रदेश में कुछ इस तरह के पुष्प है, क्योंकि हमारा जो प्रदेश है
1: जी
0: वो समशीतोष्ण प्रदेश है,
1: हाँ जी
0: टेम्परेट रीजन है,
1: जी
0: खासकर जो हमारे मध्य पर्वतीय क्षेत्र या ऊंचे पर्वतीय क्षेत्र हैं, और यहाँ पर जो है कुछ इस तरह के पुष्प खिलते हैं जो कि टेम्परेट रीजन में ही खिलते हैं।
1: जी
0: जैसे टेम्परेट रीजन हमारा जम्मू कश्मीर भी है, हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है, या फिर सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश जो क्षेत्र हैं,
1: जी
0: राज्य हैं, वहीं पर ये इस तरह के पुष्प खिलते हैं। पर जो यहाँ पे पुष्प उगाए जा सकते हैं, गमलीय पुष्प उगाए जा सकते हैं, इनकी मांग जो है हमारी मैदानी जो क्षेत्र हैं
1: जी
0: नॉर्दर्न प्लेन्स के, इंडिया के, वहाँ पर रहती है, और यहाँ पर उगाकर हमारे जो पुष्प उत्पादक हैं ये उसे मैदानी क्षेत्र में सेल कर सकते हैं।
1: जी
0: तो बहुत ही व्यावसायिक

0: तौर पे देखे जाए
1: जी
0: तो बहुत ही हमारे यहाँ पे क्षमता भी है और आवश्यकता भी है। तो
1: जी
0: हमारे जो बेरोजगार युवक युवतियाँ हैं यहाँ
1: जी
0: पर, वो इस व्यवसाय को अपना कर जो है, और ना केवल अपनी आजीविका,
1: जी
0: अपने साथ जो है कई लोगों को इसमें रोजगार भी दे
1: जी
0: सकते हैं। जो हमारा सजावटी पुष्प है, इसमें हर श्रेणी की मैंने आपको बात की थी, तो हर श्रेणी के बारे में ज्ञान होना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि बिना ज्ञान से सजावटी पुष्पों का खास तौर पर हम उत्पादन नहीं प्रारंभ कर सकते।
1: जी डॉक्टर साहब,
0: जी
1: बहुत अच्छा आपने ये कहा कि हमारे जो बेरोजगार युवक युवतियां हैं उनके लिए भी एक ये व्यवसाय का साधन बन जाएगा।
0: जी
1: और इसके अलावा डॉक्टर साहब, बात करते हैं हिमाचल प्रदेश में कौन कौन से सजावटी पौधों का उत्पादन किया जा सकता है और जिनकी मांग प्रदेश और प्रदेश के बाहर भी रहती है।
0: बिल्कुल बिल्कुल, ये जानना मैंने कहा कि श्रेणियां हमें पता होना चाहिए तो बहुत ही आवश्यक है। सबसे पहले जैसे सजावटी पौधों की हम बात करते हैं, तो सजावटी पौधों में हमारा ध्यान भी आता है कि हमारे गमले वाले पौधे, ये पौधे जिनको
1: जी जी
0: बोलते हैं, गमलीय पौधों की भी अगर हम बात करें तो इसकी भी फर्दर आगे दो और श्रेणियां हो जाती हैं। जैसे ऐसे पौधे, गमलीय पौधे जिसमें पुष्प खिलते हैं, ऐसे गमलीय पौधे जो सिर्फ सजावट के लिए, उनके पत्ते इतने सुंदर होते हैं तो
1: जी
0: फॉलिएज प्लांट्स उसको बोलते हैं, सजावट के लिए इस्तेमाल किए जा सकते। तो रीटा जी, पहले मैं ये बताऊंगा आपको कि हमारे जो फ्लावरिंग पॉटेड प्लांट्स
1: जी
0: वो कौन कौन से हैं जो हम हमारे समशीतोष्ण क्षेत्र उगाकर, जिनकी मांग जो है मैदानी क्षेत्रों में रहती है। तो जैसे कि साइक्लेमेन है, प्लारगोनियम है, फूशिया, हाइड्रेंजिया, ट्यूबरोज बिगोनिया, प्रिमुला स्पीशीज, कैल्सियोलेरिया, तो ये इस तरह के पुष्प हैं जो
1: जी
0: हम मध्य पर्वतीय क्षेत्र और ऊंचे पर्वतीय क्षेत्र में उगाकर और हमारे डोमेस्टिक जो यहाँ की डिमांड है उसको भी
1: जी
0: पूरा कर सकते
1: हाँ
0: हैं
1: जी
0: और मैदानी क्षेत्रों में भी इन्हें बेच सकते हैं। इसके अलावा जो है हमारे जो मैदानी क्षेत्र है या सब ट्रॉपिकल जो रीजन है प्रदेश के,
1: जी
0: उसमें हम पॉइंसीटिया, यूफोर्बिया, कलेंचू, स्पैथिफाइलम, मिनी जर्बेरा, इम्पेशंस, मिनी रोजेस, पॉटेड बुगेनिया, विंका और क्लेरोडेंड्रॉन, इस तरह के पुष्प अगर हम लगाएंगे तो
1: जी
0: इनकी मांग प्रदेश में भी रहती है और प्रदेश से बाहर भी रहती है। तो ये तो वो पौधे थे जिनमें कि पुष्प खिलते हैं पॉटेड। इसके अलावा जैसे सजावटी पौधों की पत्तों की बात करें तो उसमें रेक्स बिगोनिया, पेपरोमिया कैपराटा और कुछ रसदार पौधे हैं जैसे सकुलेंट्स कहते हैं उनको, डम्स, रॉक रोज, क्रेसुला, एओनियम, इस तरह के पौधे जो हैं हम गमलों में लगा सकते हैं। गमलों के अलावा अगर हम बात करें तो गमलीय पौधों के अलावा, जैसे मैंने भूदृश्य निर्माण की बात की थी
1: हाँ
0: या
1: जी
0: लैंडस्केपिंग की बात की थी, क्योंकि आजकल हमने देखा है कि हर कोई अपने घर को सजाना चाहता है, घर के आगे लॉन भी लगाना
1: हाँ
0: चाहता
1: जी
0: है,
1: हाँ जी
0: क्यारियों में पौधे लगाना चाहता है, तो उसमें जो भी पुष्प हमारे सजावटी पुष्प लगते हैं उसकी मांग भी काफ़ी अधिक रहती है। जैसे अगर हम झाड़ीनुमा पौधों की बात करें तो प्रिविट है, यूनाइमस, जुट्जिया, दुरांटा, स्पाइरिया, इस तरह की झाड़ियां हैं जिनकी मांग हमारे प्रदेश में रहती है
1: जी
0: और लैंडस्केपिंग में इस्तेमाल किए जा सकते हैं। कुछ वृक्ष हैं जैसे जूनिपर्स हैं, थूजा, मैग्नोलिया, सेलिक्स, लबर्नम, ये इस तरह के वृक्ष हैं
1: जी
0: जो हम लॉन के आसपास लगा सकते हैं।
1: जी तो डॉक्टर साहब, ये भी आपने बहुत अच्छी जानकारी दी कि हिमाचल प्रदेश में कौन कौन से सजावटी पौधे लगा सकते हैं और प्रदेश के बाहर भी इनकी मांग रहती है। तो डॉक्टर साहब, आप हमारे स्टूडियो में आए और आपने इतनी बेहतर जानकारी दी प्रदेश में सजावटी पौधों का उत्पादन एवं व्यावसायिक संभावनाएं इस विषय पर। इस सब जानकारी के लिए डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: बहुत बहुत धन्यवाद जी।
1: तो किसान भाइयों, ये तो सुनी आपने जानकारी पूर्ण बातचीत का पुनः प्रसारण। विषय था प्रदेश में सजावटी पौधों का उत्पादन एवं संभावनाएं। बात कर रहे थे डॉक्टर रंजन से रीता हंस।
2: तो किसान भाइयों, एक बार फिर मनोरंजन कर लेते हैं पहाड़ी लोकगीत के साथ। तो आइए सुनते हैं कृष्ण लाल सहगल की आवाज में ये लोकगीत।

तो किसान भाइयों, ये तो सुना आपने कृष्णलाल सहगल की आवाज में प्यारा सा लोकगीत। तो किसान भाइयों, अब समय हो गया है कार्यक्रम समाप्त करने का, अनुमति चाहेंगे। नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता दीपक।

0: अभी आप सुन रहे थे एक ऋषि जगत कार्यक्रम।
1: श्रोताओं नमस्कार, मैं दीपशिखा शर्मा, जनगणना कार्य निदेशक हिमाचल प्रदेश, आप सबको यह अवगत कराना चाहती हूं कि हमारी जो हिमाचल प्रदेश की जनगणना का प्रथम चरण है, यानी मकानों की गणना एवं मकान सूचीकरण, वह 16 जून से 15 जुलाई के भीतर हिमाचल में कंडक्ट किया जाएगा। और इस बार हमारा स्वगणना का प्रावधान की ऑप्शन दी गई है या विकल्प रखा गया है। आप जरूर स्वगणना पोर्टल sc.census.gov.in पर जाकर अपनी डिटेल भरें। बाद में हमारे प्रगणक आपके पास आकर उसको वेरीफाई करेंगे और फाइनली पोर्टल पर सबमिट करेंगे। मैं आप सबको यह अवगत कराना चाहती हूं कि जो हमारा जनगणना का डाटा होता है, जनसांख्यिकी, आर्थिक स्थिति, घरों की स्थिति के बारे में, या फिर हमारी शिक्षा, साक्षरता और इस तरह की जो हमारी मूलभूत जानकारियां होती हैं, वह हमारे राष्ट्र निर्माण के लिए बहुत ज्यादा आवश्यक है, क्योंकि हमारे जो आंकड़े हैं उनसे हमारी नीति निर्माण और रिसोर्स एलोकेशन बहुत अच्छे से किया जा सकता है। इसलिए आप सब अपनी जानकारी खुलकर प्रदान करें। आपके जो प्रगणक और पर्यवेक्षक हैं यानी गणनाकार हैं, वो आप ही के आसपास के कोई भी सरकारी कर्मचारी होंगे। जब वो आपके घर आए तो आप उनका स्वागत करें और उनको जानकारी दें। यदि आपको किसी भी तरह का कोई डाउट होता है, कंफ्यूजन होता है, आप उनका आई कार्ड देख सकते हैं जिसपे की एक QR कोड है, उसे स्कैन करके आप उनकी जानकारी ले सकते हैं। और आपसे किसी भी तरह का कोई भी OTP या दस्तावेज कभी भी नहीं मांगा जाएगा। आपको सिर्फ अपने 33 प्रश्नों की जानकारी जनगणना के प्रथम चरण के लिए देनी है। धन्यवाद।
0: जुड़े हैं आप 103.7 MHz पर आकाशवाणी FM शिमला के साथ। कृपया हमारी अगली घोषणा की प्रतीक्षा कीजिए।
2: आकाशवाणी का ये शिमला केंद्र है। थोड़ी ही देर में प्रादेशिक समाचार प्रसारित होंगे, जिन्हें आकाशवाणी के हमीरपुर और धर्मशाला केंद्रों के साथ साथ FM शिमला 103.7 MHz, मोबाइल ऐप और रेडियो की DTH सेवा पर भी सुना जा सकता है।
3: बुजुर्गों को सभी हक मिले, सम्मान सहित जीवन चले,
4: 1015-1700 पेंशन हर माह मिले सुरक्षा संरक्षण,
3: पेंशन का है वादा न्यारा, अंत समय तक वृद्धों का सहारा।
4: आज ही आवेदन करें, हिम परिवार पोर्टल से जुड़ें।
3: अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें तहसील या जिला कल्याण अधिकारी से।
4: सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।

0: सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग हिमाचल प्रदेश नशे के विरुद्ध जागरूकता अभियान एवं नशा मुक्ति पुनर्वास के लिए सतत प्रयासरत है। प्रदेश सरकार कुल 5 नशा मुक्ति केंद्रों का संचालन कर रही है, जिसमें निशुल्क काउंसलिंग, उपचार तथा पुनर्वास की सुविधा प्रदान की जा रही है और कोटला बड़ोग जिला सिरमौर में 100 बिस्तरों की क्षमता वाला आधुनिक सुविधा युक्त आदर्श नशा मुक्ति पुनर्वास केंद्र भी स्थापित किया जा रहा है। विभाग द्वारा सभी जिलों में विभिन्न सरकारी विभागों एवं स्वयंसेवी संस्थाओं के समन्वय से स्कूलों, कॉलेजों और गांव-गांव में बच्चों, युवाओं तथा महिलाओं हेतु जागरूकता अभियान का संचालन किया जा रहा है।
1: प्रिय प्रदेशवासियों, नशा केवल एक व्यक्ति को नहीं बल्कि उसके पूरे परिवार, समाज और पूरे प्रदेश को प्रभावित करता है। हमारी युवा शक्ति ही प्रदेश की सबसे बड़ी ताकत है और उन्हें नशे के अंधकार से सुरक्षित रखना हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है। प्रदेश सरकार नशे के समूल नाश के लिए प्रतिबद्ध है। स्कूलों, कॉलेजों और गांव-गांव में व्यापक जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं। आइए हम सब मिलकर नशे के विरुद्ध अपनी आवाज बुलंद करें और एक स्वस्थ, सुरक्षित एवं नशा मुक्त प्रदेश के निर्माण का संकल्प।
0: सुनो सुनाओ यही संदेश, नशा मुक्त हो अपना प्रदेश। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राकेश शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले आज के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने भारत के सबसे लंबे कार्यकाल वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री। प्रदेश भर में भाजपा ने हवन यज्ञ कर मांगी लंबी उम्र की दुआ। राज्यपाल कविंद्र गुप्ता ने युवाओं से किया जन कल्याणकारी गतिविधियों में बढ़ चढ़कर भाग लेने का आह्वान। मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कहा प्रदेश सरकार व्यवसाय में सुगमता को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध। प्रदेश सरकार ने उप मुख्यमंत्री, मंत्रियों, विधानसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और विधायकों के वेतन को डेफर करने की अधिसूचना ली वापस। जुलाई में बकाया राशि सहित मिलेगा पूरा वेतन। और नाहन में सर्वसम्मति से चुने गए पंचायत समिति के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष, भाजपा ने दूसरी बार जमाया कब्जा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बन गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 26 मई 2014 को पद की शपथ ली थी। उन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू का रिकॉर्ड तोड़ दिया है, जिन्होंने पहली बार 13 मई 1952 को निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली थी और 27 मई 1964 तक सेवा की थी। पंडित नेहरू का निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में कार्यकाल 4398 दिनों का था। 26 मई 2014 से आज 10 जून 2026 तक प्रधानमंत्री मोदी का निरंतर कार्यकाल अब 4399 दिनों का हो गया है, जिससे वे भारत के इतिहास में सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बन गए हैं। इस बीच नरेंद्र मोदी द्वारा निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में सबसे लंबे कार्यकाल का कीर्तिमान स्थापित करने की खुशी और उनकी दीर्घायु की कामना में आज प्रदेश भर में भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं द्वारा हवन यज्ञ का आयोजन किया गया। सोलन में भाजपा शहरी मंडल द्वारा इस मौके पर आयोजित हवन यज्ञ के बाद भारत सरकार में सहकारिता राज्य मंत्री कृष्णलाल गुर्जर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समक्ष कई विकराल समस्याएं आईं, लेकिन उन्होंने सफलतापूर्वक देश को इन समस्याओं से उबारा।
1: आज आदरणीय नरेंद्र मोदी जी देश के सबसे लंबे समय तक रहने वाले प्रधानमंत्री का रुतबा उन्होंने हासिल किया है और इन 12 सालों में आदरणीय मोदी जी ने देश को जो आर्थिक तौर पर मजबूत किया है, देश की सांस्कृतिक विरासत को मजबूत किया है, ये अपने आप में एक मिसाल है, अद्भुत है, अद्वितीय है, अतुलनीय है। ऐसा प्रधानमंत्री जिसके हाथों में देश का खजाना भी सुरक्षित है, देश की सीमाएं भी, तो ऐसे प्रधानमंत्री के लिए आज पूरे देश मंदिरों में भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं।
0: शिमला में भी इस मौके पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने हवन यज्ञ का आयोजन कर प्रधानमंत्री की दीर्घायु की कामना की। इस मौके पर भाजपा उपाध्यक्ष व विधायक विनोद कुमार ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने विश्व में नई पहचान स्थापित की है।
2: आज शिमला के राम मंदिर में भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं की ओर से देश के प्रधानमंत्री श्रद्धेय नरेंद्र भाई मोदी जी के दीर्घ आयु के लिए, वो स्वस्थ रहे, देश के करोड़ों लोगों की सेवा इसी तरह से करते रहे, उस संदर्भ में आज राम मंदिर में हवन और पूजा का आयोजन यहाँ पे किया गया।
0: राज्यपाल

0: उपेंद्र गुप्ता ने युवाओं से आह्वान किया है कि वे जन कल्याणकारी गतिविधियों में बढ़ चढ़कर भाग लें। राज्यपाल आज शिमला में हिमाचल प्रदेश राज्य रेडक्रॉस सोसाइटी द्वारा आयोजित रक्तदान शिविर व निःशुल्क दंत स्वास्थ्य जांच शिविर के उद्घाटन अवसर पर बोल रहे थे। राज्यपाल ने रेडक्रॉस द्वारा समाज के प्रति किए जा रहे प्रयासों की सराहना की। राज्यपाल ने बाद में अखिल भारतीय कलाकार संघ के वार्षिक समारोह और अखिल भारतीय नाट्य व नृत्य प्रतियोगिता के समापन समारोह की अध्यक्षता भी की। उन्होंने इस मौके पर कहा कि कला केवल मनोरंजन का माध्यम नहीं है, बल्कि सामाजिक समरसता, संवेदनशीलता और राष्ट्रीय एकता को सुदृढ़ करने का प्रभावशाली माध्यम भी है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि प्रदेश सरकार व्यवसाय में सुगमता को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री शिमला में श्रम व रोजगार विभाग की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने अधिकारियों को विभाग द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का लाभ सभी पात्र लाभार्थियों तक समय और प्रभावी ढंग से पहुंचाने के निर्देश दिए। उन्होंने विभाग को प्रमाण पत्र और लाइसेंस सेवाओं जैसी प्रक्रिया को पूरी तरह ऑनलाइन और डिजिटाइज करने के निर्देश भी दिए, ताकि लोगों को किसी प्रकार की असुविधा न हो। तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी ने कहा है कि घुमारवीं विधानसभा क्षेत्र का समग्र विकास उनकी प्राथमिकता है और यहां विकास कार्यों के लिए धन की कोई कमी नहीं है। उन्होंने विभिन्न विकास कार्यों की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को सभी कार्यों को निर्धारित समय अवधि के भीतर पूरा करने के निर्देश दिए, ताकि लोगों को इनका लाभ मिल सके। उन्होंने कहा कि घुमारवीं में निर्माणाधीन मिनी सचिवालय भवन के कार्यों को पूरा करने के लिए सरकार ने अतिरिक्त 7 करोड़ रुपये जारी किए हैं। उप मुख्य सचेतक केवल सिंह पठानिया ने कहा है कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कांगड़ा के गग्गल हवाई अड्डे के पास सरकारी भूमि पर बसे दुकानदारों और अन्य काम करने वाले 113 परिवारों को 16 करोड़ 76 लाख रुपए की सहायता राशि मंजूर की है। उन्होंने कहा कि ये पहला ऐसा मामला है जहां सरकारी भूमि पर कारोबार करने वालों को सरकार भूमि अधिग्रहण करने के लिए सहायता राशि प्रदान कर रही है। ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज़ शिमला, एक्स हैंडल @AIRNews_शिमला और यूट्यूब चैनल AIR शिमला न्यूज़ को फॉलो कर सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी शिमला से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रदेश सरकार ने उप मुख्यमंत्री, मंत्रियों, विधानसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और विधायकों के वेतन के कुछ हिस्से को स्थगित करने के आदेश वापस ले लिए हैं। इस संबंध में आज अधिसूचना जारी की गई। अधिसूचना के अनुसार स्थगित की गई वेतन की रकम अब इन्हें जुलाई महीने में जून महीने के वेतन के साथ मिल जाएगी। हालांकि मुख्यमंत्री के वेतन का 50% हिस्सा आगामी आदेशों तक स्थगित रहेगा। प्रदेश सरकार ने 18 अप्रैल को जारी अधिसूचना में उप मुख्यमंत्री, मंत्रियों, विधानसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और विधायकों के वेतन को कुछ हिस्सा डिफर कर दिया था। पंचायत समिति नाहन के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद पर भाजपा ने फिर से कब्जा जमा लिया है। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद के लिए आज हुए चुनाव में भाजपा समर्थित रमेश चौधरी को अध्यक्ष और माया देवी को उपाध्यक्ष चुना गया। नाहन के SDM राजीव सांख्यान ने बताया कि चुनाव में 15 में से 11 सदस्यों ने हिस्सा लिया और चुनाव सर्वसम्मति से हुआ।
1: पंचायत समिति नाहन के लिए अध्यक्ष पद के लिए श्री रमेश मारकर ग्राम पालियों को निर्विरोध निर्वाचित अध्यक्ष किया गया और उपाध्यक्ष पद के लिए माया देवी पत्नी अशोक कुमार ग्राम बलसार ग्राम पंचायत कौलामाला भुगतो पंचायत समिति नाहन का निर्विरोध उपाध्यक्ष निर्वाचित घोषित किया गया और उसके बाद विधि के अनुसार दोनों अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को संविधान और सत्य शपथ दिलाई।
0: राष्ट्रीय अनुसूचित जाति व जनजाति आयोग ने प्रदेश के जनजातीय क्षेत्रों के विकास और इन क्षेत्रों में रह रहे लोगों की कल्याण की दिशा में प्रदेश सरकार के प्रयासों की सराहना की है। आयोग के अध्यक्ष अत्र सिंह आर्य ने शिमला में उच्च अधिकारियों की एक बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि कठिन भौगोलिक परिस्थितियों के बावजूद हिमाचल जनजातीय विकास की दिशा में बेहतर कार्य कर रहा है। उन्होंने जनजातीय क्षेत्रों में लोगों को और बेहतर सुविधाएं प्रदान करने के निर्देश दिए। आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों ने आज युवा संसद कार्यक्रम के तहत प्रदेश के जनजातीय क्षेत्रों के युवाओं के साथ बातचीत भी की। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष राजीव बिंदल ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीते 12 वर्षों में देश ने अभूतपूर्व आर्थिक प्रगति की है और करोड़ों गरीबों को विकास की मुख्यधारा से जोड़ा है। बिंदल ने आज नाहन में कहा कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत की अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा नई ऊंचाइयों तक पहुंची है और आतंकवाद, उग्रवाद और अलगाववाद के विरुद्ध निर्णायक कार्रवाई कर देश को अधिक सुरक्षित बनाया गया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के सफल 12 वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य में विश्वास के विकास के 12 वर्ष, गरीब

0: कल्याण के 12 वर्ष कार्यक्रमों में हिस्सा लेने के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा 12 और 13 जून को शिमला के 2 दिवसीय प्रवास पर रहेंगे। मंडी जिला के स्कूलों में किए गए सोशल ऑडिट में आपदा प्रबंधन, आधारभूत ढांचे की सुरक्षा और समावेशी शिक्षा से जुड़ी गंभीर कमियां सामने आई हैं। सर्वेक्षण में एक भारत श्रेष्ठ भारत के क्रियान्वयन और समावेशी शिक्षा के क्षेत्र में भी कमियां पाई गई हैं। सर्वेक्षण से जुड़े अधिकारियों ने कहा है कि इन निष्कर्षों पर तत्काल ध्यान देने की जरूरत है ताकि जिला के सभी स्कूल विद्यार्थियों के लिए सुरक्षित हो सकें। प्रदेश में भीषण गर्मी का दौर जारी है। ऊना में आज अधिकतम तापमान 43 डिग्री से अधिक दर्ज किया गया। राजधानी शिमला में भी आज तापमान 28.3 डिग्री तक पहुंच गया, जिसके चलते लोगों को जोरदार तपिश का सामना करना पड़ रहा है। इस बीच मौसम विभाग ने 11 और 12 जून को राज्य में अधिकांश स्थानों पर वर्षा होने और 4 जिलों कुल्लू, मंडी, शिमला और सिरमौर में कुछ स्थानों पर अंधड़, ओलावृष्टि और 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आंधी तूफान चलने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अंतर्राष्ट्रीय शिमला ग्रीष्मोत्सव में आज से मिनी बैडमिंटन चैंपियनशिप आरंभ हुई। चैंपियनशिप का शुभारंभ उपायुक्त अनुपम कश्यप ने किया। ये चैंपियनशिप अंडर 11, 13 और 15 आयु वर्ग में लड़के और लड़कियों के लिए आयोजित की जा रही है। इस प्रतियोगिता में शिमला जिला से लगभग 180 प्रतिभागी हिस्सा ले रहे हैं। उपायुक्त ने इस मौके पर कहा कि विद्यार्थी जीवन में पढ़ाई के साथ साथ खेलों का भी महत्वपूर्ण स्थान है। इस प्रतियोगिता का आयोजन शिमला जिला बैडमिंटन एसोसिएशन द्वारा किया जा रहा है। सर्वोच्च न्यायालय ने लंबित मामलों को आपसी सुलह और मध्यस्थता के माध्यम से निपटाने के लिए गूगल फॉर्म माध्यम से ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 31 जुलाई कर दी है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने भारत के सबसे लंबे कार्यकाल वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री। प्रदेश भर में भाजपा ने हवन यज्ञ कर मांगी लंबी उम्र की दुआ। राज्यपाल कविंद्र गुप्ता ने युवाओं से किया जन कल्याणकारी गतिविधियों में बढ़ चढ़कर भाग लेने का आह्वान। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा प्रदेश सरकार व्यवसाय में सुगमता को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध। प्रदेश सरकार ने उप मुख्यमंत्री, मंत्रियों, विधानसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और विधायकों के वेतन को डेफर करने की अधिसूचना ली वापस। जुलाई में बकाया राशि सहित मिलेगा पूरा वेतन। और नाहन में सर्वसम्मति से चुने गए पंचायत समिति के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष, भाजपा ने दूसरी बार जमाया कब्जा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं कल सुबह 9:20 पर। नमस्कार।
1: अभी आप सुन रहे थे प्रादेशिक समाचार, जिन्हें आकाशवाणी के हमीरपुर और धर्मशाला केंद्रों के साथ साथ FM शिमला 103.7 MHz पर भी प्रसारित किया जा रहा था। कृपया हमारी अगली घोषणा की प्रतीक्षा कीजिए। ये आकाशवाणी का शिमला केंद्र है। आइए सुनते हैं देश गान।

0: आकाशवाणी शिमला से अभी आप सुन रहे थे देश गान। कृपया हमारी अगली घोषणा की प्रतीक्षा कीजिए।
1: हेलो, गुड इवनिंग, आदाब, नमस्कार। 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी FM शिमला। स्वागत है आप सभी सुनने वालों का भूले बिसरे गीत कार्यक्रम में। हो जाइए तैयार अपनी पुरानी यादों को फिर से जी लेने के लिए। जी हाँ, पुराने फिल्मी गीतों का आनंद आप लेंगे हमेशा की तरह इस कार्यक्रम में। तो आइए शुरुआत करते हैं इस गीत से।

तेरी मोहब्बत का ये आलम है, हर पल तेरा इंतज़ार करते हैं। तेरे बिना यूँ अधूरी हमारी ज़िंदगी, जैसे बिन चांद रात अधूरी है। अनाड़ी फिल्म का गीत आपने सुना, आवाज़ें थी मुकेश और लता मंगेशकर की। और अगला गीत आपको सुनाने जा रहे हैं नया दौर फिल्म से, आइए सुनते हैं, जिसे गाया है आशा भोसले और मोहम्मद रफ़ी ने।

0: जीवन भाई, खेतों के सामने खड़े होकर क्यों मुस्कुरा रहे हो?
1: अरे भाई, खुशी तो होगी, अब हमें हमारी मेहनत के अच्छे दाम जो मिल रहे हैं। किसानों की भलाई के बारे में सोचते हुए हमारे मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पहली बार प्राकृतिक खेती से तैयार फसलों के लिए MSP तय की है, और इन फसलों के लिए MSP देने वाला हिमाचल देश का पहला राज्य है। इस साल से सरकार ने प्राकृतिक खेती से तैयार गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 60 रुपए से बढ़ाकर 80 रुपए प्रति किलोग्राम, मक्की का समर्थन मूल्य 40 रुपए से बढ़ाकर 50 रुपए प्रति किलोग्राम तथा कच्ची हल्दी का समर्थन मूल्य 90 रुपए से बढ़ाकर 150 रुपए प्रति किलोग्राम किया है। पांगी घाटी में प्राकृतिक रूप से उगाए जा रहे जौ की MSP को 60 रुपए से बढ़ाकर 80 रुपए प्रति किलोग्राम किया है। पहली बार अदरक के लिए 30 रुपए प्रति किलोग्राम का समर्थन मूल्य निर्धारित किया गया है। राज्य में बीज गांव तैयार किया जाएगा, जिसमें किसान पारंपरिक बीजों का उत्पादन करेंगे। और भी सुनो भाई, प्रदेश में राज्य किसान आयोग बनाया जाएगा, जिससे हम अपनी मांगों को सरकार तक और आसानी से पहुंचा पाएंगे। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू रख रहे हैं किसानों की जरूरतों का ख्याल, और समृद्ध किसान बना रहे हिमाचल की पहचान।
2: गाँव का करके विकास, आत्मनिर्भर राज्य की दिशा में सरकार कर रही सार्थक प्रयास। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जनहित में जारी।
3: भूले बिसरे गीत कार्यक्रम का आनंद आप ले रहे हैं FM शिमला से। गीत संगीत का सिलसिला चलता रहेगा, यूं ही तो सुनते हैं अगला गीत।

0: हत्म अफसाना है आंसुओं की जुबानी मोहब्बत की दास्तां सुना।
1: तेरी मुस्कान देखकर दिन बन जाता है, तेरी खुशी में खुशी छिपी है, दिल की बात जुबां पर आती नहीं, तुमसे मोहब्बत है ये बताती नहीं, तुम्हें पाने की चाहत है दिल में, तुम मिले ना मिले इंतज़ार रहेगा, तुम्हारे बगैर अधूरी है ये मोहब्बत की दास्तां, क्योंकि मेरी ज़िंदगी की तुम ही हो पहचान। भूले बिसरे गीत कार्यक्रम आप सुन रहे हैं FM शिमला से, और घड़ी की सुइयां अब इशारा कर रही है कार्यक्रम के समापन की ओर। तो कार्यक्रम के अंतिम पेशकश है एक मुसाफिर एक हसीना फिल्म का ये गीत, जिसे गाया है मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले ने। लेकिन उससे पहले ये संदेश।

0: जिनके पास अपार वृद्ध हैं समाज की असली धार।
1: सीखें युवा दे सम्मान, यही है पीढ़ियों की पहचान।
2: पीढ़ी से पीढ़ी करें संवाद, अनुभव सीख ही है असली जायदाद।
0: सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।

0: भूले बिसरे गीत कार्यक्रम में आज बस इतना ही।
1: श्रोताओं नमस्कार, मैं दीपशिखा शर्मा, जनगणना कार्य निदेशक हिमाचल प्रदेश, आप सबको यह अवगत कराना चाहती हूं कि हमारी जो हिमाचल प्रदेश की जनगणना का प्रथम चरण है, यानी मकानों की गणना एवं मकान सूचीकरण, वह 16 जून से 15 जुलाई के भीतर हिमाचल में कंडक्ट किया जाएगा। और इस बार हमारा स्वगणना का प्रावधान की ऑप्शन दी गई है या

0: विकल्प रखा गया है। आप जरूर स्वगणना पोर्टल sc.census.gov.in पर जाकर अपनी डिटेल भरें। बाद में हमारे प्रगणक आपके पास आकर उसको वेरीफाई करेंगे और फाइनली पोर्टल पर सबमिट करेंगे। मैं आप सबको यह अवगत कराना चाहती हूं कि जो हमारा जनगणना का डाटा होता है, जनसांख्यिकी, आर्थिक स्थिति, घरों की स्थिति के बारे में, या फिर हमारी शिक्षा, साक्षरता और इस तरह की जो हमारी मूलभूत जानकारियां होती हैं, वह हमारे राष्ट्र निर्माण के लिए बहुत ज्यादा आवश्यक है, क्योंकि हमारे जो आंकड़े हैं उनसे हमारी नीति निर्माण और रिसोर्स एलोकेशन बहुत अच्छे से किया जा सकता है। इसलिए आप सब अपनी जानकारी खुलकर प्रदान करें। आपके जो प्रगणक और पर्यवेक्षक हैं यानी गणनाकार हैं, वो आप ही के आसपास के कोई भी सरकारी कर्मचारी होंगे। जब वो आपके घर आए तो आप उनका स्वागत करें और उनको जानकारी दें। यदि आपको किसी भी तरह का कोई डाउट होता है, कन्फ्यूजन होता है, आप उनका आई कार्ड देख सकते हैं जिसपे की एक QR कोड है, उसे स्कैन करके आप उनकी जानकारी ले सकते हैं। और आपसे किसी भी तरह का कोई भी OTP या दस्तावेज कभी भी नहीं मांगा जाएगा। आपको सिर्फ अपने 33 प्रश्नों की जानकारी जनगणना के प्रथम चरण के लिए देनी है। धन्यवाद।
1: जुड़े हैं आप 103.7 MHz पर आकाशवाणी FM शिमला के साथ। फिल्म संगीत का समय है, तो सबसे पहले सुनाते हैं आपको कोयला फिल्म का ये गीत।

कोयला फिल्म का गीत अभी आपने सुना, आवाजें थी कुमार सानू और अलका याग्निक की। अगला गीत आपको सुनाने जा रहे हैं मनोरंजन फिल्म से, जिसे गाया है आशा भोसले और किशोर कुमार ने, आनंद बख्शी के बोल और संगीत है आर डी बर्मन का।

फिल्म संगीत में फिलहाल इतना ही। 103.7 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी FM शिमला के साथ जुड़े हैं आप समाचार संध्या और न्यूज़ एट 9। अब आप सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से बस कुछ ही पलों में।

ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಅರುಣಾ. मुख्य समाचार. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 140 करोड़ भारतीयों की आकांक्षाएं निश्चित रूप से पूरी होने का आश्वासन दिया. कहा, विकसित भारत सभी देशवासियों का सपना होना चाहिए. राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन ने श्री मोदी को लगातार देश के सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री बनने पर बधाई दी. केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अहमदाबाद मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण को और आंध्र प्रदेश के अमरावती में ढांचागत परियोजनाओं को स्वीकृति दी.

0: सरकार ने वस्त्रों के लिए PLI योजना के तीसरे चरण के अंतर्गत 96 कंपनियों को मंजूरी दी। इन कंपनियों ने लगभग 13,000 करोड़ रुपए के निवेश की प्रतिबद्धता व्यक्त की। रक्षा मंत्रालय संचालन सुरक्षा बढ़ाने के लिए नौसेना के जहाजों के लिए 20 आधुनिक जैमर खरीदेगा। और ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन में पीवी सिंधु और तन्वी शर्मा सिंगल्स के प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंची। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश के 140 करोड़ नागरिकों की आकांक्षाएं अवश्य पूरी होंगी। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन NDA ने हमेशा देश के भरोसे को मजबूत किया है। नई दिल्ली में NDA की बैठक में उन्होंने कहा कि कांग्रेस के विश्वासघात के बाद देश की जनता ने NDA सरकार पर भरोसा जताया है। उन्होंने कहा कि 2014 में आशा की जो किरण जगी थी वे आज नए आत्मविश्वास की किरण में बदल गई है। उन्होंने कहा कि पहली बार देश की जनता ने देखा है कि जब कोई सरकार सही इरादों से चलाई जाती है तो विकास भी तेजी से होता है।
1: NDA सरकार के इन 12 वर्षों में 25 करोड़ से ज्यादा लोगों का गरीबी से बाहर निकलना, ये दिखाता है कि हमारी नीतियां सही हैं, हमारी दिशा सही है। ये सफलता आज देश के हर उस व्यक्ति को एक भरोसा देती है कि एक न एक दिन उसका संघर्ष भी खत्म होगा, एक दिन उसके सपने भी पूरे होंगे।
0: श्री मोदी ने कहा कि देश लगातार विकास के नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है।
1: NDA के 12 वर्षों की उपलब्धियों की एक और विशेषता है, हमें ये उपलब्धियां वैश्विक अस्थिरता और अशांति के दौर में हासिल हुई है। दुनिया के बड़े बड़े देशों की अर्थव्यवस्थाएं संघर्ष कर रही है, तब भी 2025-26 में भारत ने 7.7% की ग्रोथ रेट हासिल की है और पिछला क्वार्टर तो जो 31 मार्च को खत्म हुआ उसमें भी भारत की ग्रोथ 7.8% रही है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि देश की जनता ने राष्ट्रीय स्तर पर राजनीतिक स्थिरता के महत्व को समझ लिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित भारत सभी देशवासियों का सपना होना चाहिए।
1: आज देश का हर नागरिक विकसित भारत के सपने से भरा हुआ है। विकसित भारत का सपना अब किसी एक व्यक्ति का नहीं रहा, किसी सरकार का नहीं रहा, किसी दल का नहीं रहा, देश के जन जन का सपना बन चुका है, संकल्प बन चुका है। और इस सपने की पूर्ति के लिए हमें अपना हर पल समर्पित करना है। NDA के 12 वर्षों की एक बड़ी सफलता ये भी है कि देश कांग्रेस के कुचक्र से आजाद हुआ है।
0: श्री मोदी ने कहा कि NDA राष्ट्र की सेवा और विकसित भारत के दृष्टिकोण को साकार करने के लिए नए जोश के साथ मिलकर काम करना जारी रखेगा।
1: महिलाओं को आरक्षण, 3 तलाक के खिलाफ कानून, CAA का कानून, भारतीय न्याय संहिता, सैनिकों को 1 रैंक 1 पेंशन, NDA सरकार राष्ट्रहित में कोई भी काम करने से पीछे नहीं रही और हम सभी को इस बात पर गर्व है। मैं आज देश को फिर आश्वस्त करूंगा, देश हित के बड़े फैसलों का यह सिलसिला और भी तेज होगा।
0: इससे पहले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन NDA ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भारत के सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने की उपलब्धि पर बधाई देते हुए एक प्रस्ताव पारित किया। प्रस्ताव पेश करते हुए आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री N. चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। श्री मोदी इस महान राष्ट्र के प्रधानमंत्री के रूप में सेवा करने के लिए सही समय पर सही स्थान पर सही नेता हैं। गठबंधन के सभी घटक दलों के साथ साथ प्रधानमंत्री मोदी सहित भाजपा के शीर्ष नेता और NDA शासित सभी 22 राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री भी बैठक में शामिल हुए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति CP राधा कृष्णन और केंद्रीय मंत्रियों ने इस उपलब्धि पर श्री मोदी को बधाई दी है। प्रधानमंत्री को दुनिया भर से बधाई संदेश आ रहे हैं। एक रिपोर्ट।
2: यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लैन ने कहा है कि श्री मोदी के नेतृत्व में भारत चांद पर पहुंच गया और अब वह आसमान की ऊंचाइयों को छूने का लक्ष्य बना रहा है। इटली की प्रधानमंत्री जियोर्जिया मेलोनी ने दोनों देशों के लोगों के लिए नए अवसर सृजित करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी के साथ काम करने की इच्छा व्यक्त की। साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स ने कहा कि यह उपलब्धि प्रधानमंत्री मोदी की वर्षों की समर्पित सेवा और नेतृत्व को दर्शाती है। डेनमार्क की

0: प्रधानमंत्री मैथे फ्रेडिक्सन ने द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने के लिए उनके साथ काम जारी रखने की इच्छा व्यक्त की। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ली जे म्यूंग ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने वर्षों से आर्थिक और विकासात्मक प्रगति का मार्गदर्शन किया है। श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमार दिसानायका, पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री जेम्स मारापे और त्रिनिदाद तथा टोबैगो की प्रधानमंत्री कमला प्रसाद बिसेसर ने ग्लोबल साउथ के लिए श्री मोदी के प्रयासों की सराहना की। समाचार कक्ष से जया भारती।
1: केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज एक प्रस्ताव पारित कर प्रधानमंत्री को बधाई दी। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि ये प्रस्ताव श्री मोदी की राष्ट्र के प्रति निरंतर सेवा में कई प्रतिबद्धताओं और उपलब्धियों को उजागर करता है। उन्होंने कहा कि मंत्रिमंडल ने इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर प्रधानमंत्री को बधाई देने के लिए 7 सूत्रीय प्रस्ताव पारित किया।
2: उनके नेतृत्व में भारत के 25 करोड़ से अधिक गरीबों ने गरीबी को परास्त किया है। राष्ट्र सेवा के प्रति माननीय प्रधानमंत्री जी के अद्वितीय समर्पण एवं अथक परिश्रम के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा को सुदृढ़ बनाने एवं भारत के हितों की रक्षा हेतु और समावेशी विकास एवं सामाजिक न्याय की दिशा में किए गए उनके प्रयासों की सराहना करता है और विकसित भारत के निर्माण के उनके दूरदर्शी संकल्प और नेतृत्व के प्रति अपना पूर्ण समर्थन व्यक्त करता है।
1: इस बीच मंत्रिमंडल ने अहमदाबाद मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण को भी मंजूरी दे दी। इसमें कोटेश्वर रोड से हवाई अड्डे तक का गलियारा शामिल है। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने आंध्र प्रदेश के अमरावती में केंद्र सरकार की 2 प्रमुख ढांचागत परियोजनाओं को भी स्वीकृति दी। इन परियोजनाओं से बड़ी संख्या में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्ष में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मंत्र के साथ देश में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के बारे में एक विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। आज बात युवाओं के सशक्तिकरण की दिशा में सरकार के प्रयासों की।
3: पिछले 12 वर्षों में सरकार ने देश की युवा शक्ति को सशक्त बनाने पर विशेष ध्यान दिया है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत 12 करोड़ से अधिक नए उद्यमियों को ऋण प्रदान किया गया है, जिससे युवाओं के सपनों को नई उड़ान मिली है। सरकार युवाओं को रोजगार और आत्मनिर्भरता की दिशा में आगे बढ़ाने के लिए सशक्त बना रही है, जिससे वे नौकरी तलाशने वाले नहीं बल्कि रोजगार देने वाले बन रहे हैं। छत्तीसगढ़ के रायपुर की महिला उद्यमी ईशा पटेल ने बताया कि कैसे उन्होंने घर पर खाना बनाने से शुरुआत करने से लेकर एक सफल कैफे व्यवसाय स्थापित करने तक की यात्रा की।
4: मैं ना यूथ को लगता है कि हमारे पास फंडिंग नहीं है, बट वो गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में अवेयर नहीं है, तो मैं अपने साइड से यही उन्हें सजेशन देना चाहूंगी। अब थोड़ा रिसर्च करो, जैसे मुद्रा लोन भी है, वैसे पीएमईजीपी लोन भी है, कई लोन जो आपको विदाउट मॉर्गेज मिल रहे हैं। आपके में पोटेंशियल है तो आप जॉब ड्रॉप करो, क्योंकि स्काई हैज नो लिमिट्स फॉर यू।
3: प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत 1,60,00,000 से अधिक युवाओं को प्रशिक्षण प्रदान किया गया है। कुशल युवाओं की बढ़ती संख्या मेक इन इंडिया पहल को नई ऊर्जा दे रही है। रोजगार मेलों के माध्यम से 1,200,000 नियुक्ति पत्र वितरित किए जा चुके हैं, जिससे युवाओं के रोजगार के सपने साकार हो रहे हैं। देश में 2,20,000 से अधिक स्टार्टअप्स ने 23,00,000 से ज्यादा रोजगार के अवसर सृजित किए हैं। वहीं छात्रों द्वारा 16,00,000 नवाचार परियोजनाएं विकसित की गई हैं। प्रधानमंत्री सेतु योजना के तहत 1,000 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों ITI के आधुनिकीकरण के लिए 60,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं, जिससे युवाओं को उद्योगों की आवश्यकताओं के अनुरूप कौशल प्रदान किया जा सकेगा। सरकार के सहयोग और देश की युवा शक्ति के प्रयासों से भारत के विकास का एक नया अध्याय लिखा जा रहा है। अनुपम मिश्र के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.go.in पर।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने वस्त्रों के लिए उत्पादन आधारित प्रोत्साहन PLI योजना के तीसरे चरण के अंतर्गत 22 नए आवेदकों को मंजूरी दी है। वस्त्र मंत्रालय ने बताया है कि इनमें कुल 96 कंपनियों का चयन किया गया है। इन कंपनियों ने 12,822 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश करने का आश्वासन दिया है और इसका अनुमानित कारोबार 58,000 करोड़ रुपए से अधिक है। रक्षा मंत्रालय ने आज भारतीय नौसेना के लिए उन्नत क्षमता के 20 वैश्विक दिशा सूचक उपग्रह प्रणाली GNSS जैमर खरीद के लिए 449 करोड़ रुपए के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। इसमें न्यूनतम 75% स्वदेशी सामग्री का प्रावधान शामिल है। ये प्रणाली दुश्मन की उपग्रह आधारित दिशा सूचक प्रणाली को बाधित कर उसकी संचालन क्षमता को कमजोर कर सकती है। सरकार ने सूक्ष्म वित्त संस्थानों के लिए दूसरे चरण की ऋण गारंटी योजना की वैधता को इस वर्ष 31 अगस्त तक या 20,000 करोड़ रुपए की गारंटी जारी होने तक बढ़ाने की मंजूरी दे दी है। अब तक कुल 770 करोड़ रुपए के ऋण स्वीकृत किए जा चुके हैं। योजना का उद्देश्य राष्ट्रीय ऋण गारंटी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड के माध्यम से ऋण गारंटी सहायता प्रदान करना है। भारत में वर्ष 2014-15 से 2025-26 के बीच 843 अरब डॉलर का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश हुआ है, जो इस अवधि से पिछले 12 वर्ष की तुलना में 169% अधिक है। उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग के अनुसार वैश्विक आर्थिक अनिश्चितताओं के बावजूद भारत में 2025-26 में 94 अरब डॉलर से अधिक का ऐतिहासिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश हुआ है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में भारत विश्व की सबसे महत्वपूर्ण सफलताओं में से एक है। नई दिल्ली में श्री जोशी ने कहा कि प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना से लगभग 42 लाख परिवारों को लाभ हुआ है। मौसम विभाग ने कहा है कि पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से उत्तर पश्चिम भारत में 13 जून तक बारिश होने की संभावना है। अगले 5 से 7 दिन के दौरान उत्तर पश्चिम और उत्तर पूर्व भारत में तेज वर्षा का अनुमान है। हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, पंजाब, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में ओलावृष्टि के साथ बारिश होने की संभावना है। ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स में पीवी सिंधु और तन्वी शर्मा ने प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। सिंधु ने पेरू की इनेस क्रिस्टिलो को और तन्वी शर्मा ने चीनी ताइपी की चियो पिनचियान को मात दी। उधर कार्डिफ में महिला T20 विश्व कप के वार्म अप मैच में इंग्लैंड ने भारत को 5 रन से हराया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आश्वासन दिया कि 140 करोड़ भारतीयों की आकांक्षाएं निश्चित रूप से पूरी होंगी। कहा, विकसित भारत सभी देशवासियों का सपना होना चाहिए। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन ने प्रधानमंत्री को लगातार देश के सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री बनने पर बधाई दी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अहमदाबाद मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण को और आंध्र प्रदेश के अमरावती में ढांचागत परियोजनाओं को स्वीकृति दी। सरकार ने वस्त्रों के लिए PLI योजना के तीसरे चरण के अंतर्गत 96 कंपनियों को मंजूरी दी। इन कंपनियों ने लगभग 13,000 करोड़ रुपए के निवेश की प्रतिबद्धता व्यक्त की। रक्षा मंत्रालय संचालन सुरक्षा बढ़ाने के लिए नौसेना के जहाजों के लिए 20 आधुनिक जैमर खरीदेगा। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम वल्सा विलियम्स विद द न्यूज एट 9। द हेडलाइंस। Prime Minister Narendra Modi assures aspirations of 140 crore Indians will definitely be fulfilled, says Viksit Bharat must be the dream of every single person. National Democratic Alliance lauds Prime Minister Narendra Modi on becoming India's longest serving elected Prime Minister. Union Cabinet approves second phase of Ahmedabad Metro Rail Project, also gives

13 जुलाई 2021 को रिलीज हुई फिल्म तुम बिन, जी हाँ, और अनुभव सिन्हा द्वारा निर्देशित इस फिल्म में मुख्य भूमिकाओं में नजर आए थे प्रियांशु चटर्जी, संदली सिन्हा, हिमांशु मलिक, राकेश बापट और अमृता प्रकाश। और अगर बात करें कहानी की तो कहानी कुछ इस तरह से है फिल्म की कि भारत में अमर शाह की आकस्मिक मृत्यु के बाद कनाडा स्थित शाह इंडस्ट्रीज दिवालिया होने की कगार पर है और पिया शाह अमर की

जाती है। उनके पिता गिरधारी सदमे में हैं और दूसरों के प्रति भी उदासीन हैं, जबकि अमर की बहन और दादी शोक में डूबी हुई होती है। इंस्पेक्टर डी मेलो, जो इस मामले की जांच कर रहे होते हैं, अपने वरिष्ठ अधिकारियों की उदासीनता के बावजूद दुर्घटना के लिए जिम्मेदार व्यक्ति को ढूंढने के लिए दृढ़ संकल्पित होते हैं। ऐसे ही बढ़ती है फिल्म की कहानी आगे, और अंत में क्या होता है कि अभिज्ञान एक धनी कनाडी उद्योगपति है जिसकी मुलाकात पिया से होती है। उसे एहसास होता है कि पिया ही उसके लिए सही जीवन साथी है। वो पिया को शादी का प्रस्ताव देने और शाह इंडस्ट्री को फिर से खड़ा करने में मदद करने के बारे में सोच ही रहा होता है, लेकिन पिया को शेखर से प्यार हो गया है और अंततः शाह इंडस्ट्रीज़ को अपने हाथ में लेने के अभिज्ञान के प्रस्ताव को लेकर पिया और शेखर के बीच विवाद खड़ा हो जाता है। अपराध बोध से ग्रस्त शेखर कनाडा आया ताकि वो अपना गुनाह कबूल कर सके, माफ़ी मांग सके, परिवार के लिए हर संभव मदद कर सके। ऐसा उसका जो है उद्देश्य होता है। और अंत में पिया को अमर की मौत के लिए जिम्मेदार व्यक्ति से प्यार करने का पछतावा होता है और वो इस बात गिरधारी को बताती है इस बात के बारे में, जो अपने बेटे की मौत के बाद पहली बार बोलकर उसे चौंका देता है। वो उसे बताता है कि शेखर ने पहली बार उनसे मिलने पर उसे सच बताया था और वो शेखर पर अब विश्वास करता है। अमर का परिवार पिया को ये एहसास दिलाता है कि शेखर ने परिवार के लिए कितना कुछ किया है और उनके लिए अमर जैसा है। बास्को उन्हें शेखर के एक्सीडेंट के बारे में बताता है और पिया को, जो संशय में है, शेखर के पास वापस जाने के लिए कहता है, क्योंकि वही उसका सच्चा प्यार है, और उसके चाचा उसे सांत्वना देते हैं। इसी बीच डीमेलो अस्पताल में परिवार से मिलता है और महसूस करता है कि उन्हें कानून से ज़्यादा शेखर की आवश्यकता है। केस बंद कर देता है वो और चला जाता है, और फिल्म का अंत शेखर के ठीक होने और पिया से मिलने के साथ ही होता है। चलिए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत।

इसी गीत के साथ एक फिल्म से कार्यक्रम में आज बस इतना ही। यूं ही बने रहिए FM शिमला के साथ, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

ट्यूनिंग है आप 103.7 मेगाहर्ट्ज़ आकाशवाणी एफएम शिमला के साथ प्रोग्राम दिल की आवाज़ भी सुन एंजॉय करेंगे अब आप एफएम शिमला से। जी हाँ, ईमेल बेस्ड प्रोग्राम में आप भी जुड़ सकते हैं हमारे साथ मेल्स के थ्रू। जी हाँ, कीजिए हमें मेल्स और सुनिए अपनी चॉइस का कोई सा भी सॉन्ग। और हमारी ईमेल आईडी है airfmshimlamusicmeet@gmail.com। और आज की हमारी मूवीज़ हैं माई नेम इज़ खान, द बंग, इश्किया, खट्टा मीठा और मिलेंगे मिलेंगे। जिस भी फिल्म का सॉन्ग आप इंजॉय करना चाहते

हमें मेल करके बता सकते हैं। और प्रोग्राम की फर्स्ट मेल देखिए हम तक पहुंच भी चुकी है। हमें मेल मिली है कृष्णा पार्क दिल्ली से, सुखविंदर सिंह जौड़ा, एनी फिल्म एनी सॉन्ग इन्होंने लिखा है। और एक और मेल हमें मिली है डी टी मल्होत्रा, टी डी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, अनिल शर्मा, जय वीर सिंह, डॉक्टर अमनदीप कालका से हमें मेल कर रहे हैं, सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से इन्होंने हमें मेल किया। और कालका से हैं शुभचंद्र बजाज, साहिल बजाज, बीटा बजाज, ये भी इन्हीं के साथ हैं। और ये लिखते हैं हमारी ही चॉइस का कोई सा भी गीत ये सुनना चाहते हैं। बहुत सारी मेल्स हमें मिल रही है और हमारा ये प्रयास रहेगा कि सभी की मेल्स शामिल हों। तो सबसे पहले माई नेम इज़ खान फिल्म का गीत सुनवा रहे हैं आप सभी के लिए।

भाई नेमीज खान जी, हाँ, इस फिल्म का गीत अभी आपने सुना और बहुत सारे मेल्स हमें मिल रहे हैं। द त्रिंगी भट्टा पारा छत्तीसगढ़ से हीरामणि वर्मा, पारस मणि वर्मा, पुष्पिंदर मणि वर्मा और नोखेलाल वर्मा की हमें मेल मिली है। सुनना चाहते हैं हमारी ही चॉइस का कोई सा भी सॉन्ग। साथ ही साथ हमें मेल की है गगनदीप ठांडी ने, लिखते हैं आदरणीय प्रोग्राम प्रसारक को स्नेही भरा नमस्कार। तो चलिए आपको भी हमारा नमस्कार। ये सुनना चाहते हैं किसी भी फिल्म का कोई सा भी गीत। गगनदीप ठांडी के साथ है तृप्ता कुमारी, डॉक्टर प्रियंका ठांडी, डॉक्टर प्रशांत ठांडी, डॉक्टर प्रियम ठांडी और इनकी बेबी वामिका और वाणी ठांडी। जो नेक्स्ट मेल मिली है हमें बागपत उत्तर प्रदेश से संजय ढिंगिया, नमन ढिंगिया और अपार ढिंगिया की, सुनना चाहते थे माय नेम इज खान फिल्म का कोई सा भी गीत। बिट्टू गगनेजा की हमें मेल मिली है, राम राम जी कोई भी गीत सुना दीजिए, जलालाबाद वेस्ट से इनके साथ हैं सुरेश गगनेजा, पूनम गगनेजा, विशाल प्रिया दिशानी और निमित आहूजा। रामजी साहू की हमें मेल मिली है लच्छनपुर छत्तीसगढ़ से, रामजी साहू के साथ है जीवन लाल रजक, निमी शिवम, सतीश, मुकेश कुमार साहू। सुनना चाहते हैं दबंग फिल्म का कोई सा भी गीत। टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह और डॉक्टर अमनदीप ने हमें फिर से मेल की है और साथ ही साथ शुभचंद्र बजाज की भी हमें मेल मिली है। ये सुनना चाहते हैं हमारी ही चॉइस के कोई से भी गीत। गांव और डाकघर निमनाबाद जिला जिंद हरियाणा से जसवीर सिंह अरोड़ा, जतिंदर कौर, गुरप्रीत सिंह और लवप्रीत कौर और करमजीत कौर ने भी हमें मेल की है। ये सुनना चाहते हैं किसी भी फिल्म से कोई सा भी गीत। और साथ ही साथ हमें मेल की है आर कुमार ने, वड़िंग खेड़ा पंजाब से मिंटू थॉमस, पिंकी लवली और आरती अरोड़ा किसी भी गीत को सुनना चाहते हैं ये। साथ ही हमें मेल मिली है अनिल वर्मा की, ये सुनना चाहते हैं हमारी ही चॉइस का कोई सा भी सॉन्ग। फागुराम यादव ने हमें मेल की है, लिखते हैं सप्रेम नमस्कार जी, अपनी पसंद से कोई भी गीत सुना दीजिएगा। संबलपुर कांकेर से फागुराम यादव के साथ है ज्योति यादव और ओजस्वी यादव। 90 साल का सफ़र, 90 साल की शान, आकाशवाणी रही सदा भारत की पहचान, हर कोने तक पहुंचाया जिसने ज्ञान और प्यार, उस अमर आवाज़ को हमारा शत शत नमस्कार। क्या बात है, ये हमें लिख कर भेजा है राजेंद्र जटोलिया, उषा जटोलिया, चारू जटोलिया ने और दिल्ली से इन्होंने हमें मेल की है।

और सॉन्ग ये हमारी ही चॉइस का सुनना चाहते हैं। लोभ राम गुंजेटा छुपाड़ी रोड़ू से हमें मेल कर रहे हैं। इनके साथ है जमीनता गुंजेटा, भजन देवी गुंजेटा, तारा सिंह गुंजेटा और पूरा गुंजेटा परिवार। सुनना चाहते हैं हमारी ही चॉइस का कोई सा भी गीत। हेमंत शिंदे ने हमें मेल की है। इनके साथ है संगीता शिंदे और हनुमंत शिंदे। सुनना चाहते हैं इश्किया फिल्म से कोई सा भी गीत। भूषण खेरा की हमें मेल मिली है। फाजिल का पंजाब से खेड़ा परिवार है। भूषण खेड़ा, विशु खेड़ा, विशाल खेड़ा। गीत ये सुनना चाहते हैं इश्किया फिल्म से। राजी शर्मा की हमें मेल मिली है। लिखते हैं नमस्ते जी, कोई भी गीत सुना दीजिए गा जी, प्रोग्राम बहुत अच्छा लग रहा है, धन्यवाद आपका। आदर्श नगर मलोट पंजाब से राज शर्मा के साथ हैं मीना शर्मा, योगेश शर्मा, मैंडी शर्मा, सौरभ शर्मा, साइना शर्मा और निवान शर्मा। अगली जो हमें मेल मिली है ये हमें भेजी है दिल की आवाज़ भी सुन कार्यक्रम में हमारा नाम शामिल कर दीजिएगा। लिखते हैं मेन रोड तेलहारा से प्रकाश पोहरकार, नर्मदा पोहरकार और सुजाता पोहरकार। इश्किया फिल्म का गीत सुनने के लिए हमें मेल मिली है रमन वर्मा की। रमन वर्मा, अमन वर्मा, दिव्यांश वर्मा, डॉक्टर मदन लाल वर्मा हमें मेल करे हैं नज़दीक बस स्टैंड बुर्ज हनुमानगढ़ फाजिलका से। और दबंग फिल्म का गीत सुनने के लिए हमें मेल मिली है चारू की। और अगली जो मेल हमें भेजी है गोविंदपुर सीकर राजस्थान से। दबंग फिल्म का गीत ही ये भी सुनना चाहते हैं दातार सिंह शेखावत, संगीता कंवर, तुषार सिंह, रिंकी शेखावत। तो चलिए आप तमाम लिसनर्स के लिए प्ले कर रहे हैं ये सॉन्ग फ्रॉम द मूवी दबंग।

दिल की आवाज़ भी सुन प्रोग्राम एंजॉय कर रहे हैं आप एफएम शिमला से। और ईमेल बेस्ड इस प्रोग्राम में आज की हमारी मूवीज़ हैं माय नेम इज़ खान, दबंग, इश्किया, खट्टा मीठा और मिलेंगे मिलेंगे। जो नेक्स्ट मेल हमें भेजी है कार्यक्रम में, वो हमें मिली है मेरठ कैंट से दिग्दर्शन कविता, राधा नामदेव, संजय ढींगिया, संदीप मक्कड़, अनिल जैन और दर्शन की। ये सुनना चाहते हैं हमारी ही चॉइस का कोई सभी सॉन्ग। अनिल कटारिया, मंजू कटारिया, नरेश मल्होत्रा और ज्ञानभूषण शर्मा ने हमें मेल की है और ये सुनना चाहते हैं हमारी ही चॉइस का कोई सभी गीत। पानीपत हरियाणा से इन्होंने हमें मेल की है। सरिता अभिजीत की हमें मेल मिली है। आकार हाइट्स बहादुरा नागपुर, इन्होंने अपनी लोकेशन भेजी है। वैशाली शैलेश गुहाणकर, प्रिंस एकांश, सुमित गवाणकर, कुमारी ध्वनि गवाणकर परी, मेहरनगर उमरखेड़ महाराष्ट्र से हमें मेल मिली है। अभिजीत, सरिता, प्रणीता, सिद्धांत गवाणकर और टुक टुक गवाणकर की। सुनना चाहते हैं हमारी ही चॉइस का कोई सा भी गीत। फिल्म कोई भी गीत कोई भी सुना देना जी। प्रस्तुतकर्ता धन्यवाद जी लिखते हैं ग्राम बाघामुड़ा कोमाखान छत्तीसगढ़ से प्रज्ञानंद देवांगन, नंदनी देवांगन, प्रकाश देवांगन और साथ में है इनके गायत्री यशवर्धन और यशस्वी देवांगन। राजेश वर्मा की हमें मेल मिली है। अपनी पसंद का कोई भी गीत सुना दीजिए जी लिखते हैं गोल्डन रेडियो श्रोता संघ राज पैलेस मऊनाथ भंजन उत्तर प्रदेश से। राजेश कुमार वर्मा के साथ है प्रीति वर्मा, कार्तिक और आर्यन वर्मा। शिव मंदिर हकीकतपुरा से मुना भाई स्वरणकार, पिंकी स्वरणकार, आर्यन, कृष्णा और पीहू स्वरणकार की भी हमें मेल मिली है और साथ में इन्होंने धन्यवाद भी किया है। जो नेक्स्ट मेल शामिल करने जा रहे हैं कार्यक्रम में, चंद्रनगर सहारनपुर से हमें मेल मिली है कौशल्या जोशी, सुरेश जोशी और प्रभा जोशी की। अंबाला से आशु खान और सोनाली खान सुनना चाहते हैं इश्किया फिल्म का कोई सा भी गीत। हमें मेल मिली है अनिल तामरकर की और साथ ही साथ लाल गिरी ने हमें मेल की है रघुनाथपुरा ज़िला श्रीगंगानगर राजस्थान से। लिखते हैं कार्यक्रम पेश करने को वाले को हमारा प्यार भरा नमस्कार, हार्दिक अभिनंदन। कैसे हो, कोई भी सॉन्ग में हमें शामिल कर देना, हम आपके साथ बने हुए हैं। लाइव क्या बात है। रघुनाथपुरा ज़िला श्रीगंगानगर राजस्थान से लालगिरी गोस्वामी के साथ है हेमलता हीना, हर्षित और खुशी गोस्वामी। खट्टा मीठा फिल्म का गीत सुनने के लिए हमें मेल मिली है सुखविंदर सिंह जोड़ा की। एसएम जावेद की भी हमें मेल मिली है। एसएम जावेद शगुफ्ता अंजुम गुमला झारखंड से हमें मेल कर रहे हैं खट्टा मीठा फिल्म का गीत सुनने के लिए। दादा बाबू रोड गिरिडीह झारखंड से हमें मेल मिली है मोहम्मद यासिन अनजान, साइमा नवाज़, हसन नवाज़, बाबू अहद, मिफ्रा नाज और बेबी चाहत की। किसी भी गीत को सुनने की

फरमाइश इन्होंने लिखी है भाटापारा छत्तीसगढ़ से हिमकेश्वर साहू, करण राहुल साहू और चंपा साहू भी सुनना चाहते हैं हमारी ही पसंद का कोई सा भी गीत। अगली जो मेल शामिल करने जा रहे हैं कार्यक्रम में, ये हमें मिली है कोहका भिलाई से उत्तम सिंह जंघेल, मोरस जंघेल, अनिल कुमार, अजीत कुमार, आयुष जंघेल और नंदनी जंघेल की। धमदा ग्राम सुखरी कला से अमित जंघेल, शकुन जंघेल, आरुषि, ओशिका, आदित्य जंघेल और अंजलि जंघेल भी है इनके साथ, ये भी सुनना चाहते हैं खट्टा मीठा फिल्म का कोई सभी गीत। लीजिए आप सभी के लिए प्ले कर रहे हैं ये सॉन्ग।

अब आपको सुनाने जा रहे हैं इश्किया फिल्म का सॉन्ग, जिसे सुनना चाहते हैं पंकज शर्मा जी। हाँ, हमें मेल मिली है, लिखते हैं राम राम जी एनी सॉन्ग जी, प्रोग्राम दिल की आवाज़ भी सुन मॉडल टाउन करनाल से सुधीर नूतन, संदीप गुगलानी, जगमोहन प्रजापति, प्रतिभा शर्मा और इनके साथ में है आशा गुगलानी, हरिपाल कौर, विपाशा शर्मा, किरण ठाकुर और जगी दुआ। तो ये सब सुनना चाहते हैं इश्किया फिल्म का गीत।

इसी गीत के साथ दिल की आवाज़ भी सुन कार्यक्रम में आज बस इतना ही। जिन लिसनर्स की मेल्स आज के प्रोग्राम में शामिल नहीं हो पाई उनके लिए बेटर लक फॉर नेक्स्ट टाइम।

103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर आप जुड़े हैं आकाशवाणी एफएम शिमला के साथ। हमारे स्टूडियो की घड़ी में रात्रि के 10 बज चुके हैं। गजलों का कार्यक्रम अब आप सुनेंगे। आगाज करते हैं इस गजल से जिसे गाया है पंकज उदास ने।

पंकज उदास की गई ये गज़ल अभी आपने सुनी। दिल के अल्फाज जब लफ्ज़ों में बयां हो जाए और दिल प्रेम में बाग बाग हो जाए तो बन जाती है एक बेहद खूबसूरत सी गज़ल। किस अंदाज में, किन लफ्ज़ों में बयां करता है कोई दिल के राज, वही उसकी बन जाती है एक पहचान खास। अगली गज़ल आप सुनने जा रहे हैं गुलाम अली की आवाज़ में, आइए सुनते हैं।

गजले आप सुन रहे हैं FM शिमला से। कार्यक्रम की अंतिम गजल आपको सुनाने जा रहे हैं चंदन दास की आवाज़ में। आइए सुनते हैं।

इसी के साथ गजलों के कार्यक्रम में आज बस इतना ही। बने रहिए FM शिमला के साथ, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: अगर आप जन जन तक पहुंचना चाहते हैं और अपना व्यवसाय बढ़ाना चाहते हैं, तो आकाशवाणी पर सस्ते दामों पर अपना विज्ञापन प्रसारित करवाएं।
1: आपका थोड़ा सा प्रयास आपके सपनों को पूरा कर सकता है।
0: आकाशवाणी के माध्यम से आप न केवल प्रदेश बल्कि पूरे देश भर में अपने व्यवसाय का प्रचार प्रसार कर सकते हैं। शुभवाणी, लाभवाणी, जन जन की वाणी, ये है आकाशवाणी।
1: नियम और शर्तें लागू।

103.7 मेगाहर्ट्स पर आप जुड़े हैं आकाशवाणी एफएम शिमला के साथ सदाबहार नगमे लेकर हाजिर हैं हम। तो आप भी दिल थाम कर बैठ जाइए, दिलकश आवाज़ों के साथ मन भावन गीतों का आनंद लेने के लिए। जी हाँ, आइए सबसे पहले हैं आपके लिए ये गीत।

संगीत की जब हम बात करते हैं तो संगीत भी एक तरह की ऐसी भाषा है जो दिल को छू लेती है। और जब बात होती है पुराने फिल्मी गीतों की या फिर सदाबहार नगमों की, तो ऐसा महसूस होता है मानो समय की रफ्तार भी रुक सी जाती है। चलिए बीते ज़माने की सुनहरी वादों को और याद करते हैं इस गीत के साथ, दिल का क्या कसूर। जी हाँ, ये है फिल्म का नाम जिसका गीत लेकर आए हैं आपके लिए कुमार सानू की आवाज़ में। आइए सुनते हैं।

सदाबहार नगमे कार्यक्रम आप सुन रहे हैं FM शिमला से। सदाबहार गीतों की जब हम बात करते हैं तो ज़्यादातर गीत मोहब्बत के ही हैं, और ये वो एहसास होता है जो कभी भी पुराना नहीं होता। और आज भी जब इन गीतों को हम सुनते हैं तो दिल उमंगित हो जाता है और एक अलग सा आनंद और सुकून हमें अनुभव होता है। हमारे दिल को होती है ऐसी अनुभूति जिसे जुबान से व्याख्यान नहीं किया जा सकता। कुछ ऐसे गीत भी हैं जो एक साथ एक ही पल में आंखों में नमी और होंठों पर मुस्कान भी ले आते हैं, और दर्द और विरह का भी अपना एक अलग ही मज़ा होता है। इसी कड़ी में आइए सुनते हैं एक और सदाबहार नगमा दीदार फिल्म से।

सदाबहार नगमे कार्यक्रम समापन की ओर पहुंच चुका है, तो जाते जाते आपको सुनाने जा रहे हैं ये गीत जिसे गाया है अलका याग्निक ने और फिल्म है साजन। बोल समीर के है और संगीत है नदीम श्रवण का।

सदाबहार नगमे कार्यक्रम में आज बस इतना ही। 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी FM शिमला। हिंदी और अंग्रेजी में समाचार अब आप सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मोहम्मद जुबैर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश के 140 करोड़ नागरिकों की आकांक्षाएं अवश्य पूरी होंगी। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए ने हमेशा देश के भरोसे को मजबूत किया है। नई दिल्ली में एनडीए की बैठक में उन्होंने कहा कि कांग्रेस के विश्वासघात के बाद देश की जनता ने एनडीए सरकार पर भरोसा जताया है। उन्होंने कहा कि पहली बार देश की जनता ने देखा है कि जब कोई सरकार सही इरादों से चलाई जाती है तो विकास भी तेजी से होता है।
1: एनडीए सरकार के इन 12 वर्षों में 25 करोड़ से ज्यादा लोगों का गरीबी से बाहर निकलना, ये दिखाता है कि हमारी नीतियां सही है, हमारी दिशा सही। ये सफलता आज देश के हर उस व्यक्ति को एक भरोसा देती है कि एक न एक दिन उसका संघर्ष भी खत्म होगा, एक दिन उसके सपने भी पूरे होंगे।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज देश के लगातार सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बन गए हैं। श्री मोदी ने 26 मई 2014 को प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। प्रधानमंत्री मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के 4398 दिनों के निरंतर कार्यकाल के पिछले रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज एक प्रस्ताव पारित कर प्रधानमंत्री को बधाई दी। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि मंत्रिमंडल ने 7 सूत्रीय प्रस्ताव पारित किया है।
2: उनके नेतृत्व में भारत के 25 करोड़ से अधिक गरीबों ने गरीबी को परास्त किया है। राष्ट्र सेवा के प्रति माननीय प्रधानमंत्री जी के अद्वितीय समर्पण एवं

0: अथक परिश्रम के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा को सुदृढ़ बनाने एवं भारत के हितों की रक्षा हेतु और समावेशी विकास एवं सामाजिक न्याय की दिशा में किए गए उनके प्रयासों की सराहना करता है और विकसित भारत के निर्माण के उनके दूरदर्शी संकल्प और नेतृत्व के प्रति अपना पूर्ण समर्थन व्यक्त करता है।
1: मंत्रिमंडल ने अहमदाबाद मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण को मंजूरी दे दी है। इसमें कोटेश्वर रोड से हवाई अड्डे तक का गलियारा शामिल है। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने आंध्र प्रदेश के अमरावती में केंद्र सरकार की दो प्रमुख ढांचागत परियोजनाओं को भी मंजूरी दे दी है। प्रधानमंत्री को दुनिया भर से बधाई संदेश आ रहे हैं। यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेल लेयन ने कहा कि श्री मोदी के नेतृत्व में भारत चांद पर पहुंच गया और अब वे आसमान की ऊंचाइयों को छूने का लक्ष्य बना रहे हैं। इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने दोनों देशों के लोगों के लिए नए अवसर सृजित करने के वास्ते प्रधानमंत्री मोदी के साथ काम करने की इच्छा व्यक्त की। साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स ने कहा कि यह उपलब्धि प्रधानमंत्री मोदी की वर्षों की समर्पित सेवा और नेतृत्व को दर्शाती है। डेनमार्क की प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिक्सन और दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ली जे म्यूंग ने भी प्रधानमंत्री मोदी को बधाई दी है। इस बीच इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने भी प्रधानमंत्री मोदी को बधाई दी है। श्री मोदी ने उनके सोशल मीडिया संदेश का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि भारत इसराइल संबंध आने वाले वर्षों में और मजबूत होगा। सरकार ने वस्त्रों के लिए उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना के तीसरे चरण के अंतर्गत 22 नए आवेदकों को मंजूरी दे दी है। वस्त्र मंत्रालय ने बताया है कि इसमें कुल 96 कंपनियों का चयन किया गया है। इन कंपनियों ने 12,822 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश करने का आश्वासन दिया है और इसका अनुमानित कारोबार 58,000 करोड़ रुपए से अधिक है। रक्षा मंत्रालय ने आज भारतीय नौसेना के लिए उन्नत क्षमता के 20 वैश्विक दिशा सूचक उपग्रह प्रणाली यानी GNSS जैमर की खरीद के लिए 449 करोड़ रुपए का अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। इसमें न्यूनतम 75% स्वदेशी सामग्री का प्रावधान शामिल है। मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों में दिल्ली NCR क्षेत्र में भीषण गर्मी से राहत मिलने की संभावना व्यक्त की है। दिल्ली NCR क्षेत्र में अगले 3 दिनों में गरज के साथ बारिश और धूल भरी आंधी की आशंका है। ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स में पीवी सिंधु और तन्वी शर्मा ने प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। सिंधु ने पेरू की इनेस क्रिस्टिलो को हराया जबकि तन्वी शर्मा ने चीनी ताइपे की चियू पिनचियान को मात दी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय अभिनीत शुक्ला। Prime Minister Narendra Modi today assured that the aspirations of 140 crore citizens of the country will definitely be fulfilled and emphasized that the National Democratic Alliance, that is NDA, has always strengthened the nation's trust. Mr. Modi was addressing the NDA conclave at Bharat Mandapam in New Delhi this evening. He said, "The people of the country entrusted the NDA government with their trust after the betrayal of the Congress." He said, "For the first time, the people of the country have seen that when a government is run with a right intention, development also takes place at a rapid pace." He said, "The lifting of more than 25 crore people out of poverty during these 12 years of the NDA government reflects that its policies are correct and its direction is right."
3: भारत के लोगों ने पहली बार ये देखा है कि जब सही नियत से सरकार चलती है तो तेज गति से विकास भी होता है। एनडीए सरकार के इन 12 वर्षों में 25 करोड़ से ज्यादा लोगों का गरीबी से बाहर निकलना ये दिखाता है कि हमारी नीतियां सही हैं, हमारी दिशा सही है। ये सफलता आज देश के हर उस व्यक्ति को एक भरोसा देती है कि एक न एक दिन उसके सपने भी पूरे होंगे।
2: The Prime Minister added that the people of the country have understood the importance of political stability at the national level. He said it is a testament to the maturity of the people that they have given him the opportunity to serve them for such a long time. Earlier, the NDA today adopted a resolution lauding Prime Minister Narendra Modi on achieving the feat of becoming India's longest-serving elected Prime Minister. During the conclave of